एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये विविध भारती का उदयपुर केंद्र है एफएम रेडियो लेक सिटी। आज बुधवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारे प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है एफएम रेडियो लेक सिटी। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया।

0: है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जाँच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती वंदन वाद।

चिंतन, आपका लक्ष्य किसी जादू से पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रही हैं, झरोखा। सुनिए विविध भारती से दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लिखा जोखा। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान, आज भाग 222। गजतत वाद्य संगीत सरिता में चल रही है ये श्रृंखला। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। आज इस श्रृंखला की छठवीं कड़ी

प्रसारित की जाएगी। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हेरा ही प्यार के, सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक, 9:30 पर केंद्रित है आज के फनकार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम सुबह 9:30 पर और रात 9:30 पर सुना जा सकता है। सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में सुबह 10 बजे अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की बातचीत का दूसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। दिन में 11 बजे रंग तरंग, 12 बजे हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल। दिन में 1 बजे सुरीला सफर, दिन में 2 बजे त्रिवेणी, 2:15 पर दोपहर समाचार। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे,

तीन बजे से की सहेली कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस, इस पर चर्चा, डायरी लिखने की आदत, साड़ियों का संसार, आज बांधनी साड़ी की बातें होंगी। शब्द हमारा, विचार आपके। आज का शब्द है प्रोत्साहन। आज का कार्यक्रम ममता सिंह और मंजरी वर्मा के साथ, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे आज के मेहमान कार्यक्रम में अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत सुनवाई जाएगी। शाम 5 बजे छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम होगा। 7 बजे जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग। रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका मेनू कार्ड। मूल कहानी ओ हेनरी की है। रेडियो नाट्य रूपांतरकार मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद। 8:15 पर सुनिएगा चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम होगा। 9:30 पर अभिनेता मोतीलाल पर केंद्रित आज के फनकार। 10:00 छाया गीत। 10:30 पर ढलती जाए रात और रात्रि 11:00 रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

दूत चित्रकूट आ पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक का कुशल क्षेम पूछा तो दूत आदर तथा संकोच से नतमस्तक होकर बोले, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हो गया मुनिवर, नहीं तो कुशल क्षेम तो अयोध्यापति के साथ ही लुप्त हो गए थे। उनके जाने के साथ ही सारा जगत, विशेष रूप से कोशल और मिथिला अनाथ हो गए थे। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास, ये सुनकर मिथिलापति का दुख और भी अधिक हो गया। जनक जी ने भरत जी की वास्तविकता जानने के लिए अपने गुप्तचर अयोध्या भेजे। लौटकर गुप्तचरों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच तथा स्नेहवश व्याकुल हो गए हैं। और अब जनक जी अपने सभासद तथा कुटुंबियों समेत चित्रकूट पधार रहे हैं।

0: गजतत वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: श्रोताओं, आज हम गज से बजाए जाने वाले एक और वाद्य दिलरुबा पर बात करेंगे। इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुगल कालीन वाद्य है, किंतु मुगल कालीन वाद्यों में इस नाम का अथवा इसके स्वरूप से साम्य रखने वाला कोई वाद्य दिखाई नहीं देता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है, अतः स्पष्ट है कि इस वाद्य की रचना आधुनिक काल में ही की गई है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति का आधार सारंगी मानते हैं। सुविधा युक्त गज वाद्य की आवश्यकता होने के कारण इसका निर्माण किया गया। यह भी संभव है कि इसराज की मृदु ध्वनि को गंभीर बनाने की दृष्टि से इसराज में ही कुछ परिवर्तन किए गए हों, फलस्वरूप दिलरुबा वाद्य की उत्पत्ति हुई हो। इस संभावना को भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्रचलित ताउस वाद्य के नीचे लगे मयूर वाले भाग को हटाकर उसके स्थान पर सारंगी का मंथान अर्थात नीचे वाला भाग लगाकर इसका निर्माण किया गया हो। उत्पत्ति का कारण जो भी रहा हो, किंतु यह सत्य है कि दिलरुबा वाद्य सितार और सारंगी का मिश्रित रूप है। दिलरुबा वाद्य 3 आकार में प्रचलित है। आकार के अनुसार ही कुंडी और दांड का नाप रखा जाता है। दिलरुबा में 19 पर्दे होते हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार थोड़ा सरकाया भी जा सकता है। इसमें मुख्य 4 तार होते हैं। कुछ दिलरुबा में 6 तार भी लगाए जाते हैं। इसमें 20 अथवा 22 तरबों को लगाया जाता है, जिन्हें राग के अनुसार मिलाते हैं। कुछ कलाकार तरबों को अचल थाट में रखते हैं। दिलरुबा के तार अलग अलग पद्धति से मिलाकर वादन करने का प्रचलन रहा है। फिर भी सामान्यतः इसके बाज के फोलाद के तार को मंद्र सप्तक के मध्यम में, इसके बाद के फोलाद के तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में, तत्पश्चात के पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में और अंतिम पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में मिलाते हैं। तरबो हेतु पीतल के तार प्रयुक्त करते हैं। ऊपर आड़ के पास तरब के 5 तार तथा शेष तरब के तार दांड के बाजू में लगाने का प्रचलन है। कुछ कलाकार इसको घुटने पर रखकर या गोद में रखकर बजाते हैं। इसकी कुंडी वाला भाग नीचे रहता है। दाहिने हाथ में गज को पकड़ा जाता है। यह गज तारों पर घर्षण करते हैं। दांड के पीछे की ओर बाएं हाथ का अंगूठा रखा जाता है और आगे की तरफ से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से कर्ण, खटका, मुरकी, गमक और घसीट के साथ विभिन्न स्वर निकाले जाते हैं। दिलरुबा के नाम से स्पष्ट है कि हृदय को मोहित करने वाला एक सुंदर, मधुर और आकर्षक वाद्य है, किंतु दुख की बात है कि अब इसका प्रचलन कम होते जा रहा है। अब इसे दुर्लभ वाद्यों की श्रेणी में रखा जाता है। लगभग 50 वर्षों पूर्व दिलरुबा पर पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड का साउंड बॉक्स व हॉर्न लगाकर तार शहनाई वाद्य की रचना की गई। अब हम श्री विनायक बोरा का तार शहनाई वादन सुनते हैं।

जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री। 40

0: लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण।

0: अभी आप श्री विनायक वोरा से तार शहनाई पर बजाया राग अहीर ललित सुन रहे थे।
1: गज तत्वाद्य गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी अंतिम कड़ी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में सुनिए भूले बिस्तरे की।
2: FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है FM रेडियो लेक सिटी। सवेर के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
3: वीको

0: आइए सुने भूले बिसरे गीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आज मौसी फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, कम सुना गाना। मौसी फिल्म का एक गाना आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, ये
1: टिम टिम टिम तारों के दीप जले नीले आकाश तले।
0: लेकिन आज के कार्यक्रम का आगाज इस गाने से करते हैं, आशा भोसले की आवाज, भरत व्यास के बोल, संगीत वसंत देसाई का। ये फिल्म सन 1958 में आई थी।

बोली व्यवस्था गीत कार्यक्रम में अब प्रदीप जी की आवाज़ गूंजेगी। नागमणि फिल्म का ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: नागमणी फिल्म का ये गीत गीत और रॉय की आवाज में था। प्रदीप जी की आवाज वाला संस्करण फिर कभी आपको सुनवाएंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि इस गाने को कवि प्रदीप ने लिखा और संगीत अविनाश व्यास का था।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं, जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से भूले बिसरे की

0: के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: फागुन फिल्म का ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में था। कमर जलालाबादी के बोल थे, संगीत ओपी नैयर का था। अब कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक की बारी है, ब्रेक के उस पार कुछ और गाने हैं।

लता मंगेशकर की आवाज़ में पिया मिलन फिल्म का गीत अभी आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत रमेश का था। मोहम्मद रफ़ी और गीता रॉय की आवाज़ में 12 o'clock फिल्म का गाना। मजू सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर की तर्ज।

0: अधुना फिल्म के गीत गीत और की आवाज में आपने सुना साहिर लुथियानवी की बोल थी, संगीत एन दत्ता का था और यही आज के इस कार्यक्रम का आखिरी नगमा था।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हम है राही प्यार के।
1: अभी आप सुन रही थी प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: हजार हाथ फिल्म का गीत येसुदास और शारदा की आवाजों में था। गीत राजदीप का था और संगीतकार थी स्वयं शारदा। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं हम हैं राही प्यार के।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, माफ कीजिएगा, मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में आपने सुना फांसी फिल्म का ये गाना। अब कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बाकी गाने होंगे।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
6: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
7: बन गया बजट?
6: हाँ,
7: 5,000 बच गए।
6: तो नई साड़ी ले ले।
7: ना,
6: पिछले महीने तो ली थी।
7: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
6: बढ़िया, जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
9: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
10: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
11: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
10: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
11: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कार्यक्रम का अगला गीत बनफूल फिल्म का है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, प्रतीक्षा समाचारों की।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में जी

G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे

0: महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
1: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुँच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुँच प्रदान कर रहा है।
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
4: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में।

0: दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजाद मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में तीन मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avion, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life. Highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia, Prime Minister said, it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Ministry of External Affairs informed that during

0: जब आप दुखी होते हो तो जीवन आप पर हंसता है, जब आप खुश होते हो तो जीवन आप पर मुस्कुराता है, लेकिन जब आप दूसरों को खुश करते हो तो जीवन आपको सलाम करता है। तो श्रोताओं, हम भी आपको सलाम करने और लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का नमस्कार उदयपुर, जहां होता है ज्ञान और मनोरंजन का संगम। तो चलिए बताते हैं आज इस प्यारे से सफ़र पर आपके साथ होंगे आपके हम सफ़र। मैं हूं आपकी दोस्त परवीन और मेरे साथ हैं
1: अनीता।
0: तो कबूल कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: और नमस्कार के साथ ही परवीन, अपने श्रोताओं को बता दें कि आज मिडवीक वाइज में क्या है खास।

0: बिल्कुल, आज हम बात करेंगे टुडेज डायरी में महाराणा प्रताप जयंती पर, देंगे प्रमुख स्थानीय खबरों की जानकारी, T20 विश्व कप का अपडेट बताएंगे हमारे श्रोताओं को, और फीफा वर्ल्ड कप की क्या आज की अपडेट है। इंस्पिरेशन जोन में आज हम बात करेंगे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की,
1: और रोचक तत्व में जानकारी देंगे मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस के बारे में, और अपने श्रोताओं को हमसे जुड़ने का मौका भी देंगे श्रोता संवाद में। तो श्रोता हमें मैसेज करके बता सकते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। हमारे फोन नंबर है 9462697568।

0: महलों के वैभव को तजकर जो जंगलों में मुस्काया था, अरावली की कंदराओं को जिसने अपना घर बनाया था, अकबर की ताकत के आगे जो पर्वत बनकर अड़ा रहा, शीश कटा पर झुका नहीं वह वीर अकेला लड़ रहा। धन्य हुई मेवाड़ की माटी, धन्य हुआ वह राणा प्रताप, जिसके नाम से कांपता था खुद दिल्ली का सुल्तान आप। सदियों तक गूंजेगी दुनिया में उस महानायक की अमर कहानी, जो सिखा गया इस भारत को क्या होती है राजपूती शान पुरानी। भारत भूमि हमेशा से ही वीर पुत्रों और महान योद्धाओं की जननी रही है। इन्हीं महान सपूतों में से एक थे मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। उनका नाम इतिहास में अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति, वीरता और स्वाभिमान के लिए अमर है।
1: आपने बिल्कुल सही कहा, महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ किले में हुआ था। इनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता का नाम महारानी जयवंती बाई था। शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, युद्ध नीति और प्रशासन की शिक्षा इन्होंने बचपन में ही ली थी। मेवाड़ की संस्कृति, परंपराओं और जनजातीय समाज से निकट संबंध इन्होंने स्थापित किए थे। 1572 में महाराणा मेवाड़ के गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ। मेवाड़ की सुरक्षा, स्वाभिमान और जन कल्याण को सर्वोच्च इन्होंने प्राथमिकता दी थी। 18 जून 1576 को ऐतिहासिक बैटल ऑफ हल्दीघाटी में इन्होंने लड़ा था। महाराणा प्रताप ने अद्वितीय शौर्य, नेतृत्व और रणकौशल का परिचय दिया।
0: बात करें हम भामाशाह के योगदान की।

0: तो भामाशाह ने अपना सर्वस्व समर्पित कर राज्य और सेना को नई शक्ति प्रदान करी। बैटल ऑफ द वेयर में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। मेवाड़ की शक्ति और आत्मविश्वास को नया आधार मिला।
1: महाराणा प्रताप का जीवन काफी संघर्षमय रहा था। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कभी भी मुगल सत्ता के सामने समर्पण नहीं किया। उन्होंने राजसी वैभव त्याग कर स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना। युद्ध के बाद उन्हें परिवार सहित अरावली के जंगलों और पहाड़ों में कठिन जीवन बिताना पड़ा। अनेक बार भोजन का भी अभाव रहा, फिर भी उन्होंने अपने संकल्प को नहीं त्यागा।
0: बिल्कुल अनीता, बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप के जीवन से हमें बहुत महत्वपूर्ण और अमूल्य प्रेरणाएं भी मिलती है। अपने जीवन में उतार कर हम जरूर से सफलता पा सकते हैं। कभी हार न मानने का जज्बा था महाराणा प्रताप में।
1: उनका संघर्ष केवल सिंहासन के लिए नहीं बल्कि मेवाड़ की जनता और उनकी स्वतंत्रता के लिए था। वे अपने प्रजा के सुख दुख में सहभागी रहे थे। कम संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने सहयोगियों भील समुदाय और सैनिकों को संगठित किया था। भामाशाह और भील वीरों का सहयोग प्राप्त करना उनकी नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है।
0: महाराणा प्रताप मातृभूमि से प्रेम, उनके लिए अपनी मातृभूमि मेवाड़ की आज़ादी से बढ़कर कुछ नहीं था। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की रक्षा में समर्पित कर दिया। इससे हमें अपने देश और समाज के प्रति वफादार रहने की प्रेरणा मिलती है। महाराणा प्रताप का जीवन केवल एक योद्धा की कथा नहीं बल्कि स्वाभिमान, कर्तव्य और अटल संकल्प का अमर उदाहरण है जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरणा देता है।

0: अनीता नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ हुजूर से गजेंद्र सिंह राठौड़ की विशेष बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज महाराणा प्रताप जयंती और इस अवसर पर हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ और इनसे हम जानेंगे कि आज प्रताप जयंती के उत्सव पर किस तरह से राज परिवार इस उत्सव को मनाता है और क्या विशेष तैयारियां और क्या उनके दिनचर्या में परिवर्तन होते हैं। सर सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार सर।
2: धन्यवाद आपको के मुझसे बात करने के लिए और आपको और सभी आपके जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं और बधाई।
1: महाराणा साहब आप ये बताएं कि जैसे आज का जो प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है, पूरा राष्ट्र इस उत्सव को मना रहा है, लेकिन राज परिवार या आप वंशज के रूप में आप उस उत्सव को किस तरह से मनाते हैं या क्या विशेष अवसर इस दिन होता है जिससे ये और भी खास हो जाता है?
2: एक तरह तो ये खुशी की बात है कि जगह जगह पे महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है। इसका मतलब यही है कि ज्यादा लोगों को महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी है, लेकिन जो ये सामूहिक तौर पर महाराणा प्रताप जयंती मनाने का जो कार्यक्रम है वो ये करीब 50-60 साल पहले शुरू हुए थे। उससे पहले तो हम अपने घर में ही जिनको मनाना था वो मनाते थे, दिया धूप जला के और हमारे पूर्वज का ध्यान करके और श्रद्धांजलि इसी हिसाब से दी जाती थी। आज के तौर में जैसे जगह जगह पर मनाया जाता है तो हर साल कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम अवश्य होता है और उसमें भाग लेके महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है।
1: अगर बात की जाए महाराणा प्रताप के जीवन का, ऐसा कौन सा संदेश है जो आज के युवाओं के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है और इस अवसर पर इस बात को कहने से कितना आत्मबल मिले?

0: युवाओं को?
1: युवाओं के लिए मेरे ख्याल से एक बात और एक शिक्षा, और युवाओं के लिए सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, लेकिन हम सबके लिए एक शिक्षा जरूर मिलती है कि अगर हम कोई भला उद्देश्य अपने मन में तय करें और उसके प्रति हम अपने कोशिश जारी रखें, क्योंकि तो बहुत कम लोग हैं जिनको सफलता बहुत आसानी से मिलती है। तो अगर हम एक भला उद्देश्य हो और अगर हम लगातार कोशिश करते रहें तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। हमें बीच में कुछ रुकावट हो या संघर्ष हो तो हमें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। आप अपना काम मन लगा के करते रहें और आपको सफलता जरूर मिलेगी।
0: प्रताप जयंती केवल एक उत्सव ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा का पर्व भी है, आप इसे किस रूप में देखते हैं?
1: प्रताप जयंती, जैसे महाराणा प्रताप तो एक हमारे पूर्वज, मेरे पूर्वज हैं, महापुरुष हैं, उनसे वो एक प्रेरणा के स्रोत हैं और सब दुनिया भर में महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। और मेरे ख्याल से अब मनाना एक बात है, लेकिन अगर हम उनके जो गुण हैं अगर उनको अपनाने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से वही सही तरह की श्रद्धांजलि होगी। और यही तरीका अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अपनाएं तो समाज के लिए बेहतर ही होगा।
0: अगर महाराणा प्रताप के त्याग, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम की भावना को वर्तमान समाज के संदर्भ में हम देखें, तो इसे इन सब भावनाओं को या इन सब विचार को किस तरह से जीवंत रखा जा सकता है?
1: राष्ट्र प्रेम तो हर जमाने के लिए लागू है, भले पुराने जमाने की बात हो, आज की बात हो, कि आने वाले कल की बात है, तो राष्ट्र प्रेम तो जरूरी है। और स्वाभिमान भी हर हर इंडिविजुअल के लिए जरूरी बात तो है ही है। और एक और बात, अगर हम महाराणा प्रताप के अगर हम गुण की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने किस तरह से पूरे समाज और सब धर्म को साथ रखा, और अपनी ओर से समाज और धर्म ने ये साथ निभाया भी है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हम सब, जो खास तौर जो हम मेवाड़ में, हम इस बात को ध्यान रखें कि हम सब एक हैं। क्योंकि आजकल ज्यादातर देखा जाता है कि काफी सामाजिक संस्थान है, तो सामाजिक तौर पर संस्थान जो काम करते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रगति की बात करें, हमें सब एक होना चाहिए। और प्रगति तो हम सब साथ मिलकर ही कर सकते हैं, किसी एक समाज अलग आगे चला जाए और दूसरा पीछे रह जाए ये तो हो ही नहीं सकता। हमें सब एक ही रहना है और हमें सब मेवाड़ को एक ही आवाज से बात करने की जरूरत है।
0: प्रताप जयंती के इस शुभ अवसर पर आप देशवासी या खास तौर से मेवाड़ के जितने भी निवासी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मेरा संदेश एक तरह से यही है कि हम महाराणा प्रताप को याद करें, और महाराणा प्रताप के जितने भी गुण हैं, हम सब गुण तो अपना नहीं सकते हैं, लेकिन जो गुण अपना सकते हैं उनको अपनाने की कोशिश जरूर रखें, क्योंकि यही एक सही श्रद्धांजलि होगी। और कल भी महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की रक्षा की, और आज भी अगर हम उनके गुण को अपनाने की कोशिश करेंगे तो उनकी मदद आज भी हमारे जीवन में रहेगी।
0: तो आप थे महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़, और आज कार्यक्रम में प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर श्रोताओं को अपने संदेश और अपने विचार समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।
1: बहुत धन्यवाद आपको।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ हुजूर से गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत।

0: तो श्रोताओं, एक नज़र डालते हैं आज के मैचेस पर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पांचवा दिन पूरी तरह से ड्रॉ के नाम रहा। 15 जून कम मजबूत मानी जाने वाली टीमों के लिए बेहद शानदार साबित हुआ। सबसे पहले कैप वर्डे ने अपने रक्षात्मक खेल के दम पर यूरोपियन चैंपियन और 2010 के विश्व विजेता स्पेन को 0-0 की बराबरी पर रोक दिया। इसके बाद बेल्जियम और मिस्र का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा, जबकि सऊदी अरब और उरुग्वे ने 1-1 से बराबर खेला। आखिरी मैच सबसे रोमांचक रहा, जहां ईरान और न्यूजीलैंड ने 2-2 से बेहद मनोरंजक ड्रॉ खेला। ईरान न्यूजीलैंड के इस मैच के साथ ही वर्ल्ड कप में एक नया इतिहास दर्ज हुआ। टूर्नामेंट के इतिहास में किसी एक ही दिन में 4 मैच ड्रॉ होने का यह वाकया 68 साल बाद हुआ, और इससे पहले यह अनोखा संयोग 15 जून 1958 को स्वीडन वर्ल्ड कप में देखा गया था। तो अनीता, बात करें आज के मुकाबलों की, तो ग्रुप जे में अर्जेंटीना वर्सेस अल्जीरिया, जो कि सुबह 6:30 बजे खेल चुके हैं। ग्रुप जे में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जॉर्डन, सुबह 9:30 बजे का समय है। ग्रुप के पुर्तगाल वर्सेस कांगो, रात 10:30 से मैच खेला जाएगा। ग्रुप एल में इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया, देर रात 1:30 से मैच खेला जाएगा। और ग्रुप एल में गाना वर्सेस पनामा खेलेंगे तड़के 4:30 से।
1: और अब बात करते हैं T20 विश्व कप की। तो महिला T20 वर्ल्ड कप आज 3 मुकाबले देखने को मिलेंगे। इस दौरान खिताब की दावेदारी 3 बड़ी टीमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका मैदान में उतरेंगी। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम दोपहर 3 बजे से बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। दूसरे मैच में भारतीय टीम शाम 7 बजे से नीदरलैंड में भिड़ेगी। वहीं रात 11 बजे से अफ्रीका और पाकिस्तान की टक्कर होगी। और इस धमाकेदार ट्रिपल हैडर में भारत और नीदरलैंड की टीमें T20 फॉर्मेट में पहली बार आमने सामने होंगी। इस दौरान पाकिस्तान पर 64 रनों शानदार जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करने वाली भारतीय टीम लगातार दूसरी जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। दूसरी ओर डेब्यू कर रही नीदरलैंड की टीम अपनी पहली जीत की तलाश में है, और टीम को अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश के हाथों 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। मुकाबला हैंडलिंग के मैदान पर खेला जाएगा। और कल के मैच की अगर बात करें तो विमेंस T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड के 5 विकेट से हरा दिया था। टूर्नामेंट के इतिहास में श्रीलंका की न्यूजीलैंड पर यह पहली जीत है। इससे पहले दोनों के बीच हुए सभी 7 मुकाबले न्यूजीलैंड ने जीते थे। मौजूदा टूर्नामेंट में यह श्रीलंका की पहली जीत है, जबकि न्यूजीलैंड को लगातार दूसरी बार हार झेलनी पड़ी। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 6 विकेट पर 150 रन का स्कोर बनाया। जवाब में श्रीलंका ने 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
0: क्या बात है अनीता, बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को आपने दी। चलिए अब रुख करते हैं स्थानीय खबरों पर। तो राजस्थान के वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक सफलता मिली है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राजस्थान का 6ठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनाने के प्रस्ताव को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी ने मंजूरी दे दी है। अगले 8

0: 10 दिनों में इसका बजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसलिए नए दर्जे से अरावली क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण होगा और इको टूरिज्म के नए रास्ते खुलेंगे और यह नया टाइगर रिजर्व राजसमंद, उदयपुर और पाली जिलों के अरावली रेंज में फैला हुआ है।
1: जी, और भारतीय लोक कला मंडल में 6 मई से चल रही 40 दिवसीय नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन आज होगा। इसके तहत प्रसिद्ध साहित्यकार मणि मधुकर रचित नाटक खेला पोलमपुर का मंचन होगा और यह नाटक सत्ता, शोषण और जनसामान्य के संघर्ष पर आधारित एक सशक्त व्यंग है। इसका मंचन लोक कला मंडल के मुक्ताकाशी रंगमंच पर शाम 7:45 पर होगा, जिसमें आम जनता का प्रवेश निःशुल्क रहेगा।

अनीता, हमारे श्रोताओं को हम बता दें कि आज का जो सेगमेंट है वो श्रोता संवाद का सेगमेंट है। हमारे कार्यक्रम हमारे श्रोताओं को कैसा लगता है वो हमें मैसेज करके बता सकते हैं, और हमारा नंबर रहेगा 9462697568 पर। और कुछ ही देर में हम आपको लिए चलेंगे जयपुर केंद्र, जहां से सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। किशाऊ बांध परियोजना पर राजस्थान सहित छह राज्यों के बीच सहमति बनी, इससे प्रदेश की कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। राज्य सरकार ने बालोतरा में दुर्लभ खनिजों की खोज को स्वीकृति दी, प्रदेश में जल्द ही एनआईए कोर्ट खोलने पर भी मंजूरी। एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया और प्रदेश में कई इलाकों में बारिश से झुलसाने वाली गर्मी से राहत, किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू की। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर राजस्थान सहित छह राज्यों के बीच सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये सहमति बनी। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के हिस्से का पानी अब राजस्थान और दिल्ली को दिया जाएगा। इसके बदले में ये दोनों राज्य हिमाचल प्रदेश की बिजली की लागत को साझा करेंगे। इस योजना से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को भी उनके तय कोटे के अनुसार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे यमुना नदी में शुद्ध जल

0: का प्रवाह बढ़ेगा। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि शेष 10% खर्च सभी 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। इस संबंध में जल्द ही सभी राज्यों के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद परियोजना को अनुमोदन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस फैसले को राजस्थान के लिए ऐतिहासिक बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश को अतिरिक्त पानी मिलेगा, जिससे भविष्य में कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही एनआईए से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाई जाएगी। राज्य सरकार ने कल इस संबंध में कई फैसले किए। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई बैठक में 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ाने के उद्देश्य से बालोद्रा जिले के नवाताला और देवीगढ़ में करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनिज ब्लॉक की नीलामी का फैसला शामिल है। इसके लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन

0: ने कल इस संबंध में कई फैसले किए। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई बैठक में तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ाने के उद्देश्य से बालोद्रा जिले के नवाताला और देवीगढ़ में करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनिज ब्लॉक की नीलामी का फैसला शामिल है। इसके लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी दी गई है। राज्य की न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए NIA से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के 8 नए जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा। इनमें बालोतरा, डीडवाना कुचामन, फलौदी सलूम्बर, खैरतल तिजारा, डी कोटपुतली बहरोड और ब्यावर शामिल है। समाचार कक्ष से जयकिशन शर्मा।
0: कल एक अन्य बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भी राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स RSMM को खनिजों के खनन में दुनिया की नवीनतम तकनीकी अपनाते हुए जीरो लॉस माइनिंग पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। कल सचिवालय में RSMM की 76वीं वार्षिक साधारण सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मार्केटिंग के जरिए उपक्रम का कारोबार और मुनाफा बढ़ाने को कहा। केंद्र सरकार ने पराली प्रबंधन और इसके स्थायी समाधान के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में इस संबंध में एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की। श्री चौहान ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है और मिट्टी की उर्वरता तथा जन स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 544 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिसमें से आधी राशि जारी की जा चुकी है। बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 14 जिलों की 70 तहसीलों में पराली सुरक्षा बल तैनात कर कड़ी निगरानी रखने पर भी जोर दिया गया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आज 486वीं जयंती है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रताप जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री बागड़े ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुगलों को मेवाड़ से खदेड़ा था। मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके संघर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। पाली में इस अवसर पर देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। शहर में रैली भी निकाली जाएगी। कोटपुतली बहरोड में वाहन रैली निकाली जाएगी, जिसमें जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह शिरकत करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को बंद क्यों किया गया है। श्री सिंह ने मीडिया को बताया कि NTA परीक्षा प्रक्रिया को कदाचार मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी प्रश्न पत्र हर प्रकार से सुरक्षित रखे गए हैं। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज कोटा से छात्रों के लिए एक जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं। अभियान के तहत राहुल गांधी शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार के अवसरों और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने और बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए स्टॉप डायरिया अभियान 2026 कल से शुरू हुआ। चिकित्सा मंत्री द्वारा शुरू किया गया यह विशेष अभियान 31 जुलाई तक प्रदेश भर में चलेगा। जयपुर प्रथम के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य डिहाइड्रेशन के कारण बच्चों में होने वाली जनहानि को रोकना है।
2: एक तो प्रोग्राम 31 जुलाई 2026 तक निरंतरता में चलेगा, जिसमें हमारे यहां से चिकित्सा विभाग में आशा

0: सहयोगिनी घर घर जाके 5 साल तक के बच्चे हैं उन्हें ORS और जिंक उपलब्ध कराएंगे। और इसके साथ साथ में हमारे जो निरंतरता में सहयोगी विभाग रहेंगे, महिला बाल विकास रहेगा, PhD रहेगा, पंचायती राज रहेगा, इन सब का हम सहयोग लेके इसमें बच्चों की जो मृत्यु दर है, जो डिहाइड्रेशन के कारण जो मृत्यु हो रही थी बच्चों की, उसको कोशिश करके इसको कम करने की कोशिश करेंगे।
1: और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल भी कई स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अब कहीं भी हीट वेव की स्थिति नहीं है और लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली है। विभाग के अनुसार शेखावाटी क्षेत्र के सीकर और चूरू में कल झमाझम बरसात हुई, वहीं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तेज आंधी से जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन बाद में मौसम बारिश से सुहाना हो गया। अच्छी बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू कर दी है। बालोतरा में भी देर रात तूफानी आंधी के साथ बरसात हुई। बारिश बाड़मेर में मौसम ने अचानक करवट ली। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जिले में देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज अंधड़ आने से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। देखते ही देखते आसमान में काली घटाएं घिर आईं और बरसात का दौर शुरू हो गया। इस दौरान जिला मुख्यालय के अलावा बाटाड़ू, शेव, बाईतू और नोखड़ा समेत कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हुई। मानसून पूर्व की बरसात से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। इस बीच खरीफ की फसलों की बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों में खुशी का माहौल है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
1: मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किशाऊ बांध परियोजना पर राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच सहमति बनी, इससे प्रदेश की कृषि और पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। राज्य सरकार ने बालोतरा में दुर्लभ खनिजों की खोज को स्वीकृति दी। प्रदेश में जल्द ही NIA कोर्ट खोलने पर भी मंजूरी। NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया। और प्रदेश में कई इलाकों में बारिश से झुलसाने वाली गर्मी से राहत, किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स और FM बैंड 101.9 मेगा हर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। सवेरे के 9:10 हो रहे हैं और आप सभी का एक बार फिर स्वागत कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में। मैं हूं आपकी दोस्त परवीन
4: और मैं हूं अनीता। और श्रोताओं को एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि आज के कार्यक्रम के बारे में अगर श्रोता हमें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ अपनी राय देना चाहते हैं, तो हमें मैसेज कर सकते हैं 9462697568 पर।

0: इस जीवन में सबसे बड़ा माँ का ही प्यार है, वही मंदिर, वही पूजा, वही सारा संसार है। माँ कहने को तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन उसके अंदर कई किरदार छुपे होते हैं। पहले वो एक शिक्षक होती है, फिर दोस्त, और वक्त आने पर बच्चों की ढाल भी बन जाती है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को शुरू से अच्छे बुरे का ज्ञान देती है, अच्छी शिक्षा देती है। जीजाबाई जो एक ऐसी माँ थी जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया, उनके व्यक्तित्व को गढ़ा और भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय स्थान हासिल किया, वो एक माँ ही नहीं बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ, मार्गदर्शक और स्वराज की प्रेरणा स्रोत थी।
1: बिल्कुल अनीता, जीजाबाई का जन्म 12 जनवरी 1598 महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के सिंदखेड़ राजा नामक स्थान पर हुआ था। जीजाबाई को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल की शिक्षा मिली थी। इनका विवाह अहमदनगर के सुल्तान के एक शक्तिशाली मराठा सरदार शाहजी भोसले से हुआ था।
0: वैसे तो जीजाबाई के कई बच्चे हुए, किंतु बड़े बेटे संभाजी और छोटे बेटे शिवाजी इतिहास में प्रसिद्ध हुए। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से ही रामायण, महाभारत और भारतीय संस्कृति की वीर गाथाएं सुनाई। उन्होंने शिवाजी के मन में यह बात बिठा दी थी कि वे किसी विदेशी सुल्तान की चाकरी के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्र स्वराज की स्थापना के लिए पैदा हुए हैं। उन्होंने शिवाजी को केवल एक युद्ध कौशल ही नहीं सिखाया बल्कि न्याय, धर्म और समाज के हर वर्ग का सम्मान करना सिखाया।
1: जीजाबाई ने पुणे का पुनर्निर्माण कराया, उन्होंने किसानों को फिर से बसाया, खेती को बढ़ावा दिया, न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। और भी शिवाजी किसी संकट में होते तो जीजाबाई पीछे रहकर पूरा साम्राज्य संभालती थी और उनका हौसला बढ़ाती थी।
0: जीजाबाई का सपना साकार हुआ 6 जून 1674 को, जब उनके पुत्र शिवाजी महाराज का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ और हिंदवी स्वराज की आधिकारिक रूप में स्थापना हुई। गौरवशाली और ऐतिहासिक क्षण देखने के केवल 11 दिन बाद ही 17 जून 1674 को रायगढ़ के पास पाचाड़ गांव में इस महान माता ने अंतिम सांस ली। मां के स्नेह और त्याग का पृथ्वी पर दूसरा उदाहरण नहीं है।

0: इसीलिए कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ऐसी मातृशक्ति को शत शत नमन।
1: वीरांगना और साहसी जीजाबाई ने कभी विपत्तियों के आगे घुटने नहीं टेकी। उन्होंने अपने पुत्र को भी यही सिखाया कि धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए मर मिटना ही सबसे बड़ा धर्म है।

0: और परवीन ये देखो कि हर दिन कुछ खास होता है, कोई ना कोई संदेश जरूर देता है। तो आज का दिन 17 जून का यानी हर साल वैश्विक स्तर पर विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि भूमिकरण, मरुस्थलीकरण के खतरों और सूखे से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करना।
1: बिल्कुल अनीता, चारागाह विश्व के सबसे विशाल लेकिन सबसे उपेक्षित पारिस्थितिकी तंत्रों में से हैं। पृथ्वी की आधी से अधिक भूमि को कवर करते हुए ये खाद्य सुरक्षा, जल चक्र, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज इस दिवस के थीम की अगर हम बात करें तो हमारे इस दिवस की थीम है चारागाह पहचाने, सम्मान करें, पुनर्स्थापित करें।
0: जी, और इस वर्ष की थीम का मुख्य फोकस दुनिया के चरागाहों और घास के मैदानों को बचाने पर है जो पृथ्वी की सतह से अधिक हिस्से को कवर करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय चरागाह और चरवाहा वर्ष है। इस साल की थीम के तहत तीन महत्व

0: पूर्ण बातों पर जोर दिया गया है। पहला है पहचाने। इसमें जलवायु लचीलापन, खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को बनाए रखने के चरागाहों के आर्थिक और पारिस्थितिक मूल्य को पहचानना है। और दूसरा है सम्मान करें। उन चरावाहों, स्वदेशी और लोगों और स्थानीय समुदायों का सम्मान करना है जो पीढ़ियों से पारंपरिक ज्ञान के जरिए इस भूमि की रक्षा कर रहे हैं। और तीसरा है पुनर्स्थापित करना। इससे सतत भूमि और जल प्रबंधन प्रथाओं में निवेश कर खराब हो चुके हैं और चरागाहों को वापस हरा भरा बनाना है।
1: बिल्कुल, बात करें इस वर्ष के आयोजन अंतर्राष्ट्रीय चरागाह और पशुपालक वर्ष के अनुरूप है, जो जागरूकता बढ़ाने, जिम्मेदार निवेश को प्रोत्साहित करने और चरागाहों और पशुपालकों की आजीविका की रक्षा करने वाली नीतियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देने में मदद करता है। और यह सभी को इस बात की याद दिलाने का एक अनूठा क्षण है कि भूमि शरण, तटस्थता, समस्या का समाधान मजबूत सामुदायिक भागीदारी और सभी स्तरों पर सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है।
0: और आज का दिन हमें याद दिलाता है कि मिट्टी और जमीन को बचाकर ही हम भविष्य में पानी और भोजन के संकट को टाल सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे पास कुछ उपाय भी हैं अनीता। त्वरित वनीकरण और वृक्षारोपण की आवश्यकता हमें सभी को है। जल प्रबंधन हम कर सकते हैं, रेत की बाढ़, हवा के झोंकों आदि से होने वाले मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। मिट्टी के समृद्ध और अति उर्वीकरण की आवश्यकता भी हमें होती है।
0: और इसके साथ ही हम अपने श्रोताओं के जो भेजे गए मैसेज हैं वो पढ़कर सुनाते हैं कि हमारे श्रोताओं ने हमें किस तरह के मैसेज भेजे हैं और क्या क्या उन्होंने लिखा है। तो परवीन, आप बताएंगे कि क्या सबसे पहला संदेश किसने भेजा है?
1: कमल साहू लिखते हैं सेक्टर 4 से कि आज का नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है नमस्ते प्रवीण जी, नमस्ते अनीता जी, जो आज जिलों की नगरी में उदयपुर में मोती मगरी में महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं। वे हमारे रण बकूरे रहे हैं चित्तौड़गढ़ और हल्दीघाटी में। चित्तौड़गढ़ किला है, औरंगजेब से मुकाबला करते रहे, सर धड़ से कट गया फिर भी हार नहीं मानी। पुनः स्मरण कमल कुमार सुहाल का, कौशल्या सुहाल का, धारावती और श्वेता डिम्पी सुहाल का, जतिन सुहाल का, आनंद विहार से।

0: अनीता, एक और संदेश हमें मिला है। विक्रम जी कहते हैं, महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन्हें हमारा प्रोग्राम बेहद पसंद आया है। तो अनीता, हमारे लिसनर्स के लिए हम यही बोलेंगे, जिन्होंने हमें मैसेज किए उनको दिल से शुक्रिया।
1: और इसके साथ ही हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं थी आपके साथ अनीता, और मेरे साथ थी
0: परवीन।
1: तो दीजिए इजाजत,
0: नमस्कार।

0: Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's coolest work.
1: जीवन जो शेष है वही विशेष है, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है, मानो तो समस्या है वरना ये जीवन का एक हिस्सा है। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये एफएम रेडियो लेक सिटी। आज के सफर में मैं हूँ आपके साथ अनीता। तो सबसे पहले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लेक सिटी और आगाज इस गीत के साथ।

0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुरा

0: आप सुन रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लेक सिटी। 10 बजे आज हम सफर तय करेंगे 1983 का, जो बॉलीवुड इतिहास के लिए शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्मों से भरा रहा। प्रोग्राम होगा भूली हुई यादें और 11 बजे आप सुनेंगे महाराणा प्रताप इतिहास, संस्कृति और अस्मिता विषय पर साहित्यकार शिवदासन सिंह झोलावास से गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत और 12:05 से आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। तो सुनते रहिए FM रेडियो लेक सिटी।
1: ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
2: आएगी।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लेक सिटी। और बात करते हैं मौसम की, तो लेक सिटी में कल मौसम मिला जुला रहा। दिन भर धूप खिली रही, लेकिन शाम होते होते बादल छा गए, जिससे गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली। और अगर तापमान की बात करें तो कल का अधिकतम तापमान रहा 37.2 डिग्री।

डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा। और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में नया विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से कुछ जगहों पर तेज़ हवाएं चलेंगी और खंड वर्षा भी हो सकती है।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
7: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
7: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

और अब एक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि आज महाराणा प्रताप जयंती और हल्दी घाटी शारद चतुर्थी मनाए जा रहे हैं। समारोह गांधी ग्राउंड में होगा और जबकि मोती मगरी स्थित महाराणा प्रताप स्मारक से शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इसके चलते भीड़ और जाम से निपटने के लिए यातायात पुलिस और प्रशासन ने सख्त पार्किंग व्यवस्था की है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर से आने वाली दोपहिया वाहनों के लिए पहाड़ी बस स्टैंड, सूचना केंद्र, मोहता पार्क, MB हॉस्पिटल मार्ग को आरक्षित किया।

गया है। वहीं चार पहिया वाहनों की पार्किंग फील्ड क्लब मधुबन कोलकाता लोकला मंडल भटजी की बाड़ी दैत्य मगरी में रेलवे कॉलोनी मार्ग पर होगी। बाहरी शहरों और अन्य जिलों से आने वाले बड़े और छोटे वाहनों के लिए फतेह स्कूल विद्या भवन देवाली प्रांगण में विशाल पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। बाहर से आने वाले इन आम जनता को असुविधा न हो इसके लिए प्रशासन ने विशेष रूप से फतेह स्कूल और विद्या भवन पार्किंग स्थलों से मुख्य आयोजन स्थल गांधी ग्राउंड तक आने जाने के लिए अलग से शटल बसों की निःशुल्क व्यवस्था की है ताकि कोई अव्यवस्था न हो और लोग आसानी से कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकें।

0: AIR at 90.
1: गुड मॉर्निंग लेक सिटी प्रोग्राम बस यहीं तक आपने ट्यून किया एफएम रेडियो लेक सिटी सवेरे के ठीक 10 बजे हैं और मैं हूं आपके साथ अनीता लेकर प्रोग्राम भूली हुई यादें। इस प्रोग्राम में आज हम सफ़र तय करेंगे 1983 का। कुछ फिल्मों का जिक्र हमने पिछले प्रोग्राम में किया था और कुछ हिट फिल्मों की बात हम करेंगे आज इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले फिल्म हमने ली है सौतन।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूली हुई यादें, और इसमें आज हम सफ़र तय कर रहे हैं 1983 का, और ये फिल्म है सौतन, जो 1983 की एक बहुत ही बेहतरीन और सुपरहिट फिल्म रही। इसका निर्देशन सावन कुमार ने किया था।

सौतन फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मॉरिशस में की गई थी। जीनत अमान और परवीन बॉबी को रुक्मणी की भूमिका के लिए पहले पेशकश की गई थी, लेकिन दोनों ने ठुकरा दिया और बाद में ये रोल टीना मुनीम को दिया गया।

सौतन फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात की जाए तो इस फिल्म में थे राजेश खन्ना, पद्मिनी कोल्हापुरी, प्राण, प्रेम चोपड़ा, श्रीराम लागू, शशिकला, परेश रावल, विजय अरोड़ा, यूनुस परवेज और सत्येंद्र कपूर।

सौतन फिल्म का संगीत तैयार किया था उषा खन्ना ने और ज़्यादातर गीत सावन कुमार टाक ने ही लिखे थे। और अगर आवाज़ों की बात करें तो इस फिल्म के सभी गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाए और साथ में आशा भोसले भी थीं।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
6: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूली हुई यादें और इस प्रोग्राम में आज हम सफ़र तय कर रहे हैं 1983 का। अब बात करते हैं 23 जून 1983 में रिलीज़ हुई फिल्म वो सात दिन।

हम बात कर रहे हैं फिल्म वो सात दिन की, जिसका निर्देशन बापू ने किया और सुरेंद्र कपूर और बॉनी कपूर ने इस फिल्म को बनाया। जैनेन्द्र जैन ने इसके संवाद लिखे।

वो सात दिन। इस फिल्म के अगर मुख्य कलाकारों की बात की जाए तो इस फिल्म में थे अनिल कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरी, नसरुद्दीन शाह, राजू श्रेष्ठ, नीलू फुले, आशा लता, दीना पाठक और जगदीप। इस फिल्म के सभी गीत लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। आवाजें शब्बीर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोंसले, सुरेश वाडकर, कविता कृष्णा मूर्ति, किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूली हुई यादें, और इसमें हम सफर तय कर रहे हैं 1983 का। अब हम फिल्म ले रहे हैं अवतार।

हम बात कर रहे हैं फिल्म अवतार की। इस फिल्म को बाद में तेलुगु फिल्म ओ थंडरी थीरपु में भी बनाया गया था और जिसमें मुरली मनोहर और जय सुधा ने अभिनय किया था। कन्नड़ में कलियुग के रूप में राजेश खन्ना और आरती ने भी अभिनय किया था। मलयालम में जीवितम ने, मधु और उन्नी मैरी ने, और उसके बाद तमिल में भी ये फिल्म आई थी मास्कई, जो 1984 में रिलीज़ हुई थी।

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूली हुई यादें और 1983 का हम सफर तय कर रहे हैं और बात कर रहे हैं फिल्म अवतार की, जिसमें मुख्य कलाकार रहे राजेश खन्ना, शबाना आजमी, मदन पुरी, सुजीत कुमार, गुलशन ग्रोवर, पिंचू कपूर और गोपाल। गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे।

0: भूली हुई यादें, इस प्रोग्राम में आज हमने सफ़र तय किया 1983 का। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर, यह एफएम रेडियो लेक सिटी। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष में महाराणा प्रताप इतिहास, संस्कृति और अस्मिता विषय पर साहित्यकार शिवदान सिंह झोलावत से गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज है महाराणा प्रताप जयंती और इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिवदान सिंह जी झोलावास। आप इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं और इनसे हम जानेंगे कि वर्तमान समय में या फिर यूं कहें आधुनिक युग में महाराणा प्रताप के जीवन से हम क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत, नमस्कार।
2: नमस्कार
1: शिवदान सिंह जी, अगर हम बात करें महाराणा प्रताप के जीवन दर्शन जो हम बात कर रहे हैं उनके प्रमुख आधार क्या है और वर्तमान समय में वह कितने प्रासंगिक है, क्योंकि उन्हें हम प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को जब हम याद करते हैं तो ऐसा क्या उनके जीवन दर्शन से हमें सीखने को मिलता है जो आज के युवाओं को और समाज को जानना ज़रूरी है।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं बात की शुरुआत श्याम नारायण पांडे की उस पंक्ति से करूँगा, आज कल हल्दीघाटी विजय दिवस और उसके बाद जो महाराणा प्रताप जयंती जय शुक्ला तृतीया, तो ये दोनों एक साथ मिलते हुए आ रहे हैं। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, कल कल बहती थी रग रग गंगा अरिदल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को। जी हाँ, निश्चित रूप से जब जीवन दर्शन के आधार की बात करते हैं, प्रासंगिकता की बात करते हैं, तो मुझे ख्याल आता है कि महाराणा प्रताप के लिए राष्ट्र प्रथम था। जो विरासत उन्हें मिली थी, पुरखों से जो संस्कार मिला था, उन्होंने अपना सर्वोच्च धर्म राष्ट्र धर्म समझा। जिस कुल में, जिस वंश में उन्होंने जन्म लिया था, वो धर्म उनके लिए द्वितीय था और प्रजा की रक्षा एक संकल्प की तरह था। जहाँ तक प्रासंगिकता की बात आती है, हम अभी अमेरिका और ईरान और यूक्रेन और रूस के हमलों को हमने देखा है, जहाँ मूल्यों का पतन होता जा रहा है, जहाँ संधि और वार्ता की बात चलती है, रात्रि को विश्राम लेना होता है, वहाँ मानवीय मूल्यों को हनन करते हुए ऐसे जहाज़ों पर हमला किया जा रहा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधि की तरह से कहीं भी ठीक नहीं है। इसलिए जब प्रताप के जो युद्ध लड़े गए और एक लंबा संघर्ष, अविजित संघर्ष, सबसे गौरव की बात यह है कि दुनिया का वो बेताज बादशाह कहलाने वाला अकबर यहाँ आने के लिए तरस गया। अपनी जब प्रताप का निधन हुआ तो अकबर के अश्रु आ जाते हैं, रोता है और वो इसलिए रोता है, फफक पड़ता है कि मैं एक व्यक्ति को अपने जीवन में पराजित नहीं कर सका, बाकी मैंने दुनिया को जीत लिया। ये बात थी। और निश्चित रूप से हमने, भारत ने जो अभी गौरव बनाया है पिछले 10 वर्षों में, एक दशक में जो इस कालखंड में जो हमने खड़ा किया है, तो आप ये देखिए कि जीवन के आधार की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं, तो जीवन दर्शन राष्ट्र के नायक और नेतृत्व से खड़ा होता है और वो निश्चित रूप से प्रताप के साथ था।
1: शिवदान सिंह जी, अगर हम बात करें जो संघर्ष की आप बात करें, तो स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए जो उनका संघर्ष है और भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर उसको देखा जाए तो उसे किस रूप में देखा जाना चाहिए कि जो आपने

0: प्रताप के बारे में बताया है, अगर उसे और देखा जाना चाहिए या समझा जाना चाहिए तो किस तरह से देखा जाए?
1: स्वतंत्रता और स्वाभिमान के संघर्ष की बात है और इतिहास की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि उस समय समकालीन लेखकों ने क्या लिखा है। और अकबर के लेखक अल बदायूं नहीं लिखते हैं, उस समय जो डायरी अपन भी लिखते हैं आज भी लिखी जाती है जिसको यात्रा वृत्तांत और इस तरीके से, तो वो साथ में आते हैं और उनकी एक पुस्तक लिखते हैं मुंतकाफ ओ तवारीख, वो अभी तक उर्दू में थी और उर्दू में ही लिखी गई थी, उसका तर्जुमा उसको हिंदी में करके अनुवाद करके, और वो चंद पंक्तियाँ मैं आपको उसमें जो जितना मुझे कुछ याद आता है बताना चाहूँगा कि वो चौगान की बाजी के लिए वो जाता है अकबर के सामने और कहता है कि साहब मैं जब राजा साहब अकबर जब खेल रहे थे तो कह के मैं भी युद्ध में जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ, तुम जाओगे क्या? पर उसी पुस्तक में वो लिखता है कि कोकुंदा, गोकुंदा जिसको कहते हैं लश्करी फौज की कार्रवाई, कोकुंदा अवाइल माह रबी उल अवल 984 हिजरी 1576 ईस्वी में फतेह हुआ, जिसका विवरण ये कहते हैं कि मानसिंह और आसिफ खां फौज के साथ मांडलगढ़ के रास्ते कूच करते हुए बलदा तक

0: साथ में आते हैं और उनकी एक पुस्तक लिखते हैं, मुंतकाफ तवारीख, वो अभी तक उर्दू में थी और उर्दू में ही लिखी गई थी, उसका तर्जुमा उसको हिंदी में करके अनुवाद करके, और वो चंद पंक्तियां मैं आपको उसमें जो जितना मुझे कुछ याद आता है बताना चाहूँगा, कि वो चौगान की बाजी के लिए वो जाता है अकबर के सामने और कहता है कि साहब मैं जब राजा साहब अकबर जब खेल रहे थे तो कह के मैं भी युद्ध में जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ, तुम जाओगे क्या? पर उसी पुस्तक में वो लिखता है कि कोकुंदा, गोगुंदा जिसको कहते हैं, लश्करी फौज की कार्रवाई, कोकुंदा अवाइल माह रबी उल अवल 984 हिजरी 1576 ईस्वी में फतेह हुआ, जिसका विवरण ये कहते हैं कि मानसिंह और आसिफ खां फौज के साथ मांडलगढ़ के रास्ते कूच करते हुए बलदा तक पहुंचे। ये स्थान राणा कीका के सदर मुकाम गोगुंदा से 7 कोस पर स्थित है। मानसिंह हाथी पर सवार था, बादशाही अमीर जैसे ख्वाजा रईफ, शहाबुद्दीन और ये सारे लोग आए थे। बट असल में वो ये इसमें लास्ट में लिखता है कि अगर मेहतर खां वहां ढोल नहीं बजाता तो हमारी शाही फौज तो पीछे आ चुकी थी। इसका मतलब यह है कि हौसला तो युद्ध के पहले हमले में ही परास्त हो चुका था। दूसरी बात, हम स्वाभिमान की बात करते हैं तो प्रताप अकेला नहीं लड़े, युद्ध के बाद की बात करें तो युद्ध के बाद गोगुंदा में डेरा डाला, और ये इसी समय की बात थी, गर्मी का मौसम था और अभी जो आम का फल आ रहा है ऐसा आम का फल खाया फौजों ने और वो लोग बीमार हो गए, हैजा हो गया उनको, उनको यहाँ से जाना पड़ा, विस्थापित होना पड़ा, और यहाँ से लेके भी क्या गए। असल में बहुत एक छोटा सा युद्ध था, एक तरफ शाही फौज थी जिसमें 7,000 8,000 25,000 तक की सेनाएं थी और सामने चंद लोग 2,000 2,500 लोग, पर जब तीर चले इन घाटियों से तो उसका वो फौज सामना नहीं कर सकी। इसलिए मुझे लगता है कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान की हम ये बात करते हैं तो इसमें पूरा का पूरा नेतृत्व जो था पूरी जमीन के साथ सारे लोग साथ में खड़े हो गए थे और उन्हें लगा कि ये हमला हमारी इंसानियत पर हमला है, और इंसानियत पर जब हमला होता है तो वो राजा के हाथ में नहीं छोड़ा जाता है, राजा के साथ में जितने सहयोगी होते हैं वो सब करते हैं। और उसमें यही जो मैं आपको जिक्र कर रहा था कि मेहतर खान ने कहा कि चंदावल फौज जो पीछे वाली फौज होती है नगाड़ा बजाते हुए आगे बढ़ाओ, ऐलान कर दिया कि बादशाह सलामत आक्रमण करते हुए आ पहुंचे। अगर वो ये ऐलान नहीं करता मेहतर खान तो मुगल फौज तो लौट चुकी थी, जूठा ढोल बजाकर ऐलान करना पड़ा। खैर ये युद्ध की नीति है, छल कपट होता रहता है, इसलिए कई चीज़ें हुई, पर मुझे लगता है कि आज से जब 450 वर्ष हम कर रहे हैं हल्दीघाटी युद्ध विजय के, 450 वर्ष पहले जहां पूरी दुनिया में ईसाइयत और इस्लाम खड़ा हुआ था वहां हिंदू धर्म की ध्वजा लेकर एकमात्र शासक, अजेय शासक जो अड़े हुए थे वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थे।
1: जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास में कई युद्ध हुए और कई प्रमुख युद्ध माने गए हैं, लेकिन हल्दीघाटी युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसे एक युद्ध नहीं बल्कि एक विचार के रूप में देखा गया और पूरे विश्व में एक ऐसी घटना के रूप में उसे देखा जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल निश्चित रूप से विचार की बात आई तो विचार में मुझे मैं पूरे सम्मान के साथ उनका जिक्र करूंगा, ग्वालियर के राजा राम शाह तंवर, उनके पुत्र कुंवर शालीवाहन, उनके भाई कुंवर भवानी सिंह और पौत्र कुंवर प्रताप सिंह, तीन तीन पीढ़ियां ग्वालियर के राजा। कोई देखिए आज भी युद्ध होता है, आज भी रणनीति होती है, आज भी सेनाओं में लोग जाते हैं, पिता पुत्र जाते हैं, तीन तीन पीढ़ियां केवल स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ने आ जाती है। आप ये देखिए कि जालामान क्या कहते हैं, भागना तो बहुत आसान है, किसी भी पलायन करना बहुत आसान है, जालामान ये कहते हैं कि हुकम आपके सिर का मुकुट उतार के मुझे दीजिए, अभी राष्ट्र को आपकी जरूरत है। आप हम बात करते हैं हमेशा चेतक की, निश्चित रूप से एक पशु का प्रेम जब उसके लगा कि अब मेरा जो सवार है, मेरा जो राजा है जिसके लिए मैं चलता हूं, जिससे मेरी पहचान है, उन्होंने उनको सुरक्षित बाहर निकालने का मार्ग भी देखा और फिर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हम उस रामप्रसाद हाथी को भूल जाते हैं जिसको एकमात्र लूट के ले गए थे, और लूट के जब वो ले जा रहे थे तो यहाँ जब बाजारों से निकाला जा रहा था, आमेर की ओर तरफ जा रहा था, तो इन्होंने उसका नाम भी पीर प्रसाद कर दिया था। उस पशु को लगा, पशुवत प्रेम देखिए, वो अपने राजा और अपनी सेना और अपनी जमीन के प्रति सम्मान देखिए, कि वो निराहार रह गया, बीच में कहीं दलदल में फंस भी जाता है और ले जाता है और अपने प्राण को उत्सर्ग कर देते हैं। ये

0: जब हल्दीघाटी युद्ध के विचार की बात करते हैं तो हल्दीघाटी युद्ध के उपरांत महाराणा प्रताप घायल सैनिक थे, उनकी सेवा के लिए जाते हैं, पट्टे का भी जिक्र आता है, कुछ पट्टे भी देते हैं, वनवासी सहयोगी बने। और इससे भी बड़ी बात, जब ऐलान होता है तो कोशीतल रानी, कोशीतल में ऐलान हुआ तो वहां कोई बड़ा पुरुष नहीं था, कोशीतल रानी, हुंकार की कलंगी लगती है एक छोटे से बेटे को कि ये कैसे जाएगा, ये नहीं लड़ सकता, मुझे जाना चाहिए, सैनिक वेश धर के और युद्ध लड़ने के लिए जाती है। ये जो खूबसूरती है, ये जो ताकत है, ये जो विश्वास है अपने राजा के प्रति और अपनी जमीन के प्रति, इसको दोहराने की जरूरत है। और हल्दीघाटी युद्ध के ये जो विचार हैं, हर एक घटना है, हर एक प्रसंग मुझे लगता है कि याद करने लायक है। केवल एक दो चार व्यक्तियों का नाम लेने की बात नहीं है, 140 से अधिक वीरों की आहुति, और उसमें चाहे भामाशाह भी थे, हरावल और चंदावल की सेनाओं के अलग अलग लोग थे, और उसमें सभी जात धर्म के लोग थे, इसलिए ये कोई व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था और एक व्यक्ति के लिए नहीं था।
1: प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और हल्दीघाटी युद्ध के संघर्ष के साथ साथ उनके जीवन दर्शन पर और भी बातें जारी रहेगी। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।
2: कि प्राण वंदना करती आई और ये जाप की धरती, सिंहासन को खड़ा रखेगी काव्यताप की धरती, सिंहासन को खड़ा रखेगी काव्यताप की धरती। तो मर्यादा के लिए महल को छोड़ दिया था, लेकिन अकबर के आगे झुकी नहीं।

0: श्रोताओं, आज ही महाराणा प्रताप जयंती और इस संदर्भ में बात कर रहे हैं हम शिवदान सिंह जी जोलावा से। आप साहित्यकार और इतिहासकार हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम हल्दीघाटी युद्ध संघर्ष और महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की बात कर रहे थे। तो शिवदान सिंह जी, अगर आप ये बात कहें कि विपरीत परिस्थितियों में भी, जो आपने परिस्थितियाँ बताई कि किसी विकट परिस्थितियों में महाराणा ने अपने मेवाड़ को बचाने के लिए या मेवाड़ की रक्षा के लिए जो प्रयास किए, और प्रताप के जो अडिग रहने की जो भावना थी या यूं कहें ये उनमें जो शक्ति थी, इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप?
1: इसका मुख्य कारण विरासत में मिले संस्कार थे। निश्चित रूप से हमारी शिक्षा और हमारे संस्कार और हमारे पूर्वजों का जो हमें मिला है विरासत में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अब जब अड़िग रहने की बात करते हैं, तो हमने सांगा को देखा है, जो हिंदुस्तान की उस समय तत्कालीन हिंदुस्तान की आज की हिंदुस्तान की सीमाओं के बाहर चले गए थे, जो जिसको भारतवर्ष कह रहे हैं, अफगान तक गए थे। हमने कुंभा को देखा है, तो उन्हें विरासत में ऐसा ही मिला, शौर्य मिला। और मैं हम इससे जाने से पहले मैं उन वीरों का जिक्र कर रहा था कि शहीदों की ग्रंथवाला में कौन कौन वीर गए थे, तो उसमें देखिए मान सिंह राठौड़ भी थे, अचलदास चुंडावत भी थे, हरिदास सोनगरा थे, संग्राम सिंह के मैं जिन चार पांच जिनकी बात करी थी मैंने कि कैसे रामशाह तंवर और उनके बेटे और उनके पौत्र साथ में थे, तो कीरत दास थे, दौलत खान थे, मतलब हर जात हर वर्ग है ना, दूधा सांगा थे, जयमल चुंडावत थे, ब्राह्मण कल्याण जी पांडेरी मेनारिया थे उसमें थे। तो विपरीत परिस्थितियों में अड़िग रहने वाली जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले राष्ट्रप्रेम और मातृभूमि के प्रति समर्पण की बात आती है। और राष्ट्रप्रेम केवल एक दिन में आने वाली घटना नहीं है, एक दिन में समझ में आने वाला विषय भी नहीं है। राष्ट्रप्रेम के लिए सबसे पहले सेवा भाव होना चाहिए, और जब सेवा भाव है तो फिर प्रताप जब जंगलों में रहे तो उनके सहयोगी सहचर वनवासी भील हमेशा ढाल बनकर उनके साथ खड़े रहे, उन्होंने कभी अकेला महसूस नहीं किया। फिर मैं एक घटना निश्चित रूप से कहूँगा कि अगर हम कहते हैं कि वो दुनिया का बेताज बादशाह था और प्रताप के सामने आता है, तो वो जलाल खां कोरची को भेजता है पहली बार, दूसरी बार भेजता है जिस हल्दीघाटी युद्ध का जिक्र हो रहा है मान सिंह जी को बना के भेजता है सेनापति, तीसरी बार आता है भगवंत दास, और चौथी बार आता है टोडरमल। प्रताप के सामने चार चार संधि के प्रस्ताव आते हैं। आप देखिए कि इसी से स्पष्ट हो जाता है कि बलवान कौन था, ताकतवर कौन था, और किसको संधि की जरूरत थी। प्रताप ने तो हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। निश्चित रूप से प्रताप को लगा कि आज अगर मैं झुक गया तो जो विचार दुनिया में फैल रहा है, विशेष करके इस्लाम का, वो यहाँ हमारी सनातन की संस्कृति को ख़त्म कर देगा। वहीं उसकी बहादुरी भी थी। इनके सेना नायक जो थे, आपको याद होगा, नाम ध्यान होगा, वो एक मुगल सैनिक थे, पठान सेना नायक थे, और उनके हाथ का भी प्रसंग है कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद जब देखा गया कि कौन कैसा है, कौन योद्धा है, तो जो प्रताप के सेना की तरफ से सेनापति थे, उनके हाथ में तलवार छुटा नहीं सके, इसलिए उनको जब दफन किया

0: गया तो तलवार के साथ उन्हें दफन किया गया। ये जो चीज है, ये जो संस्कार है, ये प्रताप से आते हैं, ये स्वाभिमान की बात है, राष्ट्र रक्षा की बात है। तो ये सारे जो चीजें हैं वो विपरीत परिस्थितियों में अड़िग रहने को हमें सिखाते हैं।
1: शिवदान सिंह जी, अगर हम बात की जाए कि जिस हम हल्दीघाटी युद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कई बार पुस्तकों में या यूं कहें पूर्व में कुछ गलत जानकारियां, भ्रामक जानकारियां दी गई, जिसमें ये कहा गया है कि अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाएं जब आमने सामने भिड़ी और इस तरह का युद्ध हुआ, वहां पर पूरी भूमि रक्त रंजित हो गई। लेकिन आप बताएं, क्या वास्तव में अकबर कभी महाराणा प्रताप का सामना भी कर पाया, या यूं कहें कि मेवाड़ का जो ये क्षेत्र है जिसको हम आज के समय में मेवाड़ कह रहे हैं, ये किस कितना क्षेत्र में व्यापक फैला हुआ था और कितने दूर तक शत्रु निकट भी नहीं आ पाया और मेवाड़ की अभेद्य किले को, अभेद्य जो सीमा है उसको भेद भी नहीं पाया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ये बहुत आसान है इसको समझना, जिसने मेवाड़ देखा है और जो मेवाड़ में घूमा है वो आराम से इसको समझ सकता है। मेवाड़ गिरिवर, आसपास में पर्वतों से गिरा हुआ क्षेत्र है और उसके आसपास जो आप देखेंगे चारों तरफ लगभग लगभग, खास तौर से अभी जो केंद्रित है उदयपुर महानगर, इसके आसपास में आपको एक जलीय सीमा मिल जाएगी। जैसे आप उदय सागर की तरफ चले जाइए, इधर पिछोला की पाल की तरफ चले, पीछे बड़ी जिसको कहते हैं आप, है ना, बड़ी का तालाब चले जाएंगे, हर तरफ चले जाएंगे, मदार की तरफ चले जाएंगे, तो लगभग एक ऐसी बाउंड्री जो जल से आच्छादित थी उसको पार करना इतना सहज सरल नहीं था। फिर पहाड़ीदार घुमावदार रास्ते थे और पर्वत थे, जो जमीनी सेना जमीन पर लड़ती थी उसको पहाड़ पर चढ़ने में पसीने आ जाते थे। इसलिए ये तो रही बात इस यहाँ जो भौगोलिक स्तर था उसकी, फिर इसमें निकलने का रास्ता भी जो यहाँ रहता था वही जानता था, वनवासी, बहुत आसान था। प्रताप के जो पुत्र हुए उनको जो जागीर दी गई वो दरियावत, पारसोली, कुर्ला, गाडरमाला, सिंगोली, वाइस, दांतरा, गेंदलिया, हाथी, नाणा, बेड़ा, बीजापुर, जोलावास, ये सब उनके पुत्रों को दी हुई जागीर थी। तो आप ये समझिए कि पाली से शुरू होते हुए कुछ क्षेत्र राजसमंद में घुसते हुए, पहलवाड़ा होते हुए, इधर धरियावद प्रतापगढ़ के कुछ हिस्से में होते हुए, बांसवाड़ा के इस बगल से नीचे से सलुम्बर के यहाँ से होते, फिर वापस धरियावद होते हुए इधर आता है हल्दीघाटी क्षेत्र के आसपास। तो बाउंड्रीज जो थी वो उनके खासतौर के प्रताप के जो पुत्र थे उनको जो जागीर मिली थी उस कारण से एक सीमा रेखा तैयार हो गई थी। और जब भी आक्रांता बाहर से अंदर इन्वेंडर आने की कोशिश करता था तो वो सूचना तंत्र इतना मजबूत था कि यहाँ इतला सेंटर में हो जाती थी कि कोई दुश्मन आ रहा है, सारे सचेत हो जाते थे। पहला तो दुश्मन यहाँ तक एंटर ही नहीं हो सकता था, और यहाँ तक पहुँचने से पहले उसको कई सारी सीमाएं पार करनी होती तो उसको वहीं निपटा दिया जाता था। प्रताप की मृत्यु पर एक दुहा छप्पा है, असले गो अणदाग पागले गो अणनमी गो आड़ा गौड़ाए गयो जको वह तो धुरियामी। ये छप्पे सुनकर खास तौर से प्रताप का ये जब छप्पे अकबर के कान में पड़ा तो वो रो पड़ा। किसी शत्रु की मृत्यु पर अगर सामने प्रतिद्वंद्वि के आंसू आ जाते हैं तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि उसके मन में कितनी पीड़ा रही होगी। बाबूजी चतुर सिंह जी कहते हैं, राणा धीर धर्म रखवाला, थू रघुकुलरा वटवाला, थू रजवटरा वटवाला। तूने रजवट की तो वट रखी रखी है, पर धैर्य के साथ रघुकुल की जो वट रखी है वो प्रताप है। तो प्रताप, प्रताप एक दिन में खड़े नहीं होते, प्रताप हर सांस के साथ प्रताप थे, जीवन का हर दिन प्रताप था। वो अपने सहचरों के साथ योजना भी बनाते थे और इस कारण सारे लोग उनसे प्रेरणा भी लेते थे।
1: अगर बात की जाए महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की, शौर्यता, वीरता और देशभक्ति तो उनमें थी ही, लेकिन साथ ही साथ ऐसे नेतृत्व के गुण के साथ साथ ऐसे और कौन से उनके व्यक्तित्व में गुण थे जिनको आज के समय में लोगों को जानना और समझना जरूरी है, और खास तौर से युवा पीढ़ी उनके व्यक्तित्व को लेकर कितना कुछ सीख सकती है?
0: युवा पीढ़ी को, हम सभी को, युवा पीढ़ी नहीं, जो आ रहे हैं बच्चा वो भी, और जो एक आप उम्र में अगर नहीं सीख पाया उसके लिए भी। मैं बहलोल खां के, जब हम आप जिम जा रहे हैं, हम अपने सौष्ठव, शरीर की सौष्ठव की बात करते हैं तो बल शक्ति की बात करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं, वजन उठाते हैं, उन्होंने एक बार किया और एक वार में बहलोल खां को जीरा

0: बख्तर, जीरा बख्तर जो पहना हुआ होता है लोहे का कवच, और घोड़े समेत दो भाग में बराबर काट दिया। ये उनकी शक्ति थी। प्रतापशाही तलवार है उस समय, जो अपने सिरोही के आसपास जो तलवार है उसको कहते हैं फौलाद की तलवार। ये फौलाद बनाने की विधि भी अपने यहाँ सिसारमा का कारीगर ही जानते। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जो है, खासतौर से दुनिया के वैज्ञानिक USA वगैरह से, वो लोग यहाँ आके और सीखते हैं उनसे विधि। ये खैर बताते भी नहीं हैं और अब बहुत कम लोग बचे हैं। तो हमारी जो तलवारें थी, और उसका क्या है, वो जो प्रतापशाही तलवारें उसके तीन हिस्से हुए होते हैं। जो एक जो मूठ में घुसा हुआ रहता है, मूठ के अंदर जहाँ से पकड़ते हैं उसको तो कहते हैं मुंदाण, और जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है वो कहलाता तेलाण, और मध्य भाग जहाँ से वार होता है वो कहलाता था एलाण। एक तलवार के राजस्थानी में तीन भाग जो हैं उनके तीनों के तीन नाम हैं। इसी तरीके से जो मैंने बहलोल खां की घटना का वध किया, बहलोल खां के वध का घटना बताई, तो अब्दुल रहीम खान खाना, जब दिवेर हमले के वक्त की बात है, तो रात में उनके बेटियां उनके डेरे से कुंवर अमर सिंह जी ले आते हैं, प्रताप तक ये इतला पहुंचती है। प्रताप ने कहा ये तो युद्ध नीति नहीं है, ये तो छल कपट है, और ये हम कब से करने लग गए, ये शत्रुओं को शोभा देता है। सनातन में, हिंदू धर्म में, राजपूत संस्कार में यह है कि पराई बहन बेटियों की इज्जत करना सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए आप तुरंत इन्हें छोड़ के आइए। अमर सिंह जी को ठीक नहीं लगा, पर उन्होंने कहा यह मेरा आदेश है, उनका नहीं हुक्म, इससे तो वो लोग सरेंडर हो जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। उनका नहीं, लड़ना है, युद्ध के मैदान में लड़के जीतना सीखिए। तुरंत से वहाँ से ले जाते हैं बहू बेटियों को, रातों रात उनके डेरे पर छोड़ देते हैं। वो संकल्प लेके जाते हैं अब्दुल रहीम खान खाना कि जब तक मैं जिंदा हूँ, वापस अकबर रहे ना रहे, मैं इस मेवाड़ की ओर नहीं आऊँगा, मैं इस नायक के नेतृत्व में। तीसरी घटना है सेरीमा सुल्तान खां की। सेरीमा सुल्तान खां के ऊपर भाला लग जाता है, उनका मृत्यु हो जाती है। वो अंतिम समय जाते जाते कहते हैं कि मुझे जल पिला दीजिए। बात निकलती है प्रताप तक जाती है। जल पिलाना वह खैर हमारे संस्कार में है, अगर शत्रु भी मांगता है जाता हुआ तो उसे पिलाया जाता है। पर उनके भाला लगा हुआ था, सेरीमा सुल्तान खां का भाला निकालने के लिए कुंवर अमर सिंह जी उनकी सीने पे, छाती पे पैर रख के और खींचना लगते हैं। प्रताप टोंक देते हैं, ये आपको कहाँ कुंवर, आप ये कहाँ से सीखे, गलत बात है। अब शत्रु जा रहा है, वह अंतिम समय पानी मांग रहा, आप बैठिए। बैठ के ससम्मान भाला निकालते। ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, ये जीवन के जो छोटे छोटे प्रसंग हैं, यही हमें सीखने के लिए देते हैं। मुझे लगता है कि प्रताप के ये जो गुण हैं वही उनकी नेतृत्व की भूमिकाएं तय करते हैं। चेतक की भूमिका को हम जानते हैं, भामाशाह की भूमिका को जानते हैं, भामाशाह ने क्या किया, पर व्यक्तित्व के जो गुण होने चाहिए वो निश्चित रूप से प्रताप में थे, और प्रताप ने वही संस्कार आने वाली पीढ़ियों को दिए।
1: जब हम महाराणा प्रताप के शौर्यता और वीरता की बात करते हैं, और लेकिन जब इतिहास के कालखंडों को देखते हैं, क्योंकि 1576 में जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना माना जाता है, लेकिन हल्दीघाटी युद्ध से लेकर उनकी मृत्यु के बीच में एक घटना और भी हुई जिसके बारे में काफ़ी कम लिखा पढ़ा गया है, लेकिन लोग कम जानते हैं, दिवेर का युद्ध। और वहाँ पर भी महाराणा प्रताप की जो शौर्यता, वीरता, युद्ध कौशल, और उसका शत्रुओं ने लोहा माना, मुगल पूर्ण रूप से परास्त हुए, उनको खदेड़ दिया गया इस राजस्थान की धरा से, उसके बारे में, ये जो कालखंड के बीच का जो अंतराल है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें तो।
0: आप हल्दीघाटी युद्ध से लेकर दिवेर युद्ध तक निश्चित रूप से एक आयु में एक विश्राम भी आता है, तब हमारी राजधानियाँ भी जो थी निरंतर पलटती रही। बीच में अंतिम राजधानी चावंड हुई, चावंड से पहले आवरगढ़ थी, आवरगढ़ से पहले और थी। तो ये एक जो परिवर्तन सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी होता रहा, और एक प्रताप की उम्र भी होती है तो उम्र का अंतर भी आता रहा। पर निश्चित रूप से अगर हम देखेंगे तो चाहे दिवेर का प्रसंग हो, चाहे दिवेर का युद्ध हो, चाहे हल्दीघाटी का युद्ध हो, युद्ध किसी भी मायने में कम नहीं था। इस बीच में जब हम बात करते हैं इस कालखंड में, तो प्रताप के काल में हमें कृषि विज्ञान के विश्व वल्लभम ग्रंथ मिलता है, किस मौसम में किस ज़मीन पर कितना जाएंगे तो कहाँ कैसा पानी निकलेगा और किस कैसी खेती करनी चाहिए। इसी तरीके से राज्याभिषेक पद्धति, राजा का अभिषेक कैसा होना चाहिए, किस वक्त पर किस मुहूर्त में, भूमि की परख के बारे में, फसल के रूप में, ज्योतिष विज्ञान के रूप में, नक्षत्र विज्ञान के रूप में, ये सारी

0: पुस्तकें प्रताप के समय निकली थी। प्रताप के समय में सेवा के कार्य भी होते थे, और निसारदी प्रताप के समय में जो पेंटिंग्स निकली थी उसको रागमाला शैली की पेंटिंग्स होती थी। चावंड में उसके कुछ दृश्य मिलते हैं, कुछ अपने यहाँ म्यूजियम में भी थे, अहड़ म्यूजियम में भी कुछ उसकी प्रदर्शनी थी, वो रागमाला शैली की। इसी तरीके से जब हम चावंड की बात करते हैं तो चावंड में जल शोधन, वाटर प्योरिफिकेशन, आज हम जो जिसको मिनरल वाटर क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं ना जिसको आरओ का पानी साफ सुथरा, उस समय चावंड में आप ये देखिए कि 26 आयताकार खंड बना रखे थे जिसके अंदर कोयले की जूरी और एक से दूसरे में पानी जाता था, नमक डाल रखा था, और कैसे पानी फिल्टर होके एक किले में से नीचे आता था, प्रजा पीती थी। ऐसी तरीके से वाटर कंजर्वेशन की हम बात करें तो आवरगढ़ किले की बात करें या हमारे यहाँ सज्जनगढ़ में भी अभी मिल रहा है, ये बरसाती पानी का उपयोग कैसे किया जाए। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में भी 74 बावड़ियाँ हैं। तो ये सारी विधि हमने पहले से सीख ली थी। प्रताप का एक ही आदेश आता था कि खेती बंद कर दो, पहाड़ों में चले जाओ, तो उनका आदेश सर्वोपरि होता था। किसान अपनी खेती छोड़कर और पहाड़ों में चले जाते थे ताकि शत्रुओं को फसल भी नष्ट कर देते थे, शत्रुओं को कुछ हाथ नहीं लगे, शत्रु को वापस लौटना पड़ता था। तो ये घटनाक्रम है, लंबी सारी बातें हैं, लंबी चौड़ी घटनाएं हैं, लंबे चौड़े प्रसंग हैं। प्रताप ने जहाँ जैसी नीति की जरूरत पड़ी उन्होंने अपनी उस युद्ध कला का, युद्ध कौशल का, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए नेतृत्व किया, और आज इसी कारण हम नहीं दुनिया प्रताप को सीखने के लिए आ रही है, प्रताप से समझने के लिए आ रही है।
1: महाराणा प्रताप के जीवन दर्शन पर और भी बातें जारी रहेगी, लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।
2: It's a song about a warrior.

0: श्रोताओं, आज महाराणा प्रताप जयंती और इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम मौजूद हैं शिवदान सिंह जी जोलावास। आप साहित्यकार हैं और साहित्यकार और ब्रेक में जाने से पहले हम महाराणा प्रताप के जीवन दर्शन और विभिन्न कालखंड के बारे में आप जानकारी दे रहे थे। अगर हम बात करें वर्तमान सामाजिक राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थितियाँ जो हैं और महाराणा प्रताप के आदर्शों की वर्तमान समय के देखें जो प्रासंगिकता हम देखना चाहते हैं, तो आपको क्या दिखाई देता है कि एक वो समय था जब मेवाड़ अपनी शौर्यता, वीरता और अपने पराक्रम के नाम पर सबसे ऊपर था इतिहास में, और आज जो हमारे सामने जो सामाजिक स्थितियां परिस्थितियां हैं उसको अगर देखा जाए तो क्या समानता देखते हैं या क्या विषमताएं देखते हैं?
1: नहीं, समानताएं तो ये है कि ये हर कालखंड में इस तरह से चलता रहेगा। जो असुरी शक्तियाँ हैं वो हमेशा अपना प्रयास करती रहेगी, इसलिए असुरी शक्तियों से लड़ने के लिए समाज को सुदृढ़ रहना पड़ेगा, समाज को शक्तिशाली भी होना पड़ेगा, बलाद भी होना पड़ेगा। हमारे नेतृत्व को, जो आज देश के नेतृत्व करता है और जो संगठन करता है, दोनों दृष्टिकोण से आज दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, उसके नेतृत्व करता है। आज दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला चीन के बाद देश उसके नेतृत्व करता है, तो हमें दोनों नायकों पर गर्व है, इसमें कोई संदेह होना नहीं चाहिए। और जब तक हमें अपने नेतृत्वकर्ता पर विश्वास नहीं है तो फिर हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक आसुरी शक्तियों की बात है तो आसुरी शक्तियाँ हमेशा अपना प्रयत्न करती रहेगी, विरोध हर जगह होना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक प्रसंग बता रहा था कि जिस तरह से मैं बात करते हुए हाकिम खां पठान की मैंने आप बात करी थी, इससे पहले हम घटना कर रहे थे, पर प्रताप ने ये विश्वास तो किया कि उस मुगल को अपनी सेना का सेनानायक बनाकर नेतृत्व सौंपा, ये विश्वास भी हमें खड़ा करना होगा। आप ये देखिए कि रामशाह तंवर या शालिवाहन की हमने बात कर ली, पर आप ये देखिए उनके साथ में डोड़िया भीम सिंह, किशनदास, राम सिंह राठौड़, पुरोहित गोपीनाथ, भामाशाह, रतन चंद, मेहता ताराचंद, जयमल, मेहता जगन्नाथ, ये सभी जात धर्म के लोग थे। इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते कि किसी एक जातिगत व्यवस्था को खड़ा करके और हम राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। हमें सभी लोगों को, समाज के सभी वर्गों को और विशेष रूप से जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है उसको भी साथ में जोड़ना होगा। फिर हम बात करते हैं विज्ञान की, कला की, तो विज्ञान और कला में मैंने आपको चित्रकला और कुछ प्रसंग बताए थे, कृषि पादप विज्ञान के बारे में बताया था, नक्षत्र विज्ञान के बारे में। हमारे यहाँ जो जावर की खाने हैं, यहाँ आज से 2500 साल पहले हमने जस्ता प्रगलन की और चांदी को अलग करने की तकनीक सीख ली थी। वो जो टकसालें थी जहाँ चांदी के सिक्के ढाले जाते थे, वही तो था बार बार अकबर लेना आता था। जिस हम माइनिंग की बात करें, जिस सेक्टर में हीरे मोती, जिसको रत्न गरबा कहते हैं, भूगर्भ कहते हैं, वही तो था वो बार बार लेने। हम क्या, ये पन्ना कहाँ से निकलता है, जिस डायमंड हीरा कहाँ से निकलता है, सब इस रत्न गरबा इसी धरती से निकलता है। और विशेष करके ये खूबसूरती है मेवाड़ की भी और राजस्थान की भी कि हमारे यहाँ अकूत संपदा जो है धरती के नीचे छुपी हुई है, हर व्यक्ति चाहता है, तो उस हीरे के लालच में, उस चांदी के लालच में। और इसलिए कहा भी जाए कि यूरोप की औद्योगिक क्रांति में अगर ये जो तकनीक थी, अच्छा ये देखिए कि विश्व में किसी के पास नहीं थी, चाइना ने बहुत छोटे से स्मॉल स्केल पर बनाना सीखा था चांदी को निकालना, जस्ता को, प्यूरिफिकेशन की जो टेक्नोलॉजी थी वो प्रताप के समय यहाँ शिखर पर थी, ये चावड़ से लगती हुई थी यहाँ से आवरगढ़। आप इस प्रताप को देखने के लिए प्रताप के जन्म से लेके, जन्म के पहले से लेके आपको उनकी पूरी यात्रा का भ्रमण करना होगा, कैसे कैसे प्रताप कहाँ कहाँ रहे और किन किन परिस्थितियों में। फिर हम बात कर रहे हैं कि आज क्या होना चाहिए, तो आज ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ धर्मदंड का जो विधान है

0: जहाँ मेवाड़ के शासक भले ही वो है वो दीवान है, राजा कहा जाता है, तो शासक तो एकलिंगनाथ है। तो धर्मदंड का जो विधान है, भाई मेरा आगे रहेगा तो शासक रहेगा, तो मेरा प्रभु रहेगा, वो प्रभु एकलिंगनाथ रहेगा। इसलिए इस विधान का पालन हम सब आज भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमें युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों को भी करना होगा। जहाँ हम भटक जाते हैं वहाँ धर्म ही हमें मार्ग बताता है। इसलिए और एक घटना और बताता हूँ कि शिवाजी का प्रतापगढ़ का जो युद्ध हुआ था, प्रतापगढ़ वहाँ पुणे के पास में, उसमें जो छापामार पद्धति की, जिस टेक्निक की, जिस तकनीक की, जो हमने हल्दीघाटी युद्ध के प्रसंग में सुना, वही तकनीक वहाँ पे उन्होंने काम में ली। शिवाजी ऐसे कई नायक थे जिन्होंने कालांतर में प्रताप के जाने के बाद प्रताप के युद्ध कौशल और उनकी नेतृत्व क्षमता से काफ़ी कुछ सीखकर अपने जीवन में अंगीकार किया, जिससे वे भी सफल रहे।
1: जाते जाते कार्यक्रम में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर जो भी कार्यक्रम सुनने वाला हमारा युवा है और जो देशवासी हैं या हमारे जो भी आकाशवाणी के श्रोता हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मुझे लगता है कि प्रताप संदेश में बांधने वाली बात नहीं है, प्रताप को इतना आसान भी नहीं है। प्रताप का जीवन जो है, प्रताप के जीवन का हर एक प्रसंग जीवन में उतारने लायक है। हम आज भी किसी को पुस्तक में पढ़ते हैं, या कोई माइथोलॉजिकल प्ले हम टीवी में देख लेते हैं, या हमारे जो कॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं, प्रताप वैसे नहीं है। प्रताप और प्रताप की पूरी जीवनी हमारे जीवन में अंगीकार करने का विषय है। जैसे हम प्रभु का सिमरन करते हैं जब हम पीड़ा में होते हैं, कई बार अच्छे समय में भी, नित्य कर्म में भी, हम लोग खास तौर से डेली जिनको जो प्रभु का पूजन करते हैं, तो प्रभु को पाने के लिए प्रभु का सुमिरन करना होता है। उसी तरीके से मुझे लगता है कि युवाओं को, मैं एक ज्वालामान नाथू सिंह जी महरिया ने लिखा था, तो वो ये कहते हैं कि गीधन बैठी मान सिंह कहे गिधनु बात, ईशान दीठे और ठा खागा बाहण हाथ, और गिद्ध कहे सुन गिद्धनी सुन मकवान सरा, मन हुए ना हथ खाओ था रखना हिंदू रा। देख, गिद्ध और गिद्धनी दोनों जो है वो एक हल्दीघाटी युद्ध के बाद एक शव के ऊपर बैठे हैं, और अब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और बात करते हुए क्या कहते हैं, ईशान दीठा और ठे खागा बाहण हाथ, मैंने ऐसे तलवार चलाने वाले योद्धाओं के हाथ नहीं देखे हैं जिनकी दोनों मुट्ठियों में दृढ़ता से तलवारें कसी हुई है। गिद्ध कहे सुन गिद्धनी, गिद्धनी तू सुन सुन मकवाण सरा, अरे अपन कहाँ बैठे हुए, मकवाण के ऊपर बैठे हुए, ये जो है ज्वालामान है, और ऐसे हाथों को नोचते हुए तो मैं भी ठिठक जाती हूं। गिद्ध कहता है अपनी अदम्य वीरता से हिंदू संस्कृति की मर्यादा को रखने वाले गौरवशाली हाथों को भक्षण करना हमारे हृदय की हीनता है, हमारे हृदय की। वो पशु मृत्यु के उपरांत तो उस शव पर बैठा हुआ ये चिंतन कर रहा है, ये मनन कर रहा है कि किस तरीके से इन्होंने हमारी गौरवशाली हिंदू संस्कृति की रक्षा करी है, और उन सब हाथों पर बैठे हुआ, ये निश्चित रूप से हर जीव में होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पशु से, मैंने जब रामप्रसाद हाथी का जिक्र किया, चेतक का जिक्र किया, प्रताप के जीवन की कई घटनाओं का, प्रसंगों का जिक्र किया, तो हमें लगता है कि हमें इन सब चीज़ों से धीरे धीरे सीखने की जरूरत है। और हाँ, निश्चित रूप से बच्चों के लिए पाठशाला में एक पुस्तक, बाल पुस्तक प्रताप की होनी चाहिए, जिससे वे प्रेरणा ले सकें। हम फ्रांस की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, यूरोप का एकीकरण हम जानकर क्या कर लेंगे, हमें फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार से क्या लेना देना, जो मेवाड़ में है इसलिए वे सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने मेवाड़ में जन्म लिया है, जो मेवाड़ की माटी में रचे बसे हैं, जो मेवाड़ का अन्न खा रहे हैं, और किसी कारण से, किसी प्रयोजन से, अगर उन्होंने, किसी ने हल्दीघाटी के दर्शन किए या मेवाड़ की पुण्य भूमि पे अपने चरण रखे हैं, तो आप समझिए कि आपके पुराने जन्मों का कर्ज जो था उससे आप उऋण हो गए हैं। ये मेवाड़ की वो माटी है जिसका दीप हरदम प्रज्वलित रहा है, अंधेरे में भी जिसने रोशनी की किरण देकर, जिसने उजाले की राह बताई है, ये वो मेवाड़ है। इसलिए मेवाड़ से हमें सीखने की जरूरत है, एक व्यक्ति या एक व्यक्तित्व नहीं, पूरे चरित्र से सीखने की जरूरत है। पूरा समाज उठ खड़ा होता है और सभी धर्म बंधु सभी साथ में खड़े होते, ये यही प्रताप हैं, और प्रताप का प्रताप युगो युगों तक गाया जाएगा, आप और मेरी चर्चा में समाप्त होने वाला नहीं।
1: तो आप थे शिवदान सिंह जी जुलावास, इतिहासकार और साहित्यकार, और आज

0: कार्यक्रम में महाराणा प्रताप जयंती के संदर्भ में प्रताप के जीवन दर्शन और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की और कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए हृदय से आभार।
1: महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में महाराणा प्रताप इतिहास, संस्कृति और अस्मिता विषय पर साहित्यकार शिवदान सिंह झूलावास से गजेंद्र सिंह राठौड़ की अभी आपने बातचीत सुनी।
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: 1 दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है FM रेडियो लेक सिटी। अब समय है राजस्थानी लोकगीतों के कार्यक्रम गो खड़ा का।

गोखड़ा कार्यक्रम सुनवा वाला संगलाई भाई बहना ने नीतो बैसारी राम राम सा देखो सा कार्यक्रम रो टेम व्यू नमा हाजिर हाँ लोकगीत लेने तो सब पहला होना वा यो लोकगीत।

राजस्थानी लोकगीत र कार्यक्रम गोखडा बारा भनी रहो छ अरणी कार्यक्रम दुई नितु बैसा ने इजाजत राम राम छ गोखड़ा कार्यक्रम अभी आपने सुना यह है एफएम रेडियो लेक सिटी। थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार जिन्हें हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉर्डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजावेलु और VP शिव कोलुंधु तथा भाजपा विधायक G NH राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के शासक अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की। सोशल मीडिया

0: पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मोनाको साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इससे ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में 1:30 से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: ने से हराया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

राहुल देव बर्मन के तर्ज पर आपने सुना आनंद बख्शी के बोल लता मंगेशकर की आवाज में। सनी फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: किशोर कुमार को आप सुन रहे थे जावेद अख्तर के बोल के साथ मशाल फिल्म के इस गीत में हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: अनजान के बोल आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन की तर्ज के साथ। लता मंगेशकर की आवाज जमीन आसमान फिल्म के इस गीत में आपने सुनी। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम यादों की महफिल।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम के शुरुआत के पहले आपको बता दें आज की इबारत यानी टेक्स्ट क्या है। तो आज की इबारत है, हर सवाल का जवाब हो ये जरूरी तो नहीं, हर जवाब का सवाल हो ये भी कहाँ जरूरी है। अब आप ही सोचिए कब कौन कहाँ किससे क्यों और कैसे मिलेगा और क्या कहेगा, ये कोई जानता है भला? नहीं। यह जानकर भी कुछ सवाल और जवाब अनजान से राहों में भटकते रहते हैं। वैसे सवालों को उनके जवाबों से मिलाने की कोशिश में ही तो हम कभी सवालों के पीछे जवाब लिए तो कभी जवाबों के लिए सवाल ढूंढने घूमते रहते हैं। पर जिंदगी भाई वो तो इन सारे सवालों जवाबों से परे होती है। तो ये है आज की इबारत और टेक्स्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों या कहें कि जब से सुरीला सफ़र शुरू हुआ है तो हम एक इबारत रोज़ाना फेसबुक पर पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए। आप इस इबारत या टेक्स्ट को जानते हैं और इसमें ही कुछ शब्द छुपे होते हैं जिनसे गीत कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। अगर आप अब तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो टाइप कीजिए फेसबुक पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai और आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के पेज पर पहुंच जाएंगे। हिंदी में लिखा है ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और इसमें जाकर आप हमारे सभी कार्यक्रमों की जानकारी भी हासिल कर पाएंगे और सुरीला सफ़र की पोस्ट भी आपको वहीं मिल जाएगी जिसके कमेंट के ज़रिए आप अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। तो हमारे साथियों ने आज की इबारत और टेक्स्ट पढ़कर ये अंदाज़ा लगाया है कि कुछ सवाल जवाब की बातें होने वाली हैं। सुरीला सफ़र में तो खैर वैसे भी सवाल जवाब की बातें होती ही हैं, लेकिन हमारे एक साथी लिखते हैं कि कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ काम, सवालों से मिलता है हर बात का नाम, जिज्ञासा जगाती है ज्ञान की आस, उत्तर से खुलते हैं समझ के प्रकाश। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम में गीत भी तो ज़रूरी हैं तो गीत आपको सुनवाएंगे। उससे पहले आपसे हम पूछना चाहते हैं कुछ सवाल। तो ये बताइए कि ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आपको अब तक नहीं मिले, या ऐसे कौन से जवाब हैं जिनके सवाल आपसे पूछे ही नहीं गए, और कौन सा सवाल ऐसा है जो आपको सबसे कठिन लगता है, और कौन सा ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि इसे तो पूछना ही नहीं चाहिए किसी से भी, किस तरह के जवाब आपको पसंद नहीं आते, और किस तरह का जब जवाब देने का आपका मन नहीं होता है तो किस तरह से आप टालते हैं कोई बात। तो ये सारी बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं, अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं कि कभी आपसे अगर पूछा गया हो ऐसा सवाल जिसने आपको असमंजस में डाल दिया हो कि इसका जवाब क्या दें। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी सवाल का जवाब हमें पता होता है लेकिन हम कह नहीं पाते क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी होती है। तो इस तरह की कोई परिस्थिति अगर आपके सामने आई हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, और कुछ फिल्मों से जुड़ी बातें भी आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी फिल्म है जिसने आपके मन में कई सवाल छोड़ दिए, या कोई ऐसी फिल्म भी हो

सकती है जिसने आपके मन के सवालों को हल कर दिया हो कोई जवाब देकर। तो ये सारी बातें होंगी इस एक घंटे के दौरान। तब तक हम आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का पहला गीत। हालांकि आप सभी ने बहुत सारा अंदाजा तो लगाया है, कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। आवाज किसकी है ये पहचानिए।

जैनिता अख्तर ने लिखा इस गीत को। ब्लैक कैट फिल्म से गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना और एन दत्ता का संगीत था। कार्यक्रम सुरीला सफर चल रहा है इस वक्त विविध भारती पर और आप सवालों जवाबों के बारे में सोच रहे हैं। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें कही, कौन सा सवाल कठिन लगता है, कौन से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, इस पर बहुत से साथियों ने जवाब दिया कि मुझे ये सवाल हमेशा कचोटता रहता है। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि इस दुनिया में कोई अमीर कोई गरीब क्यों है, फिर यकायक गीत मेरे होंठों पर आ जाता है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। उसी तरह से हमारे साथी कह रहे हैं कि सैलरी के बारे में पूछना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत से लोग पूछते हैं तो उसका जवाब देना भी पसंद नहीं आता। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैथ्स के जो सवाल होते हैं वो बड़े कठिन होते हैं, वो ना पूछे जाएं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कई सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे, कुछ तो डर के मारे भूल जाते थे। जब फिजिक्स वाले सर सवाल का जवाब पूछते थे तो डर के मारे नहीं बता पाते थे, आते हुए भी पता नहीं क्यों हम उनसे डरते थे, बाकी सब टीचर से मस्त आराम से बातें करते थे, मस्ती भी करते थे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने सवाल क्या पूछा, हम तो समझ नहीं पाए। तो ठीक है, फिर से हम आपको सवाल तो दोहराने वाले ही हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि धैर्य रखें, आज आप जिसे जवाब नहीं दे पा रहे उसे समय स्वयं जवाब देगा। वहीं हमारी एक और साथी ने लिखा कि कभी किसी स्त्री से कोई पुष्टि ही नहीं की जाती कि तुम क्या चाहती हो, मशीन के तरह घर के बाहर के काम करते रहती है परिवार के लिए, अगर आन पड़े तो कमाने भी लग जाती है, लेकिन सभी बातों में एक सवाल अधूरा ही रह जाता है कि तुम क्या चाहती हो। बिल्कुल, बहुत ही ज़रूरी सवाल आपने लिख भेजा, ये सवाल तो पूछा ही नहीं जाता जिसे ज़रूर पूछना चाहिए। वहीं एक और ज़रूरी सवाल है जिससे रोज़ाना हम दो चार होते हैं। हमारे साथी ने लिखा, मुझे रोज एक ही सवाल परेशान करता है कि आज खाने में क्या बनेगा, और जब लोग ये कहते हैं कि कुछ भी बना लो तो ये कुछ भी क्या होता है। वाकई तो ये कुछ भी क्या होता है, ये सवाल जो है इनके मन में चल रहा है, और खाने में क्या बनेगा ये भी इनके मन में हमेशा चलता रहता है। लेकिन मन में क्या चल रहा है ये तो तभी पता चलेगा जब आपका मनचाहा गीत हमारे गीत के साथ शायद मैच हो जाए। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगले गीत, बताइए किस फिल्म का ये गीत है।

गैम्बलर फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सुरीला सफर और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। वैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि बहुत सी बातें कह रहे हैं और क्या क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए उन पर हमारे साथी कह रहे हैं कि जब किन का जवाब नहीं देते बनता है। इस पर भी हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई जब पत्नी पूछे कि क्या बना कैसी लग रही हूँ तो उसका जवाब देना बड़ा कठिन होता है। वहीं वो कह रहे हैं कि जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, इस प्रश्न का जवाब भी अभी तक नहीं मिला। तो कुछ मुश्किल सवाल जवाब के बारे में तो उन्होंने लिखा। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरे दो बेटे हैं और हरदम पूछा जाता है कि लाडला कौन है। ऐसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए क्योंकि माँ को अपनी संतान एक समान प्रिय होती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब उम्र पूछा जाती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी अपनी उम्र खासतौर से लड़कियों से अगर पूछी जाती है तो ये सवाल सही नहीं लगते। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कौन सा बच्चा प्यारा है जब पूछा जाए, या किसी ज़्यादा भाई बहन से ज़्यादा आपकी किससे ज़्यादा दोस्ती है ये पूछा जाए, या पूछा जाए कि कौन से गाने आपको पसंद है लता जी के, रफ़ी जी के, या किसी भी इस तरह से गायकों के नाम लेकर पूछा जाता है, या कौन सा फिल्मी गाना अधिक पसंद है। इस तरह के जो सवाल हैं वो बड़े मुश्किल लगते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि जीवन में इस तरह के सवाल जवाब यानी कि ऐसा क्यों वैसा क्यों मेरे साथ ही क्यों, ये बहुत होते हैं। दुख सुख के सुर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जिसके पास हर सवाल का जवाब हो, बल्कि वो है जो ये समझ सके कि कुछ चीज़ों को वक्त के भरोसे छोड़ देना और इन सुरीले सफर का मज़ा लेना ही जिंदगी है। ना इब्तिदा की खबर है ना इंतहा का पता है, जिंदगी बस एक सुरीला सफर है और तू ही मेरी रहनुमा है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से जवाब हमारे साथी लिख भेज रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि वो कौन सा ऐसा जवाब है, किस तरह का जवाब है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। या एक और बात आप बता सकते हैं ये कि अगर खुद से कोई सवाल पूछना हो, क्योंकि कई बार हमें खुद से भी कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो, इस तरह के कई सवाल होते हैं। तो अगर आप खुद से कोई सवाल पूछना चाहें तो वो सवाल क्या होगा। मान लीजिए कि आज ही आपको अगर अपने आप से कोई सवाल पूछना है तो ये बताइए कि वो सवाल क्या होगा। और तब तक हम आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं, क्योंकि भाई इतनी देर हो गई हम सभी को मिले हुए, लेकिन हमने तो आपसे आपका हाल ही नहीं पूछा। तो हाल पूछ रहा है ये गीत और आपको सुनवा रहे हैं। हमें ये बताइए कि इस फिल्म में नायक नायिका कौन थे।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें। और इस फिल्म में नायक नायिका किशोर कुमार और मधुबाला इस गीत में नजर आते हैं और हमारे साथियों ने तो इतनी सारी गाड़ी चला दी है सवालों की, उन्होंने तो हमसे ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। भाई एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, जो गीत हमने सुनवाया उसका अर्थ ये थोड़ी था कि आप हमसे सवाल करते ही चले जाएं। देखिए आपके पास तो जवाब देने का ऑप्शन उपलब्ध है और आप देते रहते हैं जवाब। हमारे एक साथी ने कहा कि अज्ञात फिल्म ने बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में छोड़ दिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं और सवाल पूछते हैं तो शब्दों से ज्यादा हमारी आवाज का लहजा और आंखों की चमक मायने रखती है। सवाल चाहे जो भी हो, अगर उसके पीछे सच्ची आत्मीयता है तो सामने वाला अपनी हर फिक्र भूलकर मुस्कुरा देता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी के दिए सवाल जवाब बहुत कठिन लगते हैं, ना तो सवाल समझ में आते हैं ना जवाब। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनके घर में एक छोटी बेबी है, बच्ची है उनकी, और उनकी या उनकी नाती पोती वो हो सकती हैं, और वो जब सवाल पूछती हैं सवाल पर सवाल तो उस नन्ही परी के सवालों के जवाब देते देते थक जाते हैं।

लेकिन उसके सवाल बिल्कुल भी नहीं खत्म होते। लेकिन इसी तरह से तो वो अपने जान पाएंगी इस दुनिया को और आसपास के लोगों को। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बेसिर पैर बेतुका सवालों सवाल पसंद नहीं आते, परिचर्चा के विषय वस्तु से दूर अवांछनीय सवालों से इन्हें चिढ़ है। वहीं हमारे एक साथी तो ये पूछ रहे हैं कि आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है, ये सवाल जरा छोटा सा ही है, ऐसा वो कह रहे हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब आप इबारत तैयार करते हैं तो उसमें बहुत कुछ सोच के आते होंगे, पर प्रोग्राम शुरू होता है तो सब कुछ अलग हो जाता है संदेशों के साथ, तो आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं? तो भाई हम तो यही कहेंगे कि आप सभी का साथ मिलता है तो जो भी हम सोच कर आते हैं उससे ज़्यादा अच्छी हो जाती है सोच, और कार्यक्रम में आप सभी का सहयोग जब मिलता है तो कार्यक्रम भी बहुत अच्छा होता जाता है। तो आप सभी के सहयोग से ये सवाल जवाब जो हो रहा है, या कहें कि ये कार्यक्रम जब होता है तो आपका सहयोग भी पूरी तरह से होता है, तो 50-50% पार्टनरशिप पे चल रहे हैं हम, ऐसा कह सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, इसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए, और वक्त इतना सटीक हल उसका निकाल कर जवाब देता ही है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नाइट में भी आपकी ड्यूटीज़ होती हैं क्या, जैसे रेलवे में होती हैं? और हमारे एक और साथी पूछ रहे हैं कि भाई आप कौन तय करता है कि कौन आएगा सुरीला सफ़र में? तो ये विविध भारती से जुड़े जो भी सवाल आपने पूछे उसका जवाब तो आपको यहीं आकर मिलेगा। तो अगली बार जब आप आएँ तो यहाँ की सैर पर आइएगा और आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये सवाल भी अक्सर जहन में आता है कि जीवन एक सफ़र है तो मृत्यु क्या है? भाई बहुत ही गहन सवाल है ये, और इसके बारे में जवाब ढूंढते ढूंढते कई दार्शनिक बहुत सी बातें लिख भी गए हैं, बट इस पे तो सोचना बहुत ही गहराई से सोचना पड़ सकता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नए जोड़ों के साथी अंतरंगता की बातें अक्सर पूछते हैं, वो नहीं पूछने चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि शादी के लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो सवाल ये है कि शादी के लड्डू ही क्यों, कड़वा करेला भी तो हो सकता है। तो भाई नेक्स्ट टाइम जब आपके आसपास किसी की शादी हो तो आप कहिएगा कि इस बार लड्डू ना बनाएं और बनाएं करेला, देखें आपकी बात अगर वो मानते हैं तो फिर इस कहावत को हम बदल भी सकते हैं, क्योंकि शादी में तो भाई लड्डू वड्डू ही मिलते हैं, मिठाई मिलती है, करेला तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। चलिए तो अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत में आवाज किसकी है ये तो आप बताएंगे ही, साथ ही आप बताएंगे फिल्म का नाम भी।

0: जवानी दीवानी फिल्म का ये गीत आपने सुना, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि कोई भी बच्चे जब आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं कि मम्मी ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्या पापा, वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि एक सवाल पूछ ही लेता हूं, जन्म के समय आत्मा आई थी या देह परिवर्तन के समय आत्मा ही जाती है, तो ये सवाल है कि मन आया किधर से? और इस सवाल का जवाब हमारे पास तो नहीं है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सी बातें होती हैं जो नहीं पूछनी चाहिए, और इस फहरिस्त में हमारे एक साथी ने उन्होंने अंग्रेजी में अपना जवाब लिखा है, तो उसे हम हिंदी अनुवाद करके आपको सुनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी को भी, किसी भी युवा बच्चे जो होते हैं, लड़के होते हैं, उनके माता पिता से या उनसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि वो शादी कब करने वाले हैं, या जो नई नई इनकी शादी होती है, नवविवाहिता होती हैं, उनकी माओं से ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपकी बेटी कब माँ बनेगी, या फिर उनकी शादी, किसी की शादी से संबंधित सवाल नहीं पूछना चाहिए, और अगर उन्हें बुलाया गया है तो भी किस तरह से बातें नहीं पूछनी चाहिए कि कभी भी कोई।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: के पास वो पन्ना है, वो उन्हें जरूर भेजें। और हमारे एक और साथी कह रही हैं कि कौन सा सवाल खुद से पूछना चाहेंगे, उसमें उन्होंने पूछा है कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं अपने काम ठीक से नहीं कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही हूँ, इस तरह के सवाल वो पूछना चाहती हैं खुद से। तो हम उन्हें बस ये जवाब देना चाहेंगे कि आपको थोड़ा आराम करना चाहिए और खुद को लेकर थोड़ा नर्म पड़ना चाहिए, तो इससे आप जरूर अपने कामों को पूरी तरह से कर सकेंगे। और खुद को जज करना कुछ दिनों के लिए बंद कीजिए और अपने आप ये सोचिए कि आप ज़रूर कर पाएंगी उन कामों को, शायद थोड़ी थकान हो, तो इस तरह से इस जवाब से शायद आपको कुछ आराम मिले और कुछ आराम आपको इस गीत से भी मिल सकता है। तो सुनिए ये गीत और हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और लिखा किसने है।

0: चंद्रसेना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, जिसमें बात हो रही है सवालों और जवाबों की। बहुत से ऐसे सवाल जिनके जवाब नहीं मिलते, या बहुत से ऐसे सवाल जिनसे हम चाहते हैं कि कोई हमसे पूछे ही ना, या जिनके जवाब हम देना ही नहीं चाहते, और कुछ ऐसे सवाल जो हम खुद से पूछना चाहते हैं। इन सभी के बारे में आपने लिखा है। हमारे एक साथी कहते हैं कि मैं क्या किसी के सवाल का जवाब दूंगी, मेरी तो फोन की बैटरी जवाब दे चुकी, बिजली धोखा दे गई और फोन की मानो चंद सांसें गिनती की रह गई और अन्य कोई साधन भी उपलब्ध नहीं कि फोन चार्ज हो सके। बस अब श्रवण कुमार बनेंगे वक्ता बाबू तो बनने से रहे, सुनेंगे रेडियो सेट पर शेष प्रोग्राम। शुक्र है रेडियो की बैटरी अपने पूरे शबाब पर है। चलिए अच्छी बात है कि आप कार्यक्रम में किसी भी तरह से शामिल तो हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्कूल के समय में गणित का सवाल जब सबसे खतरनाक लगता था, 8वीं क्लास में 0 नंबर मिले थे और बहुत पिटाई हुई थी। उसके बाद पूरी नौकरी में गणित का ही काम करना पड़ा, लेकिन गणित आज भी नहीं आती। भाई तो हमारा सवाल तो यही कि गणित नहीं आती, फिर भी गणित का इतना काम कैसे कर लेते हैं आप। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज आपके सवाल जवाब ने बचपन में पिताजी की मार याद दिला दी है। जब वो गणित पढ़ाते थे तो सवाल का जवाब पता होता था, लेकिन उनके आगे जुबान नहीं खुलती थी। जब एक थप्पड़ पड़ते तो झट से जवाब देता था। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब कोई घर का सदस्य बाहर जा रहा हो किसी महत्वपूर्ण काम से, तो कहाँ जा रहे हो इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। और हमारी कौर साथी ने कहा, अगर मैं खुद से सवाल करती हूँ कि मैं सबके लिए जीती हूँ, खुद के लिए कब जी पाऊंगी जिसमें कुछ पल मेरे बिल्कुल अपने हों, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। भाई इस इम्पॉसिबल

वो आप पॉसिबल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ वक्त अपने लिए निकालने लगेंगी तो वाकई घर के सदस्यों को भी इसकी आदत होती जाएगी और आप वाकई अपने लिए वो समय निकाल पाएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही आप इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाएंगी। लेकिन इससे पहले हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का ये गीत, और ये गीत सुनकर हमें आप बताइए कि किसका संगीत है, फिल्म का नाम भी।

बुढ़ा मिल गया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे और अर्चना की आवाज से मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज की भारत एक ऐसे तथ्य को उजागर करती है जिसकी तलाश में सारी जिंदगी हम व्यतीत कर लेते हैं और मिलकर भी हमें वो चीज नहीं मिलती। हम पूरी जिंदगी या तो अपने सवालों के लिए सही जवाब ढूंढते रहते हैं या फिर मिले हुए अनुभवों को सही साबित करने के लिए नए सवाल खड़े करते रहते हैं। राहों में इन सवालों का भटकना भी इस सफर का एक खूबसूरत हिस्सा है। सवाल और जवाब के ताने बाने से इंसानी जहन की कश्मकश को बड़े ही सरल मगर

पर गहरे शब्दों में पिरोया है। वहीं मारिक और साथी कहती कि सवाल जवाब तो जब तक जीवन है चलते ही रहेंगे। हाँ, कुछ सवाल के जवाब हमेशा अनुत्तरित रह जाते हैं। दरअसल कभी कभी किसी सवाल का जवाब न मिले उसी में बड़ी खूबसूरती छिपी होती है। हर सवाल का जवाब मिल जाए तो जिंदगी में फिर रोमांच ही खत्म हो जाए। जिंदगी के सवाल जवाब को जितनी गंभीरता से लोगे उतनी ही पीड़ा होगी। जीवन का सबसे निश्चल पक्ष है, जो जैसा है वैसा ही ग्रहण करो, मगर सवाल जवाब भी करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में जिज्ञासा बनी रहती है। वहीं हमारे और साथी कहते हैं कि आज की इबारत जीवन केवल सवालों और जवाबों का गणित नहीं है। जीवन में कई मुलाकातें, घटनाएं और रिश्ते बिना किसी पूर्व योजना के बनते हैं। कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, कई उत्तर समय के साथ स्वयं मिल जाते हैं। इसलिए हर बात को तर्क और उत्तरों में बांधने के बजाय जीवन के रहस्यों, संयोगों और अनुभवों को स्वीकार करना चाहिए। एक और साथी कहते हैं, सवालों जवाबों में उलझी जिंदगी आज आखिर मुकाम पर पहुंच चुकी है। तमाम सवाल अधूरे रह गए जिनके जवाब हमने खोजे ही नहीं और अपनी जिंदगी को तबाह करते चले गए। कुछ मजबूरियां थी जो कह रही थी कि जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, फिर सवाल जवाब में उलझे तो अच्छा होने के बजाय और बुरा हो सकता था। आज सवाल जवाब की बातें चली तो वो दिन याद आ गए कि एक कंपनी में सर्वे सर्वा था और कुछ लोग बेईमानी में शामिल होने का भरसक प्रयास किए। मैं उनके साथ नहीं गया। आज उन्हीं बेईमान लोगों के हाथों कंपनी की बागडोर चली है और हम सब कुछ छोड़कर घर में बैठ गए हैं। तो ये बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी हैं, जिसमें बहुत सी उनके मन की गूढ़ बातें शामिल हैं। वहीं मारिक साथी का कहना है कि रोज़ अपने दिल से एक सवाल पूछते हैं कि क्या हमारी वजह से आज कोई मुस्कुराया। अक्सर जवाब हाँ में होता है, पर कभी कभी ना में भी होता है। तो हमारी और साथी ने कहा कि जिस सवाल का टेढ़ा जवाब दिया जाता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कोई भी टेढ़ा जवाब देता है, बदतमीजी से बात करता है तो अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कहती हैं कि सवाल जवाब के बारे में उन्होंने लिख भेजा है कि जिंदगी वाकई इन कब कहाँ कैसे की उलझनों से कहीं ऊपर एक अनसुलझा खूबसूरत सफर है। कभी प्रश्न आईना बनकर हमारा असली रूप दिखाते हैं, कभी बादल बनकर मन के आकाश को नया आकार दे जाते हैं। कुछ सवालों को उत्तर चाहिए, पर कुछ सवाल बस महसूस किए जाने के लिए होते हैं। अक्सर इन्हीं अनुत्तरित प्रश्नों की चुप्पी में जीवन की सबसे गहरी सीख छुपी होती है। अतः सवालों जवाबों के अंतहीन चक्र में उलझने के बजाय जिंदगी का असली मजा लीजिए तो अनजानी राहों की खूबसूरती को महसूस करने और हर पल को बिना किसी शर्त के जीने में ही जिंदगी का मजा छिपा है। और अब आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवाते हैं। बताइए किस फिल्म का है।

नमस्कार। त्रिवेणी में आज एक नज़र मोबाइल संदेशों पर। संचार व्यवस्था में तकनीक के विकास ने दुनिया को छोटा और जिंदगी को आसान बना दिया है। सूचनाएं देने और अपनों का हालचाल लेने के लिए तमाम उपकरण मौजूद हैं। खासतौर से मोबाइल तो इतना सुविधाजनक है कि जिंदगी बेहद आसान हो गई है। अब तो पहली मुलाकात में ही औपचारिक अभिवादन के बाद मोबाइल नंबर का आदान प्रदान एक सामान्य प्रक्रिया बन गया है।

0: What is mobile number? What is your smile number?
1: What is your style number? करो क्या dial number?
2: मोबाइल्स का उपयोग फोन करने के अलावा भी होता है. आधुनिकतम तकनीक के मोबाइल्स तो अब उस तिजोरी की तरह हो गए हैं जिसमें सारे पर्सनल डिटेल्स, रुपए पैसे का हिसाब किताब और तमाम जरूरी जानकारियां सिर्फ एक टच की दूरी पर है. ये मोबाइल का एक अच्छा फीचर है, लेकिन जब इसी फोन पर आते हैं ऐसे संदेश जिनमें किसी स्कीम के तहत पैसा डबल करने या आप

मोबाइल पर अक्सर ऐसे फोन कॉल्स, एसएमएसेस और सोशल मीडिया संदेश मिलते हैं जो पैसे को बढ़ाने की स्कीमें सुझाते हैं। कुछ संदेशों में तो

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों

0: के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताज़ा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई वायरों में हम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़ से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता

0: से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने ये उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
1: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो COP 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
4: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल

0: के हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आजाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: जोरू का भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। तलत महमूद की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, जयदेव का संगीत।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी

0: सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: जानिसार अख्तर के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। सी रामचंद्र का संगीत फिल्म यास्मीन के इस गीत में आपने सुना।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना।

0: उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

0: वचन फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज थी, प्रेम धवन के बोल, रविशंकर का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नकमे। आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में सीआईडी फिल्म से ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

गीता दत्त की आवाज में सीआईडी फिल्म का ये गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत। अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं श्री 420 फिल्म से गीत। शैलेंद्र ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की। इस गीत को सुनिए, मुझे दीजिए इजाजत।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी, आपको और सुनने वाले हमारे सभी सखियों और सखा भाइयों को बहुत ही प्यारा सा हरा भरा खिलखिलाता मुस्कुराता सा नमस्कार।
1: क्या बात है, ये मुस्कुराता नमस्कार से लग रहा है कि मुस्कुराहट खिल जाएगी सबके चेहरे पर, वरना तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग बस उफ, बहुत गर्मी है।
2: इसीलिए हमने ऐसा बोला,
1: धरती तप रही है, धरती गर्म हो रही है।
2: बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रकृति में बदलाव हो रहा है, तो उसकी मार तो सभी लोग झेल रहे हैं देखिए। और उससे निपटने के लिए हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस जो है उस पर चर्चा करेंगे।
1: मंजरी जी, हम कहीं जब बाहर जाते हैं, अपने शहरों से महानगरों से बाहर निकलते हैं, तो हरे भरे पेड़ हमें लुभाते हैं, जंगल हमारा मतलब मन मोहते हैं और हम ठहर जाते हैं। लेकिन वहीं पर दूर दूर तक अगर सूखा दिखता है, कहीं कोई पेड़ नहीं है, बंजर धरती दिखती है, तो मन थोड़ा खिन्न होता है ना।
2: बिल्कुल।
1: तो हमें क्या करना चाहिए वहां पर हरियाली रोपने के लिए? कुछ निजी स्तर पर कोशिशें करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुहिम चलाते हैं हरियाली को, धरती की हरियाली को बचाए रखने के लिए, जाते हैं रस्तों में तो बीज ढेर सारे ले जाते हैं और बीज बोते हैं, फेंकते हैं तो जगहों पर जहां पर पेड़ पौधे नहीं है। तो ये सब हम सब भी कर सकते हैं,
2: बिल्कुल कर
1: और
2: सकते हैं।
1: घर के आसपास तो ये काम हम कर ही सकते हैं।
2: बिल्कुल। और हम लोग जब इस विषय पर और बातें करेंगे और चर्चा करेंगे, तो आपने जो कहा है वो बहुत सही है बात है। ऐसा हम लोग सोचें तो हमारी धरती का कोना कोना हरा भरा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो अगला विषय ममता जी वो बता देते हैं कि शब्द हमारा विचार आपके, इसमें हमने आज लिया है प्रोत्साहन शब्द। तो इस पर हमारे सभी साथियों ने लिखकर भेजा भी है और जो सुन रहे हैं वो भी लिखकर भेज सकते हैं।
1: किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, खासतौर से बच्चों को? बच्चों को प्रोत्साहन की बहुत जरूरत होती है, ना कि ये तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता है। ये तो प्रोत्साहन की जरूरत बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी पड़ती है। अगर कुछ किसी से काम करवाना है तो हम जरा तारीफ कर देते हैं और कहते हैं कि अरे आपको ये काम बहुत अच्छा आता है, आप तो बहुत एक्सपर्ट है। तो ये आप क्या करते हैं, मतलब हम श्रोताओं से पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं जब आपको प्रोत्साहित करना होता है, तो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कौन से वाक्य प्रयोग करते हैं,
2: और माएं बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करती हैं ना,
1: और उसका असर क्या होता है ये भी बताइए। कहीं कहीं कोई घटना है कि आपने किसी को प्रोत्साहित किया और काम बन गया, वो भी बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, है ना।
2: और डायरी लिखने की आदत बड़ी खूबसूरत सी आदत होती है, तो आप लोग कितना लिखते हैं वो भी बताइए।
1: पूरा मन उड़ेल देते हैं
2: जी,
1: क्योंकि दिल में जो कुछ भरा है गागर, वो सारा उड़ेल देना है। मन में जो सागर भरा हुआ
2: जी,
1: वो गागर में उड़ेल देना है। तो डायरी आपकी ऐसी दोस्त है कि डायरी से बहुत कुछ बातें कर सकते हैं। कई बार हम डायरी में वो लिख सकते हैं जो किसी से कह नहीं पाते हैं, कहना चाहते हैं लेकिन एक संकोच होता है, अरे लोग क्या कहेंगे, इसका क्या मतलब निकालेंगे। कई बार अनबन होती है आपस में, रिश्तों में दरार आती है, कई बार बहुत खुशी के लम्हात होते हैं, तो ये सब कुछ हम डायरी में अंकित करते हैं। अब ये हम सब करते हैं, हमारे श्रोता क्या करते हैं वो अपने विचार हमें बताएं कि डायरी लिखने की जो आदत है वो उनकी कितनी आदत है, और आने वाली पीढ़ी को डायरी से कितनी दोस्ती कराई है ये भी बताएं।
2: उनके लिए तो मोबाइल ही डायरी हो गई है।
1: ठीक है, तो मोबाइल की डायरी में एक नोट पैड बनाएं और उसमें भी डायरी लिख सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: वो भी एक जरिया है, क्योंकि आप जबरदस्ती कागज कलम तो नहीं पकड़ा सकते।
2: ये बात तो सही है, लेकिन जो मजा कागज और कलम है डायरी में है वो मोबाइल में नहीं है। तो देखिए, अगली बात हम करने वाले हैं साड़ियों का संसार में। आज मैंने बांधनी साड़ी जो राजस्थान और गुजरात में काफी बनाई जाती, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब विषयों से पहले, चर्चा करने से पहले गीत
1: सुनते हैं, और श्रोताओं को क्योंकि इंतजार होगा गीत का, और हमें इंतजार है कि डायरी वाली जो बात है उसका कोई किस्सा, कि कोई डायरी यादगार डायरी है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ घर परिवार की, कई बार अपने राष्ट्रीय स्तर की डायरी बहुत चर्चित हो जाती है, किताब की शक्ल में आती है डायरी, तो वो भी आप बता सकते हैं कि क्या आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी है जिसमें जो डायरी की शक्ल में लिखी गई है। फिलहाल ये गाना

0: पवन दीवानी न माने, डॉक्टर पेड़ पौधे ही लगाते हैं और इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी को जो भोजन मिलता है या पानी, औषधियाँ, फल फूल, सब इन्हीं वृक्ष पेड़ पौधों के द्वारा ही तो मिलता है ना ममता जी।
1: बिल्कुल सही बात है, प्रकृति है तो हमारा वजूद है, इसके बिना जीवन कुछ है ही नहीं, अधूरा है। हमारे पूर्वजों ने जो प्रकृति को संरक्षण के लिए जो कोशिशें की है उसका ख्याल हमें भी रखना चाहिए। असंख्य जो पौधे उन्होंने लगाए हैं पेड़ के रूप में फलित हो रहे हैं, जो जैसे आम है, जामुन है और तरह तरह के पेड़ हैं, और खेतों में जो फसलें उन्होंने उगाई हैं और वो खेत अब आज भी लहलहाते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बाग और खेत चले आ रहे हैं। लेकिन हमारी क्या भूमिका होती है उसे उपजाऊ बनाए रखने के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भी अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए। आधुनिकता की दौड़ में इस कदर हम भागे जा रहे हैं कि सोचते भी नहीं कि शहरों के नवीनीकरण से जो धरती है वो चोटिल हो रही है, जंगलों में पेड़ की कटाई हो रही है, खेतों को शहरी विकास के चक्कर में खत्म किए जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ेंगे ये आज ही सोचना होगा हमें, वरना जो धरती की उर्वरा क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी, बची नहीं रहेगी।
0: बिल्कुल सही बात है। और जब क्या कहते हैं कि जब धरती जो उपजाऊ शक्ति खो देती है तो उसमें ना भी आप पेड़ पौधे लगाने की सोचिए उसमें से कुछ भी निकलता नहीं है, तो वो स्थिति बहुत हृदय विदारक हो जाती है। और जो प्रकृति है तो हमारा वजूद भी उसी से है, क्योंकि उसके बिना जीवन बिल्कुल संभव नहीं है कहा जाए। और इस दिन की जो मनाने की शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में की थी, जब उसने मरुस्थलीकरण के खिलाफ

0: संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया और इसलिए एक मुहिम चलाएगी और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाने के विषय में सोचा गया था।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और इस दिन की घोषणा 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। उस दिन के बाद जब मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का मसौदा तैयार किया गया था, जिससे बंजर होती भूमि, भूमि के क्षरण और सूखे के वैश्विक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में से यह दिवस घोषित किया था और तब से ये प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य भी है कि हम उन जगहों को पर भी ध्यान दें जहाँ पर सूखा है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने का सोचें और साथ में वहाँ पर पानी हम कैसे उनको देंगे इसकी भी व्यवस्था पूरी तरह से करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा अगर नहीं होती है तो वहाँ सूखा पड़ता है। कृषि, पशुपालन और जैविक विविधता और मानव जीवन पर बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन जो सूखे प्रदेश हैं जहाँ पर हम अपने हाथ से जो हरियाली रोप सकते हैं वो मुहिम हम चला सकते हैं।
0: बिल्कुल। किसी और किसी जो में। जो हमारे जो खेत वगैरह होते हैं उसमें खाद का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जो प्रकृति के द्वारा जो बनाते हैं खाद, पत्ते गोबर वगैरह से डाल के जो खाद बनाई जाती है उससे ज़्यादा अच्छा रहता है पेड़ पौधों को उगना। लेकिन उसकी जगह रासायनिक खाद का भी उपयोग करने लग गए हैं तो कहीं ना कहीं तो उनकी पैदावार पर, फसलों पर असर तो पड़ता ही पड़ता है। और जैविक खेती को अगर अपनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और साथ में वर्षा का जल, जब वर्षा बरसती पानी का मौसम आएगा तो हमें जल संचय कैसे करना है उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए कि तालाब बनवाना है, कुएं हैं, बावड़ी, इस तरह की चीज़ों को हमें बनाना चाहिए।
1: पानी को बचाने के लिए और जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण होता है जब हम पहाड़ों की ओर जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ग्रामीण इलाके हैं पहाड़ों पर, जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने स्विच ऑन किया और गीज़र चालू हो गया, स्विच ऑन किया पानी शुरू हो गया, तो वहाँ हमने देखा है कि टपरी बनी है, मान लीजिए छोटी छोटी चाय की दुकान है या कुछ समोसे बिक रहे हैं, बन रहे हैं, छोटी सी टपरी बनी हुई है, तो टपरी के नीचे बड़े बड़े बकेट रख दिए जाते हैं, बाल्टियाँ या ड्रम। तो जब बारिश होती है, क्योंकि पहाड़ों पर तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है और कब होती है ये बिल्कुल तय नहीं होता, अचानक बारिश अचानक धूप हो जाती है, तो वो लगा रहता है, बाल्टी रखी रहती है, बारिश हुई तो वो जो बारिश का पानी है उस बाल्टी में इकट्ठा होता है। तो हमने कई बार पूछा भी लोगों से तो उनका यही कहना है कि ये पानी हम इकट्ठा करके बाकायदा इसका उपयोग करते हैं और पानी एकदम स्वच्छ होता है, क्योंकि उधर पहाड़ों की ओर गंदगी कम होती है, तो ना के बराबर होती है जो एकदम जहाँ पर लोगों की पहुँच नहीं है वहाँ तो बिल्कुल नहीं कूड़ा कचरा दिखाई देता है। तो ये सब हम अपने घर आंगन में भी कर सकते हैं, जो आंगन वाले घर हैं वहाँ हम कर सकते हैं।
0: अपने आप याद कीजिए कि हम लोग के घरों में भी ये चीज़ होती थी कि बारिश के पानी के लिए मतलब अपना लगा दी बाल्टी वगैरह रख दी और बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं छत से वो आ रहा है पानी उस जगह से, ढलान से, तो वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो बर्तन धोने, फर्श धोने, इन सब के काम
1: बचपन में तो खेल खेल में भी पानी इकट्ठा किया जाता था, छोटे छोटे बर्तन रख दिए जाते थे, देखते हैं किसके बर्तन में पानी ज्यादा इकट्ठा होता है। और ये कहा जाता था कि बादल हम पर ज्यादा मेहरबान है, पानी हमारे तसले में ज्यादा भर गया।
0: और हम बच्चे तो छाता उल्टा कर देते थे।
1: तो ये जो खेल खेल में पानी इकट्ठा करने की आदत है ये आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना चाहिए कि पानी का उपयोग किस तरह से करें। बहुत सारे लोग हैं कि नल खोल देते हैं, क्या नल खोल दिया तो पानी बह रहा है, तो जब धरती जहाँ बंजर होती है, धरती जहाँ जहाँ पर हरियाली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जो सूखा है, वहाँ उनसे पूछिए कि क्या अहमियत है
0: बिल्कुल
1: हरियाली की और पानी की।
0: बिल्कुल। और इन सब चीज़ों के पीछे हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग घर बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, खेतों को नष्ट करते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत जिम्मेदार
1: अभी अभी
0: हैं।
1: आपने कहा कि खाद की बात कही थी ना मंजरी जी, कि जैविक खाद और रासायनिक खाद भी इकट्ठा करें। अभी अभी हेलो फरमाइश में, हेलो फरमाइश प्रोग्राम में एक श्रोता ने हमें बताया कि वो लोग गोबर से खाद बनाते हैं, मतलब गोबर एक गड्ढा बनाते हैं जहाँ पर गाय भैंस के गोबर इकट्ठा करते हैं, और ये गांव में होता है अमूमन, तो वो अपना अनुभव बता रहे थे कि वो इकट्ठा करते हैं और उसे ले जाकर खेतों में डालते हैं। और ये कॉल एक महिला का था
0: जी।
1: तो अब ये कृषक महिला भी हो रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और अब बहुत अच्छी बात ये होगी कि हमें गाना सुनवा दे अपने श्रोताओं को।

0: मंजरी जी, साड़ियों के संसार पर चर्चा हो रही है इन दिनों, और एक सेगमेंट है बाकायदा सखी सहेली में, तो आज हम चर्चा करेंगे। साड़ी वैसे भी पारंपरिक पोशाक है, और जब भी कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं घूमने जाना होता है, तो कौन सी वाली साड़ी पहनी जाए, बहुत पहले से चयन किया जाता है, साड़ियों का बक्सा खुल जाता है। आप क्या करती हैं?
1: मेरा भी खुल जाता है और उसमें देखते हैं, तरह तरह की साड़ियाँ देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जैसा मौसम होता है उस हिसाब से साड़ी पहनने का मन करता है। तो अगर जैसे बारिश का मौसम होगा तो लगेगा कि भाई हरा भरा मौसम रहता है, तो लगेगा कि भाई ऐसी साड़ी पहने जिसमें कलर बहुत चटक रंग हो। तो ध्यान तो मेरा तो सीधा इसी पर चला जाता है कि बांधनी की साड़ी, लहरिया की साड़ी, बंधेज वाली साड़ी पहना जाए। तो उनका पहनने का एक अपना अलग मज़ा होता है। और जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, तो इस समय बस याद आता है कि हल्के कलर पहने, आसमानी, गुलाबी और क्या कहते हैं, हल्का हरा धानी कलर पहने, और वो सूती साड़ियाँ हों जो बहुत अच्छी लगे। और सूती साड़ी पर अगर बांधनी का काम हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, फिर तो लगेगा ये भी पहन लेते हैं, है ना?
0: सही बात है।
1: तो जो कहते हैं ना ममता जी, बांधनी जो साड़ी है, इसका जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, प्राचीन काल से इसका समझ लीजिए चला आ रहा है। और बांधनी जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, बंध से लिया गया है, और बांधनी या बंधेज भी इसको कहा जाता है। साड़ियाँ ये जो है मुख्य रूप से भारत के गुजरात में जामनगर और वहाँ पर कच्छ, भुज और अहमदाबाद में बांधनी के सबसे बड़े और प्रमुख केंद्र हैं। और वहीं राजस्थान में भी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और सीकर अपने बेहतरीन कामों के लिए, बंधेज के कामों के लिए

0: बांधनी साड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और जब हम वहाँ जाते हैं तो देखते हैं दुकानों पर इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ टंगी रहती है, और साथ में जो महिलाओं को हम देखते हैं विशेष त्योहारों पर, तो वो उनके जो रंग होते हैं बांधनी साड़ियों के तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही बारीकी तरीके से बांधा जाता है। और इन साड़ियों को ममता जी टाई डाई तकनीक के से हाथों के द्वारा धागों से बांधकर बनाया जाता है, और जिसके रंग कार जो हैं बेहद आकर्षक डिज़ाइन तैयार करते हैं। और बिल्कुल हाथ से और पतला पतला करके बांधा जाता है। कई लोग चने बांधते हैं, कई लोग दाल बांधते हैं, कोई छोटे छोटे पत्थर भी बांधते हैं उसमें डिज़ाइन अलग अलग तरह से देने के लिए।
1: मतलब काफ़ी मेहनत लगती है और समय भी लगता है, ऊर्जा भी लगती है। बांधनी बनाने की प्रक्रिया बड़ी मेहनत वाली होती है। सबसे पहले साड़ी के लिए कपड़ा चुना जाता है और कपड़े पर हल्के निशान बनाए जाते हैं ताकि डिज़ाइन बिल्कुल सटीक बने। कारीगर कपड़े की छोटी छोटी पोटलियाँ बना लेते हैं, उन्हें धागे से कसकर बांधते हैं। अब कपड़ों को रंगों में इसके बाद डुबोया जाता है। कई बार तो अलग अलग रंगों के लिए ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। रंग सूखने के बाद धागे खोले जाते हैं और सुंदर गोल, लहरदार या फूल जैसे डिज़ाइन दिखाई देते हैं।
0: बिल्कुल, और बांधनी साड़ी जो है वो कई प्रकार के कपड़ों पर बनाई जाती है, जैसे कि रेशम से आपको दिखेगी, जॉर्जेट, कॉटन, मलमल से भी बनाया जाता है, शिफॉन, क्रेप और सिल्क पर भी बांधनी का काम होता है। और राजस्थान में बांधनी में पारंपरिक राजस्थानी रंग और बड़े पैटर्न देखने को मिलते हैं, जबकि गुजरात में बंधेज में बारीक डिज़ाइन और चमकीले रंग खास माने जाते हैं। और ये बांधनी साड़ी विभिन्न रंगों और प्रिंटों में आती है, और खोम्बी, पटोरी, घरचोला और चंद्रोखानी, इसके अलावा ये काम साड़ी, कुर्ता, सलवार कमीज और चनिया चोली में भी पाया जा सकता है। यानी कि अब इसका जो काम है, इसका वर्क है, बहुत तरीके से बढ़ गया है, हर तरीके के। उसमें कांच से भी, सितारों से भी काम होगा और जरी के भी गोटे लगे रहते हैं, तो बहुत खूबसूरत बना दी जाती है इन साड़ियों को।
1: गुजराती बांधनी रेशम या कपास से बनी इस शैली में मोर होते हैं, फूल और हाथी जैसे आकर्षक पैटर्न बनाए जाते हैं। ये नवरात्रि और शादियों के दौरान बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। और राजस्थानी बांधनी में जैसे कि भरे चटकलाल, पीला रंग, लहरिया और जैसे चक्करदार रूपांकन होता है, मोथरा जिसे कहते हैं, ये खास पहचान है राजस्थानी बांधनी की। और बाकी राजस्थानी बांधनी या गुजराती बांधनी के और जो प्रकार हैं, और जो हमारे जो राजस्थान और गुजरात के श्रोता हैं वो भी बता सकते हैं कि क्या खासियत है साड़ियों की। भुज में खास तरह की बांधनी होती है। कच्छ के आदिवासी आकृतियाँ आमतौर पर काले और लाल रंग में, जिनमें बारीक ज्यामितीय बिंदु होते हैं। मॉडर्न बांधनी समकालीन सौंदर्य बोध के लिए डिजिटल प्रिंट के इस्तेमाल किए जाते हैं और पेस्टल रंगों का उपयोग भी किया जाता है, और कुछ फ्यूजन डिज़ाइन भी बनाई जाती है।
0: जी, और हमारे साथी भी लिखते हैं कि बांधनी साड़ी प्रमुख रूप से राजस्थान और गुजरात में पहनी जाती है और उसका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर होता है। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और साथ में हमारे साथी और भी लिख रहे हैं कि बांधनी साड़ी भारत की सबसे प्राचीन और जीवंत टाई डाई वस्त्र कलाओं में से एक है, और मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान राज्यों में बहुत प्रचलित है। और बिंदियाँ बहुत बारीक होती हैं और चटक रंग की होती हैं, तो इसका जो है सांस्कृतिक महत्व भी है, त्यौहार उत्सव पर भी खूब पहनी जाती है।
1: और इन साड़ियों के साथ चूड़ी का भी कॉम्बिनेशन होता है।
0: बिल्कुल, साज श्रृंगार तो बहुत ज़रूरी है।
1: और उसी रंग की अगर चूड़ी पहन ली जाए तो फिर और लुक एकदम अलग आ जाता है। अब ये बात तो ये इस गाने के साथ हम जोड़ रहे हैं, तो सुनते हैं ये गाना, हरे कांच की चूड़ियाँ। फिल्म का नाम है

0: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है,

0: की उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय सखियां सहेलियां और सखा सुन रहे हैं सखी सहेली कार्यक्रम, और बात अब डायरी की चल पड़ी है।
3: बिल्कुल,
2: डायरी लिखना एक कला भी है और डायरी लिखने से तनाव दूर हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, और एक फायदा और होता है कि कई बरस बाद, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई बात लिखी डायरी में, अब से 20 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी उसे देखेगी, पढ़ेगी, तो आज क्या क्या हुआ वो जानेगी, और क्या माहौल था घर का, माँ डायरी लिख रही, पिता डायरी लिख रहे हैं, तो बच्चे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो तो वो एक जानकारी मिलती है और एक अलग अनुभव होता है।
3: बिल्कुल,
2: है ना?
3: बिल्कुल, डायरी जो लिखने की आदत है उसमें बहुत सारी बातें आपके जीवन की आ जाती हैं। उस वर्ष आपने, उस महीने आपने क्या चीज फेस करी अपने जीवन में, सुख दुख सब, हंसी खुशी सब कुछ उसमें रहता है।
2: सूखा पड़ा, बारिश हुई बहुत ज्यादा, और बहुत खुशगवार दिन था, शादी ब्याह, दुनिया भर की बातें आ जाती है। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने एक बात लिखी है, लिखा है कि 10वीं क्लास पास करते ही मुझे भी डायरी लिखने का खूब शौक चढ़ा था। एक युवा लड़की की डायरी में जो जो लिखा जा सकता था वो सब मैं रोज लिखती थी। जैसे कि आज शाम गजब की बारिश हुई, कल रात मेरे कमरे में घुप अंधेरा, एकाएक जानी पहचानी खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई, मेरी आंखों में चमक सी जागी। स्कूल जाते समय एक लड़का रोज मेरा पीछा करता है, कल तक जो बेरंग था आज सब कुछ रंग बिरंगा लग रहा है। मेरे मन में एक कविता आकार ले रही है मगर शब्द साथ नहीं दे रहे। फिर मैंने कविता के ख्याल को झटक दिया। चाहतों से भरी जिंदगी में डायरी अपनी किसी सहेली की तरह होती है, और जब हकीकत के थपेड़े पड़ते हैं तो डायरी लिखने में बड़ा सुकून मिलता है। डायरी में फिल्मी गीत भी बहुत लिखे हैं पर अब डायरी नहीं लिखती। भाई क्यों नहीं लिखती है?
3: जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मैं तो उसी में डूब गई थी।
2: अब सवाल ये है कि क्यों नहीं लिखती है?
3: लिखना चाहिए।
2: बिल्कुल, हाँ, ये जरूर है कि अगर कागज कलम साथ में नहीं होता है तो आपके पास बड़ा अच्छा यंत्र है, मोबाइल यंत्र। आप कहीं बाहर है, रस्ते में जा रहे हैं, ट्रेन में है, विमान में है, या फिर कार में, गाड़ी में, बस में, ऑटो रिक्शा में, तो वहाँ भी आप डायरी लिख सकते हैं, बोल के टाइप करने की भी सुविधा है। तो
3: जी बिल्कुल, अरे हमारे साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना अच्छा भी है और कुछ हद तक नहीं भी अच्छा, इसलिए कि दिन भर की अच्छी बुरी बातों को लिख कर रख देना और मन को हल्का कर लेना। 6 महीने पहले का पन्ना पलटो तो लगता है उस समय की यही बात कितनी बुरी लगती थी कि, लेकिन समय की धूल ने उस पर पर्दा डाल दिया। डायरी लिखने से यादें जिंदा रहती हैं, बच्चे की पहली हंसी से लेकर पिता की आखिरी नसीहत मानो सब कुछ कह रही हो। लेकिन यही आदत तब बुरी बन जब डायरी में सिर्फ दुख, नफरत और शिकायतें लिखते रहो, तो यही डायरी जिंदगी को दलदल बना देती है। वाकई सही बात आपने कहा है, और व्यक्ति उसी में धंसता चला जाता है। इसलिए हर दिन जैसा व्यक्ति व्यतीत होता है उसको स्वीकार करो और डायरी में लिखो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब भी पिछले पन्ने पलटो तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिनों को बराबर सम्मान दो। उन पन्नों में सिर्फ सुख के ही पन्नों को महत्व ना दो। मुझे डायरी लिखने की आदत है पर व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, सिर्फ अपनी कृषि भूमि में किस सीजन में कौन सी फसल बोई थी उसकी और शाप की हर दिन के आय और व्यय का हिसाब भी लिख।
2: कहा जाता है कि डायरी और संस्मरण ईमानदारी से लिखा जाता
3: है, ईमानदारी से,
2: और उसमें डायरी में जो भी बात लिखे सच लिखे, क्योंकि झूठ लिखने का कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोग डायरी भी आत्मश्लाघा में लीन होकर लिखते हैं पर अपनी तारीफ, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। सच को सच की तरह लिखें, झूठ को झूठ लिखें कि ये गलत था,
3: तभी तो उस समय का पता चलेगा कि आपने जीवन में क्या बिताया।
2: अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी को डायरी लिखने का बड़ा शौक था। एक बार उनकी सीट पर बैठा तो उनकी डायरी हाथ आ गई। मैंने खोल कर देखी तो जो पढ़ा वो सच में गजब ही था। नाना जी का स्वतंत्रता संग्राम में जेल के दिन

0: उनके साथियों के साथ क्रांति के दिन मैं तो एक्साइटेड हो गया था और खोजा तो वो डायरी भी मिली जिसमें मेरी माँ की शादी के बारे में भी पूर्ण ब्यौरा लिखा गया था। उसे पढ़ा तो लगा जैसे मैं उन दिनों के लम्हों को जी रहा था। सच में डायरी लिखना बहुत बड़ी बात है, वर्षों बाद भी आपके पुराने दिन जीवित रहते हैं। आजकल जो मोबाइल में नोटपैड पर लिखना डायरी का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल 5-7 साल में बदलना ही पड़ता है, जबकि डायरी आपके साथ है तो उसके बाद भी रहती है। बिल्कुल सही है, डायरी का तो कोई मुकाबला नहीं है, कागज और पन्नों का कोई मुकाबला नहीं है। वो कलम से जो बैठ के लिखते हैं
1: उसका
0: तो जो हौले हौले जज्बात निखर के आते हैं, कागज पर चमकते हैं, तो वो बात निराली होती है। लेकिन न से तो बेहतर है कुछ, तो इसलिए कि अगर आप लिखते ही नहीं तो कम से कम मोबाइल के नोटपैड पर लिख सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और डायरी अगर लिखने की आदत है तो बहुत अच्छी बात है।
1: बिल्कुल, और देखिए हमारे साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना मैंने 8th क्लास से शुरू किया था, मुझे क्लास और घर की दिन भर की सभी घटनाओं को रोज लिखा करती थी और आज भी कायम है। सोने से पहले डायरी लिखकर बड़ा सुकून मिलता है। बहुत अच्छी सी बात इन्होंने लिखी है और मुझे लगता है कि आपको भी डायरी लिखने का शौक है।
0: भाई अगर डायरी लिखने से कई बार लिखने की ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, तो इसलिए हम सबको डायरी लिखनी चाहिए। हमें आपको भी लिखनी चाहिए।
1: हम लिखते हैं,
0: फिलहाल गाना सुनना चाहिए।

0: लिखे जो खत तुझे, खत लिखना भी एक आदत है और आजकल खत लिखने का चलन भी खत्म हो रहा है, तो उसे भी जिंदा रखना चाहिए। इसीलिए विविध भारती ने जिंदा रखने के लिए शुरुआत की है मन चाहे गीत की। मन चाहे गीत कार्यक्रम में फिर से चिट्ठियां आनी शुरू हो गई और एक दो नहीं, बहुत ढेर सारी चिट्ठियां आनी शुरू हो गई हैं और अब फिर वही स्थिति हो गई कि कौन सी वाली चिट्ठी ले पहले, कौन सी वाली बाद में ले, तो बस वो आँख मूंद के उठाने वाली नौबत आ गई।
1: करना पड़ेगा।
0: तो हमें चिट्ठियों से प्यार होता है, इससे ये जाहिर है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना मुझे बहुत पसंद है, जब हम

0: पन्ने पलट कर पढ़ते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। डायरी के अंदर मैंने कुछ पुराने पत्रों को भी संजो कर रखा है, उसे पढ़कर भी बहुत अच्छा लगता है। डायरी तो ज़रूर लिखनी चाहिए, मन में नए विचार भावनाएं जागृत होती हैं, दुख लिख देने से वो कम होने लगता है। डायरी हमारी मित्र है जो हमारे राज किसी से नहीं कहती है और हम पूरे विश्वास के साथ उसे अपनी सारी बातें कह देते हैं। लेकिन कई बार अपनी प्रेम कहानी जब लिखते हैं और छुपाते हैं तो वो जब उजागर होता है तो फिर वो दोस्त नहीं रह जाती है डायरी।
1: देखिए ममता जी, एक ऐसा भी उस समय भी ऐसा चला था, भाई लिखते तो थे ही डायरी सब लोग, लेकिन उसमें भी अपने दिल की बातें लिखते थे प्यार भरी।
0: आपने लिखी कभी?
1: तो ये बात तो बताई नहीं जा सकती है क्योंकि ये बात को रहने
0: उजागर राज को राज रहने
1: रहने देते हैं। तो लेकिन अब वो ये कह रहे थे ममता जी कि जो उस समय भी डायरियां बड़ी डिजाइनर डायरियां आती थी और कुछ डायरियां ऐसी आती थी ममता जी उसमें लॉक होता था, तो मैंने खुद देखा है कि वो लॉक वाली रहती थी, उसमें वो स्पेशल खास
0: वो अभी भी आती है।
1: हाँ,
0: बस शौक होना चाहिए डायरी खरीदने का, डायरी लिखने का और डायरी तोहफे में देने का भी एक अलग मजा है।
1: सोचते हैं यही हम आपको दे देते हैं, आप मुझे दे दो। फिलहाल तो हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं, है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो एक साथी लिखते हैं कि मुझे डायरी लिखने का शौक है। कोई आवश्यक कार्य नोट करता हूँ। 2005 में हमारे पूरे परिवार करीब 45 लोग और सहायक बस चलाने वाला रसोई मैनेजमेंट 6 लोग कुल 50 व्यक्ति ने बद्रीनाथ तक का 21 दिनों का प्रवास किया था। उनका सभी वर्णन मैंने लिखा हुआ है। आज भी कभी डायरी देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो पूरा प्रवास के स्थलों, कहाँ रुके, भोजन का मेनू, सभी विवरण पढ़ते हैं तो नजर समक्ष पूरा प्रवास याद ताजा हो जाती है। बिल्कुल सही लिखा है आपने।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि आपका मन हल्का होता है एक तो डायरी लिखने से। वैसे मैं लिखती हूँ कुछ लेन देन की बातें, कुछ वैसी बातें जो मुझे याद रखनी चाहिए, यानी मैं पेन ज़रूर उठाती हूँ। आजकल स्लेट और पेंसिल पर सुरीला सफ़र के इबारत पढ़कर गाने और क्या कुछ कहना है लिखती हूँ। क्या बात है भाई, जब मैं लिखती रहती हूँ तो मेरी हेल्पर आ जाती है तो पूछती है कि चाची अब आप क्या पढ़ती रहती हैं, लिखती रहती हैं, तो मैं हंस के कह देती हूँ बस ऐसी कुछ कुछ बातें लिखते हैं और फिर मिटा देते हैं। और ये जो लिखी है कि लेन देन की बातें लिखते हैं, अभी भी बहुत सारे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो बाकायदा कागज़ कलम लेकर जो घर की ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और उस लिस्ट को देते हैं अपने बच्चों को कि ले जाओ ये सामान लेकर आओ। हम अमूमन क्या होता है कि सीधे स्टोर में जाते हैं या मॉल में जाते हैं और चीज़ें दिखती हैं, सामान रखते जाते हैं, भरते जाते हैं, कई बार अनावश्यक चीज़ें आ जाती हैं।
1: हमें याद है ममता जी, जो आपने बुज़ुर्गों की बात की आदत बताई है, तो वो लोग इसलिए भी लिखते थे कि महीने में हमने कितना खर्च किया, अगले महीने हमें कहाँ पर कटौती करनी है, तो वो एक पूरा बजट बना के चलते थे। तो हमने भी अपने बड़ों से यही सीखा है, तो वो डायरी उस तरह का हम भी नोट बनाते हैं घर पे कि हम अगले महीने किस चीज़ को माइनस करते हैं, तो एक बजट बना के जब चलते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है और गृहस्थी में तो बहुत ज़रूरी होता है।
0: पढ़ाई की बातें और गानों की बातें, संगीत की बातें और तो और संगीत सरिता जो प्रोग्राम प्रसारित होता है आज भी, हम जब छोटे थे सुनते थे तो अपनी डायरी में संगीत सरिता से जुड़ी जो बातें होती, जानकारियाँ, वो डायरी में नोट करते थे और उन कार्यों के आधार पर अपनी बातें लिखा करते थे।
1: क्या बहुत अच्छी बात।
0: ये हम सबकी आदत में शुमार है ये सब डायरी लिखना, लेकिन अब कहीं विलुप्त हो रहा है ये चलन।
1: बिल्कुल। लेकिन हमारे साथी लिख रहे हैं कि डायरी लिखना एक बहुत अच्छी उपयोगी आदत है, ये हम अपने दैनिक अनुभवों, विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का अवसर देती है। डायरी लिखने से आत्मचिंतन की क्षमता बढ़ती है और हम अपनी गलतियों तथा उपलब्धियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ये हमारी लेखन कला को भी निखारती है और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाती है। कई वर्षों बाद जब हम अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं तो जीवन के अनेक यादगार पल फिर से ताज़ा हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तित्व विकास और मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत लाभदायक है।
0: और साथ में संगीत सुनते रहें तो ये और ज्यादा लाभदायक होता है। सुनिए ये गाना।

0: छाया फिल्म का ये गाना था और डायरी लिखने पर हमारे श्रोता बहुत सारे टिप्पणियां लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर डायरी लिखने की बात है तो महात्मा गांधी जी के जो सचिव हैं उनको कैसे भुला सकते हैं, उन्होंने साल 1917 से 1942 तक नियमित रूप से डायरी लिखी थी जिसमें स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के जीवन का सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज दर्ज है।
1: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं कि एक ज़माना था मुझे भी डायरी लिखने की आदत थी जो मेरे ससुर जी से प्रेरणा मिली थी, तो डायरी लिखना छोड़ दिया है। भले ही अब डायरी लिखना छूट गया है लेकिन वो शौक आज भी दिल के किसी कोने में एक मीठी सी याद बनकर जिंदा है। डायरी लिखना छोड़ देने से शायद हम अपनी रोज की बातें दर्ज करना भूल गए हों लेकिन ये वो आदत हमें अपने विचारों को गहराई से समझना सिखा गई है।
0: मंजरी जी, एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि डायरी लिखने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे पतिदेव डायरी लिखते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत पसंद था डायरी लिखना। आज जयपुर में वो नहीं है, उनके न रहने पर जब मैं डायरी उठाकर देखती हूँ तो एक एक दिन का हाल दर्ज है। जब हम लोगों की लव स्टोरी चलती थी तब से लेकर जब बच्चे हुए, घर की कोई बात हमेशा उसमें दर्ज है, जो पढ़कर ऐसा लगता है कि पुराने सालों में ज़िंदगी पहुँच गई है। वाकई बहुत अच्छी आदत है डायरी लिखना।
1: बिल्कुल। और हमारे जो और साथी हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अगले विषय की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो हमने शब्द दिया था प्रोत्साहन,
0: डायरी लिखने के लिए एक तरह का प्रोत्साहन
1: भी था ये, और हमने प्रोत्साहन लिया है। तो ममता जी, प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने, बेहतर करने और कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानने की प्रेरणा देती है। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी निराश, असफलता और कठिनाइयों का सामना करता है, और ऐसे में यदि हम किसी का उत्साह बढ़ाने वाले शब्द, सहयोग या विश्वास मिल जाए तो वही प्रोत्साहन उसके लिए एक नई ऊर्जा बन जाता है।
0: बिल्कुल। अब प्रोत्साहन हमने डायरी के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी लिखनी चाहिए पर जब उसको उठाओ पढ़ो तो पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं, तो दुख कुरेद जाता है तो मैंने छोड़ दिया। आज भी कभी मन होता है तो लिखने बैठ जाती हूँ, बस

0: अपने भाव सहज लेती हूँ। ये तो दोनों सकारात्मक नकारात्मक दो पहलू होते हैं। तो आपके दुख, अगर दुख को पलटेंगे बार बार तो आपके मन में भी वो घाव ही पैदा करेगा।
1: बिल्कुल सही बात है। तो कुछ अच्छी बातें भी सोच के आप लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोत्साहन, तो हमारे साथी भी लिख रहे हैं देखिए प्रोत्साहन पर, कि प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और उत्साह का संचार करती है। जब कोई हमारा हौसला बढ़ाता है तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान लगने लगते हैं, और एक छोटा सा प्रशंसा का शब्द या विश्वास भरा साथ किसी के जीवन की दिशा भी बदल सकता है, हमारे साथी लिख रहे हैं। और प्रोत्साहन जो है वो केवल बड़े कार्यों के लिए आवश्यक नहीं होता है ममता जी, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बच्चे को पढ़ाई के लिए, खिलाड़ी को जीत के लिए, और कलाकार को अपनी कला के लिए, और कर्मचारी को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। और जब किसी व्यक्ति के कार्य की सराहना की जाती तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अधिक मेहनत करने के लिए भी प्रेरित होता है। जैसे कि हम लोग करते हैं प्रोग्राम, तो अगर हमारी प्रशंसा होती है, प्रोत्साहन दिया जाता है कि इसको और अच्छे से करो, उत्साह बढ़ता है, तो लगता है कि नहीं अगली बार हम और अच्छा करेंगे। तो ये चीज हर के साथ होती है,
0: प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा भी देता है। इसीलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कई बार तो लोग बहुत अच्छे काम में भी कुछ न कुछ मीन मेक निकाल ही देते हैं कि अरे इसमें ये कमी रह गई, तो वो सही चीज़ बताने की, सही गलती की ओर इशारा करना अच्छी बात है, आपकी सही निंदा करना अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से मीन मेक निकालना ठीक नहीं होता है, बल्कि काम को प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि प्रोत्साहन एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति के सोए हुए आत्मविश्वास को जगाकर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करती है। ये केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि प्रेरणा का वह पुंज है जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का संबल देता है।
0: और हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि बच्चों को प्रोत्साहन देने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी छोटी छोटी सफलताओं की भी सराहना की जाए। जब बच्चे कोई अच्छा कार्य करें, मेहनत करें, नई चीज़ सीखने का प्रयास करें तो उनकी प्रशंसा करें, उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि गलतियां सीखने का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त की जा सकती है। माता पिता और शिक्षक बच्चों की बात ध्यान से सुने, उन्हें प्यार और सम्मान दें और उनकी रुचियों को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। इसीलिए तो स्कूल कॉलेज में पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है ना, कि
1: बच्चों का उत्साह बढ़ जाता है उस तरह से। और हमारे एक साथी लिखते हैं पौधों को और खेत में पानी देने से प्रोत्साहन मिलता है, वो फूलता फलता है। जी हाँ, प्रोत्साहन यानी एक स्फूर्ति, पुरस्कार या उत्साह भरे शब्दों में शाबाशी देना जो किसी व्यक्ति या समूह को खास काम करने या व्यवहार में कार्यक्षम और सकारात्मक बनने में प्रेरित करती है। याद रखें, पौधों को उतना ही खाद पानी दे जितना जरूरी, अधिक मात्रा से वो मुरझा जाता है। अत्यधिक प्रोत्साहन से काम बिगड़ने की संभावना रहती है। बहुत गुड़ बात इन्होंने अच्छी बात लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए, दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।
0: और अब देखिए, डायरी लिखने के लिए भी एक टिप्पणी हमारे श्रोता ने लिखी है कि बचपन में दी डायरी, आप सबने पूछा कि कोई ऐसी डायरी भी पढ़ी है, तो लिखा है कि बचपन में दी डायरी ऑफ यंग गर्ल पढ़ी थी, जो एक किशोर वय बच्ची एनी फ्रैंक द्वारा लिखित बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति है। वे एक यहूदी थी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड पर जर्मनी के कब्जे के समय अपने परिवार के साथ छिप कर रही थी। उन बिताए समय का वृत्तांत उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। तो डायरी किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार, और एक लंबा दस्तावेज होता है। अब प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं ये गाना।

0: मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें थी। और अब बिल्कुल भी वक्त नहीं कि गाना सुनवाएं या कुछ बोले बतियाएं, तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज रही है बचपन से, कहीं आपके भीतर कुछ पैदा कर देता है। वो लगता है जैसे कि आप ही के भीतर से कोई आवाज आ रही है, और मैं यहाँ पे हूँ, मैं पहली बार आया हूँ रेडियो में।
1: अच्छा,
2: तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
1: लेकिन रेडियो के साथ में बतौर श्रोता आपका रिश्ता पुराना रहा है।
2: मैं जब छोटा था तो मुझे बड़ा शौक था रेडियो का, और पैसे चूंकि होते नहीं थे तो मैंने एक दो बार पैसे इकट्ठे किए और मैं रेडियो लेके आया था, छोटा पॉकेट रेडियो 110 रुपए, जो मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी। रात को मैं सुनता था उसको, और वो सुबह खर खर करता हुआ पाया जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली 10 बजे कोई कार्यक्रम आता था, छाया गीत। करेक्ट
1: जी। हाँ, और उसमें हम पुराने पुराने गाने
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: विद कमेंट्री पेश करते हैं। तो ये जो उसमें आप कमेंट्री वगैरह भी, क्योंकि उन दिनों तो हॉकी और क्रिकेट की कमेंट्री के लिए रेडियो बड़ा सहारा हुआ।
2: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
1: और कौन कौन से रेडियो स्टेशन सुना करते थे विविध भारती के अलावा?
2: मेरे ख्याल से वही एक ज्यादा

0: पॉपुलर
1: पॉपुलर हुआ करता था उस समय। और चूँकि जैसे क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था, तो कमेंट्री उस पर आती थी, वो सुनते थे। और टेलीविज़न तो उन दिनों बहुत कम हुआ करता था, किसी के घर में पाया जाता था तो वहाँ इतने सारे लोग जमा हो जाते थे कि भाई चलिए टीवी देखा जाए।
0: आपके यहाँ टीवी कब आया पहली बार?
1: हमारे यहाँ आया 83 में, जब ये एशियाड हुए थे।
0: कलर आए थे, ब्लैक एंड व्हाइट था?
1: ब्लैक एंड व्हाइट।
0: अच्छा, चूंकि रेडियो की बात कर रहे हैं हम, और रेडियो के स्टूडियो में आए हैं आप, विविध भारती के स्टूडियो में आए हैं, क्यों ना आपकी फरमाइश के गाने से?
1: मुझे एक्चुअली पुराने गाने यार बहुत बहुत अच्छे लगते हैं,
0: और विविध भारती के पास विजय भाई पुराने गीतों का जबरदस्त खजाना है।
1: तो मुझे एक मन्ना डे साहब का एक गाना है, ऐ मेरे प्यारे वतन, जो मन्ना डे साहब क्या क्या गाया है,
0: अद्भुत,
1: बाप रे। और
0: लेकिन जो कुछ भी गाया, कव्वालियां गाई, भजन गाए, रोमांटिक सॉन्ग्स गाए, और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने जो उन्होंने गाए वो भी अद्भुत हैं। उनका गाना ये काबुलीवाला फिल्म का गाना है, प्रेम धवन साहब का लिखा हुआ है और सलील चौधरी साहब का संगीत है। सुनवा दिया जाए?
1: बिल्कुल।
0: ऐ मेरे प्यारे वतन।

0: और इस समय सिर्फ वतन में ही नहीं, वतन के बाहर भी लोग आपको सुन रहे हैं। विजय भाई, ये मैं जानना चाहूंगा कि पहली विजय कब प्राप्त हुई आपको फिल्मों के लिए, काम मिला?
1: मैं दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं पे। और मेरी मतलब जैसे कहते हैं ना कि बचपन में पूछा जाता है कि भाई क्या बनेगा बच्चा बड़ा होके। तो मैं ऐसा कह लें कि मुझसे ये सवाल नहीं किया गया था कभी कि क्या बनेगा। मेरी समझ में हिंदुस्तान में इतने सारे परिवार हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, जहां शायद ही कभी बच्चे से ये सवाल किया जाता है। इट्स अ वेरी ग्लैमराइज्ड क्वेश्चन एक्चुअली कि क्या बनेंगे आप। इस सवाल तक तो ध्यान जाता ही नहीं है। बहुत करोड़ों परिवार ऐसे हैं, वहां ध्यान कुछ और ही रहता है कि खाना आज मिलेगा कि नहीं।
0: बस सही।
1: तो सवाल मेरे ख्याल से पेट भरने के बाद शुरू होता है।
0: और कई परिवारों में तो थोपा भी जाता है कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर
1: हाँ,
0: बनाएंगे, ये बनाएंगे, बच्चे से कोई नहीं
1: वो
0: पूछता।
1: हाँ, और ये अनजाना अनदेखा कर देते हैं हम कि हम ही तय करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। जैसा आपने कहा ना कि बच्चे से पूछा नहीं है, और बच्चे से पूछना भी नहीं चाहिए। बच्चा भी उस मेरे ख्याल से उस जगह तक पहुंचा नहीं कि जहां वो इस सवाल को झेल पाए। जो इतना बड़ा सवाल है,
0: जी।
1: और छोटा सा बच्चा नन्ना वो भी जी रहा है। और ये सवाल उन लोगों का है जो एक्चुअली जी नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। वरना ये सवाल कभी कोई सेंसिबल आदमी नहीं पूछेगा क्या बनना चाहते हैं। क्या बनना है, अभी तो जीने का समय है, अभी तो जी ले कम से
0: रास्ते में है अभी तो।
1: कम। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या बनूंगा। मैंने ये सोचा कि यार मेरा होगा क्या। जब धीरे धीरे हम बड़े होने लगे कि यार अब तो बड़े हो गए, पढ़ाई वढ़ाई खत्म होने वाली है, अब तो फ्री की रोटी मिलेगी
0: पढ़ाई में
1: नहीं।
0: थे कैसे आप?
1: मैं यार ठीक ठाक था, मतलब मन मेरा लगता नहीं था पढ़ाई में।
0: मन कहीं और लगता था।
1: मन मेरा खेलने कूदने में, और अकेले बहुत समय बिताया मैंने। मैं घर बहुत बाद में जाता था, कह लें कि सिर्फ सोने के लिए जाता था।
0: इस आवारगी का ताल्लुक किससे था? मतलब तो अपने आसपास के, कभी मौसम से बात करना, पेड़ों से बात करना, हवाओं से बात करना, कुछ ऐसी बात थी क्या?
1: जहां मैं पैदा हुआ पूसा इंस्टीट्यूट,
0: जी
1: वो खेत खलियान वहां बहुत हैं। हालांकि है दिल्ली के अंदर, बट आप
0: जी
1: वहां अगर गए हों कभी या जाने का मौका मिले
0: गया
1: आपको, तो आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में। बड़ी शांति है वहां, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे मतलब अमरूद, आम, जामुन, और पता नहीं क्या क्या
0: जी
1: मतलब बाग बगीचे वहां पे हैं। लोगों की संख्या बहुत कम है। उस माहौल में मेरी पैदाइश हुई, और पूरी जो सराउंडिंग थी वो नेचर से पूरी भरी हुई थी। उसने शायद कह लें आप, या मैं पीछे से कुछ लाया होऊंगा। मुझे एकांत बड़ा पसंद था हमेशा ही।
0: जिस तरह से आप आए हैं और आपकी शख्सियत को देख रहा हूं, मैंने पर्दे पर तो आपको कई फिल्मों में देखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक मलंग पना जो है वो आपको बड़ा पसंद है, वो
1: हाँ वो है।
0: अक्कड़पन, वही जिंदगी की जो होती है, अलमस्त जो एक स्वभाव सा होता है। और आपने अभी कुछ देर पहले कहा भी कि इस वक्त जो है उसे हम जी लें।
1: बिल्कुल, मतलब इससे बड़ा सच मेरे ख्याल से है नहीं। जैसा कहा भी आता ना, इस सच को हम उसका सामना करने में बड़ा कतराते हैं कि हमेशा आगे कुछ तय हो जाए, हम पहले तय कर लेना चाहते हैं, जबकि वो हो नहीं पाता कभी। ये अजीब सा भ्रम है जो हमेशा बना रहता है हमारे हमको कि हो जाएगा तय, जबकि होता नहीं। तो मैं खुद वैसी प्रवृत्ति का आदमी हूँ, वैसी प्रकृति है मेरी। मुझे अच्छा लगता है, जब भी समय होता है मैं निकल जाता हूँ गाड़ी वाड़ी लेके हाईवे पे, कहीं गाड़ी रोक के फिर खेत वेत में थोड़ा घूम लिए, वहाँ चेयर डाल के बैठ गए, मुझे बड़ा मजा आता है।
0: ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी भी आपको अपनी वो जो जड़ें हैं उनसे जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपने अभी कहा कि ये पल जो है वो जी लें, और इस पल में मैं समझता हूं कि जब हम पल की बात करते हैं तो संगीत हमारे बहुत सारे पलों को सुरीला बनाता है, उसके साथ

0: जीना भी बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम उसके उसकी नदी में बस बहते चले जाएं। तो आपने कहा कि पुराने गानों का बड़ा शौक है आपको।
1: हाँ, चूंकि बात अब चल रही है पलों की,
0: हाँ,
1: तो एक गाना तो बन गया,
0: कौन सा?
1: पल पल दिल के पास तुम रहते हो।
0: क्या बात,
2: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: पापा, लाइए 3,000।
6: क्यों भाई?
5: मेरी पॉकेट मनी।
6: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
5: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो, डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
6: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ, अपने 1,000 ले जाओ,
5: अपना मोबाइल लाओ,
6: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

0: हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि पल पल विविध भारती के साथ बने रहिए। इस समय हमारे साथ हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता विजय राव जी। विजय भाई, परिवार की आपने बात की और अपनी तबीयत के बारे में भी बताया, लेकिन एक्टिंग जो होती है वो सबकी तबीयत में नहीं होती, और उसके लिए वो भी एक साधना है, बहुत बड़ी कला है। मैं समझता हूँ कि तरह तरह के चरित्र जो आपके आसपास रहते हैं जिंदगी में, उनको पर्दे पर जीना, इतना विश्वसनीय बना देना कि लोग डूब जाएं उसमें, वो सच में एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। तो एक्टिंग जो थी, इसका आपके बचपन से कहीं कोई रिश्ता है, या बड़े जब आप हुए तब आपके भीतर कहीं ना कहीं उसका अंकुरण हुआ?
1: मैं बड़ा शर्मीला किस्म का व्यक्ति रहा हूँ बचपन से, अब शायद नहीं हूँ, थोड़ा बेशरम हो गया तो मैंने कभी नहीं सोचा था एक्चुअली कि मैं अभिनेता बनूं। ऐसा मैंने पहले कहा कि मैंने तो खैर कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं क्या बनूंगा।
0: घर में भी कोई नहीं था इस फील्ड में?
1: नहीं, घर में पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मम्मी हमारी हाउसवाइफ। पिताजी से बड़े जो हमारे दादा थे, उनका संग मुझे बहुत ज्यादा मिला नहीं। इनफैक्ट मुझे बुजुर्गों का संग मिला ही नहीं बहुत ज्यादा। मैं शायद 8-10 साल का रहा हूँगा जब दादाजी हमारे चले गए, और चूंकि वो गांव में रहते थे तो उनसे मुलाकात तभी हो पाती थी जब हम गांव समर वेकेशन में जाते थे। तो उन 10 सालों में भी बहुत ज्यादा संग रहा नहीं। सुना है मैंने बस कि वो थोड़े मलंग टाइप थे, तो हो सकता है वहां से मुझे ये मलंगपना मिल गया हो, मेरी तबीयत में वहां से आ गया हो। कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तब ये घटना अचानक घट गई मेरे साथ कि वहां पे थिएटर करते थे लोग, और मैंने उनसे पूछ लिया यूं ही कि हमको भी यार कोई रोल वोल दे दो यार, क्या है। तो उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया, वो मैंने पढ़ दिया। अच्छा ठीक है, तो ये जो लाइनें है ना, ये इंस्पेक्टर जहां यहां लिखा है, ये सारी याद करके लाना। जब उन्होंने ये बात कही कि याद करके लाना, वहां से मुझे थोड़ा दिल एकदम टूट गया। मेरा यार ये मैंने गलत पंगा ले लिया, ये अगर मैं ये याद करूं तो यार मैं पढ़ पढ़ा के थोड़ा कुछ थोड़े ठीक ठाक नंबर ले आऊं, 40-42 नंबर आते हैं 100 में से तो थोड़े बेहतर हो जाएं, पिताजी खुश हो जाएं। लेकिन जवान थे आप, 18-19 साल की उम्र में, तो उस समय होता है ना कि आपकी जुबान से जो बात निकल गई अब तो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन घर आके वापस मैं आया और मैं सोचता रहा खाना खाने में, यार अब तक की बहुत बड़ी गलती की लाइफ में, ये मुझे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, कैसे मना करूं मैं अब। और अगले दिन शाम को हम लोग गए, तो मैं अब ढूंढ रहा हूं जगह कि कहां मैं कोई बहाना ऐसा मिले कि मैं मना कर दूं।
0: कोई नर्वसनेस नहीं थी?
1: नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी, मुझे सिर्फ ये था यार मैं क्यों
0: कहां फंस गया,
1: ये बात इतनी लंबी चली जाएगी मुझे नहीं मालूम था। वो बस ऐसी मजाक था कि यार हमें रोल दे दो और बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं। ये मेरे लिए अभी समस्या का कारण हो गई। खैर वो रिहर्सल होने लगी एक दिन दो दिन, और मैं फिर ये सवाल भूल गया पूछना या उनको कहना कि यार मैं नहीं करूंगा। मुझे अचानक एक रस पैदा हो गया और मुझे मजा आने लगा। और फिर 1-1.5 महीने के बाद शो हुआ उसका, और कैसा हुआ होगा, हमने कैसा किया होगा, वो तो खैर हम समझ सकते हैं क्योंकि बड़ी पुरानी बात है, बिल्कुल पहला नाटक। लेकिन जब वापस आए तो कॉलेज में, मतलब कि अरे विजय यार क्या बात है यार मैंने कहा यार कुछ तो हुआ है तो वहां से वो कब पैदा हो गया, उस रस की वजह से
0: कुछ कुछ होने लगा,
1: कुछ होने, मैंने यार नहीं इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक तो खेलने में मुझे बहुत मजा आता था कि कोई मुझे न रो, मुझे रात को भी बॉल दिखाई देती थी मतलब सब लोग चले जाते थे यार अभी कहां जा रहे हो यार खेलते ना, मैं थकता नहीं था, मुझे इतना मजा आता था खेलने में। या फिर मैं अकेला रहता था, अकेला घूमता था, हमको एक छोटी जमीन मिली हुई थी जहां पे हम सब्जियां उगाया करते थे, तो मैंने बहुत सारी सब्जियां, हर तरह की सब्जियां उगाई हैं बचपन में, वहीं पे कुआं था वहां से पानी निकाल के उसमें देते थे, या वो काम करता था। इतना कहें स्वाद मुझे किसी भी चीज में मेरे इतिहास में आया नहीं था, और सिर्फ इसी बात ने, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बात मुझे एक दिन बॉम्बे ले आएगी, यहां तक जा सकते हैं इस बात से, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था और मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं था।
0: तो बॉम्बे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद में, लेकिन उसके पहले एक गाने को छेड़ा जाए, आपकी पसंद के गाने को।
1: गाना मुझे अभी कुछ भी याद नहीं, आप भी सुना दीजिए अपनी पसंद का।

0: बिजी भाई, अब कैसे आना हुआ आपका मुंबई?
1: वो भी बड़ा एक अजीब सा किस्सा है। मैं एनएसटी रिपेट्री में था और किसी बात को लेकर तनातनी हो गई, आपस में हो जाती है। बिना तनातनी के कुछ मजा भी नहीं रह जाता कई बार, ऐसा लगता है। अच्छे पैसे मिलते थे, थिएटर करने को मिल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत अच्छा काम मिल रहा था मुझे। रिपेट्री ने बहुत काम दिया मुझे करने के लिए, मैं बड़ा आभारी हूँ उसके लिए, एनएसटी रिपेट्री का। जब वो बात वाकया हो गया तो वो उसके बाद फिर एक ही चाह रहा था कि आप बम्बई चले आएँ। तो 98 में मैं बॉम्बे आया। पिछले सितंबर की 13 तारीख को मुझे पूरे 11 साल हो गए। जब नए नए आया तो एकदम समझ में नहीं आया यार, यहाँ पे करें क्या मतलब करें क्या, कैसे जाएं और काम मांगे, और जाएं कहाँ, सड़क पे तो कोई घूमता नहीं है। तो पड़े रहे मतलब घर में, और सिर्फ यही सवाल कि यार कैसे, मतलब करें कैसे, क्या करें। तो कुछ पुराने दोस्त थे यहाँ पे, उनसे पूछा गया भाई कैसे होता है, कि होता कुछ नहीं, फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचा के बांटो। मैंने हाँ ये तो अच्छा तरीका है यार तो फोटो वोटो खिंचवाई गई, शक्ल आपकी चाहे जैसी भी हो फोटो चाहिए, फोटो वोटो खिंचवाई, और जो है उसके बाद फोन करके लोगों से एड्रेस मांगे, और एड्रेस जाके वहाँ फोटो वोटो बांट दी गई, हो गया जैसा होना था। मेरी समझ में मैं ऐसा मानता हूँ कि किस्मत बड़ी चीज है, कहाँ पे आपका क्या होगा। आप अपनी तरफ से चीजें करते जरूर हैं क्योंकि वो करनी होती हैं, बट तमाम चीजें मेरे ख्याल में हर चीज किस्मत एक वर्ड है, एक नाम दे दिया, एक ऐसी शक्ति को नाम कह लें, उसके बिना कुछ होता नहीं।
0: डेस्टिनी को आप मानते हैं?
1: बिल्कुल मानता हूँ। और टैलेंट एक बड़ी अजीब सी चीज है, ये एक अजीब सी बहस का मुद्दा भी हो सकता है अगर हम बात करें तो, अगर आप टैलेंट के हिसाब से बात करते हैं। और मैं अपनी ही बात को काटूंगा कि हमको वो बहस नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम बिना अपने जाने पैदा हो जाते हैं तो बिना वो जो टैलेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिना वो हुए भी हम बहुत बड़े कलाकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि हम

0: ही तय कर रहे हैं कि आप बड़े हैं आप छोटे हैं, और हम तय कर रहे हैं जो हम ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी किस्मत की बात कह लीजिए कि चीजें बन गई, वरना ऐसा आपने कहा कि जाने माने कलाकार हैं वो सब, यार मुझे नहीं लगता कि वो उस बहस में हमको पढ़ना चाहिए। किस्मत थी मेरी, मुझे काम मिल गया, और किस्मत ही कह लें उसे कि लोगों को वो अच्छा लगता है।
1: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान, और आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
2: विजय भाई, बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया है, एक अलग पहचान भी है आपकी, लोग देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं आपका काम देख करके, बड़े प्रभावित होते हैं। रेपर्टरी का आपने जिक्र किया, मैं ये बात पीछे छूट गई थी, थोड़ा सा फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जरा, वहां कैसे, किसने, किसी ने प्रेरित किया आपको या कहीं से आपको जानकारी मिली?
0: कॉलेज में जब शुरू हो गया सब कुछ, तो उसके बाद हम लोग मंडी हाउस आ गए। मंडी हाउस एक ऐसी जगह जहाँ पे स्कूल भी है और थिएटर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो साक्षी कला मंच एक अमेच्योर थिएटर ग्रुप वहाँ पे है, और वहाँ पे मैं कॉलेज से, आप वहाँ एक थोड़े से प्रोफेशनल तरह के लोगों के बीच में एंट्री हो गई, तो उनकी बातें समझ में ना आए, कह रहे बात क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं वो विदेशी नाम, जो हमारी समझ से और हमारी जानकारी के हिसाब से बड़े दूर के कोई हैं, और इसका ये एक्चुअली आदमी का नाम ले रहे हैं या किसी चीज का नाम ले रहे हैं, उतना तक समझ में नहीं आता था। एक्चुअली जब मैं थिएटर मैंने ज्वाइन किया, तो थिएटर का मुझे आज भी मतलब नहीं मालूम, एक्चुअली पहले भी नहीं मालूम था, मुझे तो बस मजा आता था यार, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ मुझे मजा आ रहा है, इतना ही मेरे लिए था। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, क्या होता है ये, क्या करना है, और हम कौन है, ऐसा कुछ मेरे ये सब, मुझे इससे कोई लेना देना था नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है बस, बात खत्म हो गई। छोटा छोटा रोल मिलने लगा, फिर एक प्ले हुआ रोमियो एंड जेनेट, बाहर का प्ले है, जिसमें मुझे अचानक एक बड़ा रोल मिल गया। अचानक यूं कि पहले कोई और कर रहा था जो बड़ा एक्टर था, पुराना एक्टर था, तो उन्होंने दे दिया, तो मैंने कहा यार चलो, तो हम करने लगे, और वो मेन रोल था मतलब उस नाटक में। बाकी जितने भी लोग थे वो सब सीनियर लोग थे, तो मैं ही एक था जो सबसे छोट भैया इसको कह लें, तो इतने सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला पहली बार, और प्ले बड़ा बढ़िया हो गया और मुझसे बड़ा बढ़िया हो गया काम मतलब ऐसा कहा लोगों ने। जे एन कौशल एक व्यक्ति रहे हैं जिनका, जो रेपर्टरी चीफ हुआ करते थे उन दोनों, बड़े ही प्यारे इंसान, उन्होंने वो प्ले देखा था, दो तीन बार देखा था, और उनको बड़ा पसंद आया, तो मुझे उन बुलाया रेपेट्री में कि सुनो तुम रेपेट्री ज्वाइन करना चाहोगे, 3,000 रुपये मिलेंगे, और तो 3,000 सुन के मैं बाकी सुनना ही बंद कर दिया मेरे कानों ने शटर डाउन कर लिया कि 3,000 के बाद मैं 3,000 के हिसाब लगाने लगे, 6 महीने के लिए बुलाया है तो 6 × 18 18,000 में इतना इतना इतना ना, मैं वो आंकड़े में चला गया बाकी वो क्या बोल रहे मुझे कुछ नहीं मालूम फिर ये था कि यार ये क्यों पूछ रहे हो, करोगे क्या हाँ मैं करूंगा, ऐसे वहां मेरी एंट्री हो गई, तो मुझे गेस्ट आर्टिस्ट उन्होंने ले लिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप परमानेंट होने के लिए यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि मेरे लिए तो उतना काफी हो गया था कि 6 महीने उन्होंने मुझे रख लिया, बड़ी मेहरबानी, 18,000 रुपये मिल गए, बस 1-1.5 साल लाइफ का और कट जाएगा, बाकी अपना घूमते रहेंगे। क्योंकि मैंने कभी माना ही नहीं अपने आप को कि मैं, जो टैलेंट की आप अभी जिक्र कर रहे थे, कि वो मुझे समझ में कभी आया नहीं कि हाँ अच्छा हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे पता नहीं, अगर इसी को कहते होंगे टैलेंट तो ठीक है। तो कौशल साहब ने, आखिरी समय था, आखिरी दिन था कि आप भर दें, तो मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। मुझे कुछ आता नहीं था, जो थिएटर मैंने पढ़ा नहीं था, क्या क्या इतिहास में किसने किया है मुझे कुछ नहीं मालूम था, जो आज भी नहीं मालूम है, और जो मुझे समझ में आता था वैसा मैंने एक इंटरव्यू दे दिया, और मुझे सेलेक्ट कर लिया उन लोगों ने यार, पता नहीं कैसे तो पहले वो लोग 1 साल के लिए लेते हैं, 1 साल के बाद 2 साल का रिन्यूअल होता है, फिर 2 साल के बाद 3 साल का, तो मैक्सिमम आप 6 साल तक रह सकते हैं वहां पे। तो 1 साल के लिए जैसे उन्होंने लिया, तो मैंने फट से फिर तनख्वाह हो गई 4,000, तो 1248 मैंने 48,000 का हिसाब लगा लिया मैं यार आगे रखे नहीं रखे निकाल देंगे, और ऐसा हुआ नहीं। फिर 2 साल के लिए मिल गया, और फिर मुझे कुछ कुछ छोटा छोटा काम उन्होंने दिया, जो इत्तेफाक से वापस ठीक हो गया, फिर उन्होंने बड़े रोल देना मुझे शुरू किया, और उसके बाद एक समय ऐसा था कि काफी इंपॉर्टेंट काम रेपेट्री ने मुझे दिया, और इत्तेफाक से वो सभी अच्छा हो गया और लोग पसंद करने लगे।
2: किन किन कलाकारों के साथ में, निर्देशकों के साथ में, खासतौर से थिएटर की जो पर्सनालिटी की हम बात करें, आपको काम करने का मौका मिला?

0: एम के रैना साहब, रंजीत कपूर साहब, डी आर अंकुर साहब, बजाज साहब, बी एम शाह, मोहन उप्रेती साहब, बापी बोस, कई सारे नाम हैं जिनका सानिध्य मिल पाया मुझे। काबिलियत थी नहीं, लेकिन होता है कई बार चलता है कि आप नहीं हैं काबिल, लेकिन होता ना कि गेहूं में घुन भी पिस जाता है और टेस्ट गेहूं का ही आता है।
1: विजय भाई, अभी मौका है एक और गाना अपने सुनने वालों के लिए पेश करने का, आपकी तरफ से आपकी पसंद का गाना, वो सुनवाएंगे और उसके बाद में फिर किस्सों पे फिर चलेंगे। जी
0: अभी किशोर साहब का गाना है शराबी फिल्म का, हालांकि फिल्म बहुत ज्यादा पुरानी, बट बहुत अच्छा गाना है वो।

0: किशोरदा भी कुछ ऐसे ही जिंदगी में मलंग जैसे, उनका भी बड़ा स्वभाव वैसे ही रहा। उन्होंने खास उससे सिंगिंग के करियर को तो बहुत बाद में सीरियसली लिया, शुरू में थे वो एक्टिंग पे ही जोर देते थे। उनकी फिल्में आपने देखी?
1: मैंने एक्चुअली फिल्में बहुत कम देखी हैं, मतलब ओवरऑल एक आध दो, जैसे जिसमें एक गाना है एक लड़की भीगी भागी सी
0: चलती का नाम,
1: हाँ वो फिल्म देखी है मैंने, लेकिन वो सब बचपन की बातें हैं। बचपन में मैं काफी फिल्में देखा करता था, जब टीवी किसी किसी घर में पाया जाता था तो आप लटक के खिड़कियों से लटक के बड़ा मजा आता था। रात रात तक घर से बाहर रहने की परमिशन है भाई, 10-11 बजे रामलीला खत्म होगी, थोड़ा जो आवारगी थी उसको थोड़ा और वक्त मिलेगा, तो उस वजह से ज्यादा वो समय बड़ा अच्छा लगता था जो अब चल रहा है दिवाली के आसपास का समय।
0: विजय भाई आपने कहा, हालांकि बहुत ही हल्के ढंग से आपने उसको मजाक में कह दिया, लेकिन मुझे लगा कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात भी है। पैसे की आपने कहा कि बात जब से पहली बार बताया कि 3,000 रुपये महीने के मिलेंगे, मैंने हिसाब लगाया फिर पता चला कि 4,000। मतलब कैसी थी जिंदगी, हालात कैसे थे?
1: जब थिएटर कर रहा था मैं तब वाकई हालात बड़े गड़बड़ थे, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था, मैं दिन में एक नौकरी किया करता था अकाउंट्स की पार्ट टाइम।
0: ये जरूरत थी एक?
1: हाँ जरूरत थी, क्योंकि मैं एक मतलब बहुत पैसे वाले परिवार से बिलोंग करता नहीं, पिताजी सरकारी नौकर थे और एक मॉडेस्ट सी तनख्वाह की जिसमें एक 2-3 बच्चों का परिवार सिर्फ पल सकता है और एक्टिविटीज नहीं हो सकते हैं। ख्वाहिश नहीं थी मेरी कभी भी कि ऐसा ऐसा हो, पैसों से पूरे हों ऐसे सपने मैंने कभी देखे नहीं।
0: अभी भी?
1: अब भी वैसा ही है ऑलमोस्ट, हालांकि कुछ जरूरतें जो होती हैं बेसिक वो सारी हैं आसपास। ये कर दूंगा मैं जो पैसे के बल पे जो चीज़ें होती हैं वो ख्याल नहीं आते हैं कि यार इतना मिल गया काफ़ी है, तो कई बार देने में बड़ा मज़ा आता है मुझे, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा जब आता है तो मुझे लगता है यार ये अगर यहाँ चला जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा।
0: विजय भाई वापस मुंबई हम लौटते हैं,
1: कुछ कुछ काम मुझे मिला, कैरियर में मोड़ आया कहें कि ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो मॉनसून वेडिंग पिक्चर का बहुत बड़ा हाथ है, और वो फिल्म नसीर साहब मुझे कहा था कि आप मीरा जी से जाके मिल लें, और नसीर साहब से हमारी मुलाकात रेपिट्री के दौरान हुई। एक प्ले वो देखने आए थे, अग्नि और बरखा एक प्ले था जो प्रसन्ना जी ने डायरेक्ट किया था
0: जी।
1: वो उनको बड़ा पसंद आया और वो हमसे मिले भी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि नसीर साहब मतलब आपका इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए, और वो हमारी पहली मुलाकात वहाँ पे हुई। और वहीं से पता नहीं क्यों हमको लगा कि यार हम इस व्यक्ति को जानते हैं, दूरी नहीं थी कोई, मुझे लगा कि मैं इस व्यक्ति के पास बैठा रहा हूँ। जो मैंने शेयर की पिछले समय में एक फिल्म में दोबारा हमको मौका मिला काम करने का बारह आना, तो मैंने नसीर साहब को बताया। मॉनसून वेडिंग और बारह आने के बीच में ऑलमोस्ट आठ नौ साल का अंतर है
0: जी।
1: इस दौरान हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, न फोन पे न मुलाकात हुई, और मैंने ये बात शेयर की उनसे कि सर 8 साल हो गए लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं
0: आपसे दूर हूँ या आपसे
1: मिला नहीं। और उन्होंने कहा

0: एकदम जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं भी कह सकता हूं। तो मीरा जी को उन्होंने कहा था कि हालांकि कास्टिंग वो कर चुकी थी पहले उस रोल में किसी को, जो बात उन्होंने मुझे बताई कि भाई मैं कास्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ और बट वहां से मुझे जवाब आना है, लेकिन आप जब आए तो ऑडिशन दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है,
1: कहा दिया था आपने बॉम्बे में?
0: बॉम्बे में
1: अब मैं
0: तो
1: मुझे बड़ी इसकी इच्छा है जानने की कि वो कैसी रही वो मुलाकात, उन्होंने बुलाया आपसे फिर वो? हाँ
0: मैं गुवाहाटी में था उस समय जब मुझे ये
1: अच्छा
0: फोन आया था। मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, उसके लिए मैं वहां पे था, और जब मैं लौट के आया तो मुझे जिस पर्टिकुलर डेट में आना था मैं उस समय नहीं आ पाया। तो नेक्स्ट डे मैं आया, तो मैंने उस दिन फोन किया कि मैं अभी यहाँ हूँ और ऐसे ऐसे हो गया है तो मैं तो आ नहीं पाऊंगा आज, मैं तो कल है मुझे आना है। कि नहीं नहीं नहीं कोई बात नहीं, शाम का टाइम था तो वो ऑलमोस्ट सबसे मिल चुकी थी या मैं ही आखिरी था जिससे मिलना था, और होटल में मुलाकात होनी थी। तो मैं नीचे बैठा रहा काफी देर तक कि मैं कैसे पूछूं, मतलब किससे यार कि क्या। तो मैंने कहा मीरा नायर जी, ओ या, तो ऐसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा शायद इनको पता होगा कि मैं आने वाला हूँ, तो मैं बैठ गया कि भाई यही बुलाएंगे अब मिलने के लिए। बुलाया नहीं किसी ने, काफी समय बीत गया, मतलब आधा पौना घंटा। मैंने यार इतना तो देर नहीं लगना चाहिए। तो मीरा जी ने ही नीचे फोन किया कि कोई आया है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे भेजा, तो मुझे कहा यार तुम इतना वेट करवा दिया तुमने, मैं मतलब वेट कर रही हूँ 45 मिनट हो गए कि नहीं। नहीं मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे लगा कि बुलाया जाएगा समथिंग, कि एनीवे तो थक गई थी काफी। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं था, ऐसा ऐसा किस्सा हो गया कि ओह सॉरी, चाय पियेंगे? मैंने हाँ हाँ बिल्कुल। हम करीबन 1-1.5 घंटे रहे साथ में। उस दौरान मतलब कैमरे में इंटरव्यू भी ले लिया उन्होंने, मतलब जो इंटरव्यू कर रहा हूँ मतलब ऑडिशन। और
1: आपसे कौन सा, वही जो जिस करेक्टर को आपने
0: हाँ
1: किया
0: हाँ
1: वही
0: बिल्कुल,
1: करवाया उसी के
0: स्क्रिप्ट उनके
1: डायलॉग?
0: पास थी और मैंने कर दिया। बैठे रहे, बात बात होती रही, तो 1-1.5 घंटा उनके साथ रहना हुआ।
1: कुछ ब्रीफ किया था उन्होंने कि इस तरह का करेक्टर है और ये?
0: हाँ ये सब बताया तो मैंने कर दिया जैसा जितना मैं समझ पाता हूँ जैसा हुआ। और ये सारी बातें भी बताई कि भाई ऐसा ऐसा है, हो चुकी है, एक आदमी से बात चल रही है और ऑलमोस्ट फाइनल है, तो लेकिन ठीक है। जब मैं कमरे से निकला बाहर तो पता नहीं क्यों मुझे लगा यार ये रोल तो मैं मेरे अलावा बड़ा कठिन है किसी और के लिए। ऐसे ही होता है ना, आप मन में कई चीजें उठती हैं, कई बार आपको मन में उठता है मैं उड़ जाऊं, कई बार आप प्लेन में सफर कर रहे हो तो मुझे कई बार लगता है यार मैं प्लेन के ऊपर लेट जाऊं। तो वैसे ही एक ये ख्याल था कि यार ये तो मुश्किल है यार मेरे अलावा। खैर मैं आ गया।
1: कभी-कभी ये भी होता है ना कि कहीं कोई ऐसा लगता है कि कोई सवाल हमें उसका हल मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि शायद वो कैरेक्टर आपके अंदर पढ़ते ही समा गया।
0: हाँ, जिसको हम इंस्टिंक्ट जो एक वर्ड
1: जी
0: इजाद किया है मेरे ख्याल से वो वही है कि तमाम चीजें आपके कंट्रोल में होती नहीं, हमको हमको लगता रहता है ऐसा कि कंट्रोल में है, वहीं से वो आपके भीतर टपकती हैं चीजें और वो एक ख्याल पैदा करती हैं, वो पकड़ना कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना यार आपने मेरे बारे में सोचा उस समय, टेलीपैथी इसको बोलते हैं। तो खैर वो समय चला गया जितना समय उन्होंने दिया, यार उन्होंने मुझसे समय मांगा है 7 दिन का, उसके बाद वो बताएंगे मुझे, अगर वो नहीं होते हैं तो हम बात करेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद वो समय पीरियड चला गया, मैं भूल भी गया बात। उसके बाद एक दोस्त था मेरा उस पिक्चर में, जो मेरे साथ तीन लोग जो काम करते हैं उनमें से एक, वो आया रिहर्सल के लिए बम्बई, तो मेरे घर पे ठहरा। उसने कहा यार ऐसे मीरा जी की फिल्म कर रहा हूँ। मैंने कहा अरे वाली फिल्म? हाँ। तो मैंने वो रोल कौन कर रहा है? कि वो परेश रावल साहब कर रहे हैं। मैंने अरे यार तो कमाल हो जाएगा यार, बड़ा मजा आ जाएगा। वो तो मैं ये सोच रहा हूँ, रिहर्सल हो गई, वो लोग वापस चले गए। मुझे एक फोन आता है कुछ समय के बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद मोबाइल पे, और नंबर पहले कोड 011। मैंने यार ये तो दिल्ली का फोन है और ये मीरा जी का फोन है, लैंडलाइन से नंबर है। जबकि मैं फोन उठाता हूँ और एक लड़की कहती है कि मीरा जी आपसे बात करना चाहते हैं। और मीरा जी फोन पे आते हैं और कहते हैं विजय हाय कैसे हो ये सब, और करके कि मैं चाहती हूँ कि आप वो रोल करें। मैंने नहीं मैडम, परेश जी बहुत अच्छी कास्टिंग है।
1: क्योंकि उन्होंने तो बताया नहीं था आपको।
0: कि नहीं, दैट आई नो, बट या मैं चाहती हूँ आप करें। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। रोल हो गया, हम दिल्ली चले गए,
1: शूटिंग कहाँ हुई इसकी?
0: दिल्ली में।
1: उसी
0: और
1: में आपने पहली बार फिल्म कैमरा फेस
0: नहीं, उससे पहले
1: किया?
0: मैं फिल्म कर चुका था, उससे
1: अच्छा
0: पहले मैं जंगल फिल्म कर चुका था, अक्स भी
1: अच्छा
0: कर चुका था, भोपाल
1: हाँ,
0: एक्सप्रेस मेरी पहली फिल्म
1: हाँ
0: थी।
1: हाँ भोपाल एक्सप्रेस
0: हाँ
1: मुझे।
0: ये मेरी चौथी फिल्म थी। फिर शूटिंग शुरू हो गई और कब शूटिंग खत्म हो गई कब क्या हो गया पता ही नहीं चला।
1: लेकिन वो
0: और
1: रोल आपका बड़ा चर्चित हो गया दुबे जी वाला।
0: हाँ वो अच्छी बन पड़ी, और फिल्म जब अच्छी बन जाती है तो उसमें छोटी छोटी चीजें भी काउंट हो जाती हैं, और वाकई बड़ी खूबसूरत फिल्म। मेरे ख्याल में इंडियन सिनेमा को वेस्ट में जो पहचान बननी शुरू हुई है, जो अब दिख रही है आपको,
1: जी
0: उसमें दो फिल्मों को बहुत बड़ा हाथ है, मॉनसून वेडिंग और बैंडिट लाइक।

0: ये ऑलमोस्ट एक साथ की फिल्म है, कि वेस्ट में इंडियन सिनेमा को एक जगह दी गई, एक प्लेटफॉर्म दिया गया। उसमें काफ़ी घुमा हूँ, जो फेस्टिवल सर्किट होता है उसमें मेरी, जैसे मॉनसून वेडिंग, रघु रोमियो मेरी एक फिल्म है जो फेस्टिवल्स में काफ़ी गई, हरिओम एक फिल्म है जो भाग्य या कह लें दुर्भाग्य कह लें वो रिलीज नहीं हुई है, एक बहुत अच्छी फिल्म भरत बाला ने बनाई थी, वो काफी रही है फेस्टिवल्स में।
1: उसमें आप ऑटो वाले बनते हैं?
0: हाँ, तो मैंने वो सब देखा है। तो अभी वो एक स्पेस जो मिला है इंडियन सिनेमा को, उसमें इन दो फिल्मों का बहुत हाथ है। मैं बड़ा आभारी हूँ मीरा जी का और नसीर साहब का कि मुझे ऐसा मौका दिया उन लोगों ने। गुजारा हो रहा है
1: लेकिन हमारा गुजारा नहीं होगा अगर हम संगीत नहीं सुनवाएंगे तो गाना सुनाना बड़ा जरूरी है। आपकी पसंद का गाना?
0: गुलजार साहब मुझे बहुत पसंद है। गुलजार साहब ने कमाल लिखा है, मतलब उनके लिए मैं अगर तारीफ करूं मेरे ऐसा व्यक्ति, तो वो बड़ी अजीब सी बात होगी।
1: गुलजार साहब की एक फिल्म है खामोशी, बहुत पहले आई थी, उसमें हेमंत कुमार साहब ने संगीत दिया है, लता जी ने उसमें एक बढ़िया गाना गाया है, हमने देखी है उन आंखों की महक।
0: क्या बात
1: कही तो बजाय।

0: से जिस फील्ड में आप हैं वहाँ ये आपके लिए काफ़ी अहम होता है कि आपको काम मिले, तभी आप चीज़ें आगे कर पाएंगे। और चूंकि आपकी रोजी रोटी भी यही है, आप का प्रोफेशन भी यही है, तो वो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जीने के लिए भी। उस पिक्चर ने बड़ा मतलब वो सिनेरियो थोड़ा सा बदला, थोड़ा काम मुझे मिलने लगा और मैं थोड़ा ज़्यादा काम करने लगा।
1: लेकिन जो आपने अरसा बताया, उस अरसे में आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये सारी जितनी फिल्में मैं देख रहा हूँ, इनमें जितने भी नाम मैं देख रहा हूँ, उनके टाइटल जो है पढ़ना बड़ा ऑफ बीट सी हैं सर।
0: हाँ, कमर्शियल जो फिल्में आती हैं वो फिल्में कम हैं, उनकी तादाद कम है। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है जब कुछ ऐसा करने के लिए मिलता है जहां पे मैं कुछ कह सकूं।
1: ये तो आप मानिएगा कि ये सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सारी के सारे धारा से हटकर के बनी फिल्में हैं, और जाहिर है कि इसमें बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छी फिल्में हैं, क्योंकि सिनेमा में इस बीच हम देखते हैं एक बहुत बदलाव सा आया है। मुख्य धारा का सिनेमा तो है, उस मुख्य धारा की सिनेमा में भी रहते हुए लोगों ने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है, और अब नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कहानी को नए आयाम दे रहे हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे आए हैं, कहानी कहने की कला जो है खासतौर से सिनेमा की वो बदल रही है। पहले जैसे एक कन्वेंशनल तरीका था, कुछ चीजें तय थी कि ये रहेगा, ये सारी चीजें फिक्स थी, अब नई तरह की कहानियां जो है उनको भी कहने का खतरा मोल ले रहे हैं लोग, बेशक कि भाई फिल्में चले ना चले, लेकिन अच्छा सिनेमा इस बहाने कम से कम आते रहा हमारे
0: बिल्कुल
1: सामने।
0: बिल्कुल।
1: इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
0: अभी एक फिल्म है जो ईस्ट इज ईस्ट, एक फिल्म आई थी
1: जी जी
0: उसकी,
1: जी
0: उसका सीक्वल बन रहा है वेस्ट इज वेस्ट, जो अगले महीने मैं उसके लिए जा रहा हूँ।
1: कहाँ
0: इंग्लिश
1: पर?
0: फिल्म है, चंडीगढ़।
1: अच्छा, इसको कौन निर्देशित कर रहा है?
0: एंडी
1: अच्छा
0: डायरेक्टर का नाम है, चूंकि फिल्म जिन्होंने पहले प्रोड्यूस की थी वही प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को दोबारा। फैमिली ड्रामा है, रिलेशनशिप की कहानी है, तो एक बार दोबारा मौका मिलेगा बाहर के लोगों के काम करने के तरीके के साथ दोबारा काम करने का मौका, मजा आएगा।
1: क्या फर्क कुछ महसूस किया है? इतनी सारी फिल्में की हैं और बाहर के लोगों के साथ में भी काम किया
0: फर्क तो है, फर्क ये है काम करने का तरीका अलग है, उनकी जो स्क्रिप्ट पे जो वो लोग काम करते हैं उस पर
1: जी।
0: काफी समय वो लोग लगाते हैं, तमाम चीजें वो ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% आप पहले से तय कर लेते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है, बट 90% चीजें तय होती हैं, स्क्रिप्ट तैयार होती है उनकी, उस पर काफी काम वो लोग कर चुके होते हैं, बट कुछ चीजें इंप्रोवाइज हो जाती हैं सेट पे, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। हमारे यहाँ उस तरह के सिनेमा की संख्या अब होने लगी है, अब बढ़ने लगा है वैसा, कि अब स्क्रिप्ट पे काम करने लगे हैं लोग, वरना सेट पे ही लिखा जाता है सब कुछ, कई बार एक आइडिया होता है किसी दिमाग में, चूंकि कमर्शियल सिनेमा की जो बात करें वहां पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहानी से, कि आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं तो 50 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट। पब्लिक जिन लोगों को देखने जाती है वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट है, कपड़े वो क्या पहनेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि वो कपड़े क्या कहते हैं या क्यों पहने गए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उस सिनेमा से क्या कहना चाहते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक इट्स अ बिजनेस, व्यवसाय है, और वहां कि कैसे बेचना है, बेचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब बदल रहा है।
1: विजय भाई, आपके लिए भी तो ये एक रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन थिएटर भी आपको संयोग से मिला, सिनेमा में भी काम संयोग से ही आया,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन इस सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सिनेमा आपके लिए क्या है? कितनी गंभीरता से आप उसे लेते?
0: मैं ऐसा मानता हूं कि बड़ा स्ट्रांग मीडियम है, असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है ये बड़ा मुश्किल है इसके बारे में बता पाना, कुछ मुद्दों को लेके इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये नहीं दिखा सकते ये नहीं दिखा सकते, बट वो बेचा जा सकता है, उसको बेचना ही क्यों बंद नहीं किया है, उसको बनाना ही बंद क्यों नहीं किया जाता है? अगर आप इतनी सीरियसली लेते हैं इस बात को, समाज के लिए आप एक विचार हैं, आप एक सोच, आप हैं जो सोचते हैं समाज के लिए, तो ये क्यों नहीं सोचते हैं आप, वो क्या चीज है जो रोकती है आप?
1: आपने असर की बात की, अगर असर नहीं होता तो लोग, सिनेमा हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा आकर्षण है, आज भी शायद
0: हाँ
1: वो आकर्षण ही उसे सिनेमा हॉल तक खींच करके लाता है। सिनेमा का जादू, उसका तिलिस्म तो मैं समझता हूँ कि लगातार बढ़ता चला गया है, टिकटें महंगी हुई हैं बावजूद इसके
0: नहीं, लोगों ने जैसे
1: लोग
0: कहा ना कि जैसा मैं कह रहा था कि जो बुरी चीजें हैं वो सिनेमा ने सिखाई हैं समाज को, ऐसा मानते हैं लोग, बट आप फिल्में उठाए हैं, बुराई को कभी जीतते हुए दिखाया नहीं, अंत में सच की ही जीत होती है, हर सारे मुद्दे उठाए, वो चाहे राजनीति का हो, चाहे वो भूख का हो, प्यास का हो, रिलेशंस का हो, वहां से तो सोसाइटी ने कुछ नहीं सीखा।
1: विजय भाई, कुछ और आने वाले प्रोजेक्ट्स के नाम जानना चाहेंगे?
0: एक फिल्म है डोंट वरी जस्ट बी हैप्पी जो बन रही है, अभी आएगी, रिलीज होगी। एक है फिल्म अता पता लापता, इसकी शूटिंग चल रही है, वेस्ट इज वेस्ट जो शूटिंग करूंगा मैं, और रिलीज होने वाली 2-3 फिल्में हैं, द फ्लैग एक फिल्म है जो अगले साल जनवरी में रिलीज होगी।

0: मॉनसून वेडिंग के बाद क्या चेंज आया, उससे क्या फर्क पड़ा?
1: फर्क अभिनेता के तौर पर, चूंकि फिल्म चल पड़ी, लोग जाने लगे, थोड़ा काम देने लगे, और एक मेरे ख्याल

0: बड़ी प्यारी सी कहानी है, प्री इंडिपेंडेंट की कहानी है। फितरत चूंकि मलंग है मेरी, इसलिए मैं भूल जाता हूँ करने के बाद चीज़ें, बहुत ज़्यादा मैं याद रखता नहीं हूँ और उनको, चूंकि बहुत बोझा हो जाता है यार।
1: शुभकामना देते हैं कि लोग हमेशा याद रखें, और आपका तो नाम ही ऐसा है, मैं तो यही कहूंगा कि विजय भाई आपको जीवन में हर समय विजय मिले और पर्दे पर राज करें। आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत
1: शुक्रिया।
2: आज के मेहमान कार्यक्रम के अंतर्गत ये थी फिल्म अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम में सहयोग PKA नायर ने दिया, संयोजन शकुंतला पंडित ने किया, कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग विजय दीपक छिब्बर ने दिया, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।

0: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे
2: FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर, यह विविध भारती का उदयपुर केंद्र है, FM रेडियो लेक सिटी। अब समय है हमारे मीडियम वेव चैनल से युवा साथियों के उनके अपने कार्यक्रम युवाणी का।

0: वैद ही कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि हम हर दिन कुछ ना कुछ नया देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश हम बहुत ही कम करते हैं। हम घड़ी देखते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि समय को नापने का सफ़र कितना लंबा रहा होगा। हम किसी पुराने महल या स्मारक की तस्वीर देख लेते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि सदियों पहले उसे बनाने वाले ने क्या क्या कल्पना की होगी। और हम किसी सफल इंसान का नाम तो सुन लेते हैं लेकिन उसके पीछे छिपे संघर्ष का सफ़र कम पहुंच पाते हैं।
1: बिल्कुल चिन्मय, और शायद यही वजह होती है कि जब किसी चीज़ की कहानी पता चलती है तो वही साधारण सी लगने वाली चीज़ अचानक बहुत खास लगने लगती है। एक घड़ी सिर्फ समय बताने वाली मशीन नहीं रह जाती, एक स्मारक सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं रह जाता, और एक नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं रह जाता। उसके साथ जुड़ जाती है मेहनत, संघर्ष, कल्पना और उपलब्धियों की पूरी कहानी।
0: और आज का युववाणी भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हम बात करेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री की जो समय को सिर्फ दिखाती नहीं है बल्कि खूबसूरती से प्रस्तुत भी करती है। हम चलेंगे इतिहास की गलियों में जहां मांडू के स्मारक आज भी अपने दौर की कहानियां सुनाते हैं। उसके बाद हम जानेंगे एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में जिसका नाम शायद बहुत ही कम लोग रोज़ में सुनते हैं लेकिन उसकी स्किल पूरी दुनिया बारीक कलाओं में गिनी जाती है।
1: और साथ ही बात होगी एक ऐसे विषय की जो पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि विकास सिर्फ नई इमारतें बनाने से नहीं होता, धरती को बचाकर रखने से भी होता है। और इसी सोच के साथ हम जुड़ेंगे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट से, जो हमें प्रकृति और संसाधनों की अहमियत याद दिलाता है।
0: इसके अलावा मिलेंगे कुछ ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने अपने विचार, अपनी कला और अपने काम से समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा। कुछ नाम संगीत की दुनिया से होंगे तो कुछ साहित्य और संस्कृति से, कुछ खेल की दुनिया से, और इनमें सब में एक ही कॉमन बात है जो कि है अपने क्षेत्र में कुछ अलग करने का साहस करना।
1: मतलब चिन्मय, अगले कुछ मिनटों में कहीं इनोवेशन मिलेगा, कहीं हिस्ट्री मिलेगी, कहीं इंस्पिरेशन, कहीं अवेयरनेस, और कहीं ऐसी कहानियां जो ये याद दिलाएंगी कि सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, दुनिया

0: को ध्यान से देखने से भी होता है।
1: और शायद यही युवाणी की सबसे खूबसूरत बात भी है। यहाँ सिर्फ जानकारी नहीं होती, जानकारी के पीछे की कहानी भी होती है। यहाँ सिर्फ तथ्य नहीं होते, उनसे जुड़ा नजरिया भी होता है। और यहाँ सिर्फ सुनाना नहीं होता, सोचना भी होता है।
0: तो आप जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने दिन की भाग दौड़ से कुछ पल निकाल लीजिए और चलिए हमारे साथ एक ऐसे सफर पर जहाँ समय भी है, इतिहास भी, प्रेरणा भी और भविष्य की चिंता भी।
1: जी हाँ, मैं हूँ आरजे चिन्मय और मेरे साथ है आरजे वैदेही।
0: और आप सुन रहे हैं युववाणी, जहाँ यूथ की सोच है, आइडियाज हैं और एनर्जी नॉन स्टॉप है।
1: तो चलिए शुरू करते हैं।

0: वैद्य ही भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ा जाता बल्कि उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। और राजस्थान की धरती पर एक ऐसा ही नाम है जो कि है महाराणा प्रताप। आज महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर हम उस वीर योद्धा को नमन करते हैं जिनका जीवन साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की मिसाल माना जाता है।
1: मेवाड़ की धरती का वह अभिमान था, हर भारतवासी के दिल की शान था। झुका नहीं जो मुगलों के सामने कभी महाराणा प्रताप, ऐसा वीर महान था। बिल्कुल।

0: चिन्मय, तुमने सही कहा। महाराणा प्रताप का जन्म ऐतिहासिक रूप से 9th मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, लेकिन मेवाड़ की परंपरा और हिंदू पंचांग के अनुसार उनकी जयंती ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, जो इस वर्ष 17 जून को पड़ रही है। और यही कारण है कि आज पूरे मेवाड़ सहित देश के कई हिस्सों में उन्हें श्रद्धा और गर्व के साथ याद किया जा रहा है।
1: बिल्कुल, महाराणा प्रताप सिर्फ मेवाड़ के शासक नहीं थे, वे स्वाभिमान के भी प्रतीक थे। एक ऐसा समय था जब भारत के अनेक राजघराने मुगल साम्राज्य से समझौता कर रहे थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने

0: महाराणा प्रताप सिर्फ मेवाड़ के शासक नहीं थे, वे स्वाभिमान के भी प्रतीक थे। एक ऐसा समय था जब भारत के अनेक राजघराने मुगल साम्राज्य से समझौता कर रहे थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने राज्य की स्वतंत्रता और सम्मान को सर्वोपरि रखा।
1: और शायद यही वजह है कि उनका नाम लेते ही सबसे पहले याद आता है हल्दीघाटी का युद्ध। ईयर 1576 में लड़ा गया यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित युद्धों में से एक गिना जाता है। हालांकि युद्ध के परिणाम को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन इस बात पर सभी सहमत हैं कि महाराणा प्रताप ने अद्भुत साहस और नेतृत्व से जो है उनका शक्ति दिखाई थी और नेतृत्व का परिचय भी दिया था।
0: और जब महाराणा प्रताप की बात होती है तो उनके प्रिय अश्व चेतक का नाम भी आदर के साथ लिया जाता है। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह अपने स्वामी के प्रति निष्ठा और साहस का एक प्रतीक बन गया। आज भी चेतक की कहानी राजस्थान की लोक कथाओं में और गीतों में सुनाई देती है।
1: जिनमें एक बात जो मुझे हमेशा प्रेरित करती है वो ये है कि महाराणा प्रताप ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी। ऐसे समय भी आए जब उन्हें अरावली के जंगलों में रहना पड़ा, संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता से कभी समझौता नहीं किया।
0: और यही कारण है कि आज उन्हें सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प और आत्मसम्मान की मिसाल भी माना जाता है। इतिहास बताता है कि बाद के वर्षों में उन्होंने मेवाड़ के कई क्षेत्रों को पुनः अपने नियंत्रण में स्थापित किया और अपने राज्य को फिर से मजबूत बनाया।
1: ईयर 1572 में महाराणा उदय सिंह के निधन के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। उनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था। इसके साथ ही वे मेवाड़ के 13वें राणा बने।
0: महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से 1597 तक रहा। यह लगभग 25 वर्षों का एक ऐसा काल था जो संघर्ष, साहस और
1: लेकिन उनका जीवन आज भी प्रेरणा देता है, क्योंकि कुछ लोग अपने समय में शासन करते हैं

0: लेकिन उनका जीवन आज भी प्रेरणा देता है, क्योंकि कुछ लोग अपने समय में शासन करते हैं और कुछ लोग सदियों तक लोगों के दिलों पर राज करते हैं।
1: और मेवाड़ की धरती के लिए तो महाराणा प्रताप सिर्फ इतिहास नहीं, एक भावना है, एक नाम है, जिसे सुनकर साहस, त्याग, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण की याद आती है।
0: महाराणा प्रताप जयंती के इस अवसर पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आदेशों को नमन करते हैं।
1: वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को शत शत नमन। मेवाड़ का गौरव, भारत का अभिमान, महाराणा प्रताप।
2: No, it's not a gangster song. It's a song about a warrior. Yeah.

0: मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मना रही है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे जैसी गंभीर इन्वायरमेंटल चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में इस दिवस की शुरुआत की थी और तब से हर वर्ष 17 जून को इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है।
1: मरुस्थलीकरण का अर्थ केवल रेगिस्तान को फैलना नहीं है, बल्कि उपजाऊ भूमि का धीरे धीरे अपनी उत्पादक क्षमता को खो देना भी है। जब जंगलों की अंधाधुंध कटाई होती है तो भूजल का अत्यधिक दोहन किया जाता है और प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलित उपयोग होता है, तब भूमि बंजर होने लगती है। इसका सीधा असर कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता दिखता है।
0: आज दुनिया के कई हिस्से जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर सूखे की समस्या का सामना कर रहे हैं। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा और घटते जल स्रोत इस संकट को और गहरा बना रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में करोड़ों लोगों के सामने जल और खाद्य संकट खड़ा हो सकता है।
1: भारत में भी भूमि क्षरण और जल संकट की एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य कई राज्यों में सूखे की समस्या समय समय पर देखने को मिलती है। ऐसे में वर्षों तक जल संचयन, जल संरक्षण, वृक्षारोपण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना बेहद जरूरी हो गया है।
0: इस अवसर पर दुनिया भर में जागरूकता अभियान, सेमिनार्स, वृक्षारोपण कार्यक्रम और पर्यावरण संरक्षण गतिविधियां आयोजित की जाती है। इन प्रयासों का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि धरती की रक्षा केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का सामूहिक दायित्व है।
1: तो श्रोताओं, एक पेड़ लगाना, पानी की बचत करना, मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाना और प्राकृतिक संसाधनों की जिम्मेदारी से उपयोग करना, छोटे छोटे ये जो कदम हैं ये बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन इन्हीं छोटे प्रयासों से बड़ा बदलाव भी आएगा। आइए इस विश्व मरुस्थलीकरण दिवस और सूखा रोकथाम दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि धरती को हरा भरा बनाए रखेंगे, जल संसाधनों की रक्षा करेंगे और पर्यावरण संरक्षण में अपना सक्रिय योगदान देंगे।

0: धरती की प्यास बढ़ रही है, हरियाली सिमट रही है और उपजाऊ भूमि धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। यदि समय रहते हमने प्रकृति की पुकार नहीं सुनी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल और भोजन दोनों ही संकट बन सकते हैं।
1: आज 17 जून को पूरी दुनिया विश्व

0: वैद्य ही एक छोटा सा सवाल। आज जब हम मोबाइल में टाइम देख सकते हैं तो लैपटॉप में देख सकते हैं और कार में भी देख सकते हैं, लेकिन लोग आज भी घड़ी क्यों पहनते हैं?
1: सच कहूँ तो पहले मुझे भी लगता था कि वॉच सिर्फ टाइम देखने के लिए होती है, लेकिन अब लगता है कि वॉच टाइम से ज़्यादा पर्सनैलिटी दिखाने के लिए पहनी जाती है।
0: बिल्कुल, और यही बात मुझे हॉरोलॉजी इंडस्ट्री की तरफ ले जाती है, क्योंकि अगर कोई कहे कि कुछ लोग ऐसी घड़ियां बनाते हैं जिनके लिए लोग लाखों और करोड़ों रुपए तक खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, तो मुझे सुनकर थोड़ा आश्चर्य होता है।
1: और शायद बहुत से लिसनर्स पहली बार ये शब्द सुन रहे होंगे, हॉरोलॉजी। दरअसल हॉरोलॉजी वह विज्ञान और कला है जो घड़ियों और समय मापने वाले यंत्रों के अध्ययन, निर्माण और रखरखाव से जुड़ी होती है। यानी सिर्फ वॉच बनाना ही नहीं, उसे डिजाइन करना, असेंबल करना, रिपेयर करना और उसकी प्रिसीजन को बनाए रखना भी हॉरोलॉजी का हिस्सा है।
0: अगर वैसे ही हम पीछे देखें तो समय को देखने के लिए हमें रिस्ट वॉच की ज़रूरत होती थी, और कभी लोग सूरज की दिशा को देखकर समय का अनुमान लगाते थे, कभी सनडायल का उपयोग करते थे, फिर पॉकेट वॉचेस आई और धीरे धीरे रिस्ट वॉच दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी ट्रेडिशनल मैकेनिकल वॉचेस को अपना अलग महत्व दिया जाता है। कई लग्जरी वॉचेस ऐसी होती हैं जिनमें सैकड़ों छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं और उन्हें बनाने के लिए महीनों का समय लग जाता है। मतलब घड़ी सिर्फ एक मशीन नहीं, क्राफ्टमैनशिप का भी उदाहरण होती है।
1: जी हाँ, और आज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि वॉच इंडस्ट्री अब सिर्फ बड़े ब्रांड्स तक सीमित नहीं रही, कई स्टार्टअप्स भी इस क्षेत्र में तेज़ी से काम कर रहे हैं। आज डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स

0: कस्टमाइज्ड वॉचेस, सस्टेनेबल वॉचेस और स्मार्ट वेयरेबल्स जैसे सेगमेंट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। युवा एंटरप्रेन्योर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी वॉच ब्रांड्स भी लॉन्च कर रहे हैं
1: और यही स्टार्टअप कल्चर की खूबसूरती भी है। पहले किसी वॉच ब्रांड को शुरू करना बहुत ही कठिन माना जाता था, लेकिन आज डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप्स की मदद से नए एंटरप्रेन्योर्स भी मार्केट में अपनी जगह बना पा रहे हैं।
0: भारत में कई नई वॉच ब्रांड्स सामने आई हैं जो इंडियन डिजाइन, प्रीमियम क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइसिंग पर फोकस कर रही है और यूथ ऑडियंस भी अब सिर्फ इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं, इंडियन स्टार्टअप ब्रांड्स में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं।
1: और अगर आज की जनरेशन की बात करें तो स्मार्ट वॉचेस ने पूरे इंडस्ट्री लैंडस्केप को ही बदल दिया है। अब घड़ी सिर्फ टाइम नहीं बताती।
0: जी हाँ, आज स्मार्ट वॉचेस में हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, फिटनेस गोल्स, कॉलिंग, मैसेजिंग, जीपीएस नेविगेशन और डिजिटल पेमेंट्स जैसी सुविधाएं भी मिलती है। यानी एक छोटी सी डिवाइस अब मिनी कंप्यूटर जैसा बन चुका है।
1: और यही वजह है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज भी वॉच मार्केट में लगातार निवेश कर रही है, क्योंकि वेयरेबल टेक्नोलॉजी आने वाले समय का एक बहुत ही बड़ा सेक्टर माना जा रहा है।
0: लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ लग्जरी वॉचेस भी डिमांड है वो भी कम नहीं हुई है। आज भी स्विट्जरलैंड की कई वॉच कंपनीज अपनी क्राफ्टमैनशिप और प्रिसीजन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है।
1: कई लग्जरी वॉचेस ऐसी होती है जो सिर्फ एसेसरीज नहीं, इन्वेस्टमेंट एसेट्स मानी जाती है। कुछ रेयर वॉचेस की कीमत समय के साथ भी और बढ़ती जाती है।
0: और शायद यही इस इंडस्ट्री की सबसे खास बात है। एक तरफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और दूसरी तरफ सेंचुरीज पुरानी क्राफ्टमैनशिप, दोनों साथ साथ चल रहे हैं।
1: और शायद कई युवाओं को ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि हॉरोलॉजी सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक करियर ऑप्शन भी है।
0: वॉच डिजाइन, वॉच रिपेयर, लग्जरी वॉच सर्विसिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्वालिटी टेस्टिंग और वेयरेबल टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में भी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। यानी क्रिएटिविटी, इंजीनियरिंग और प्रिसीजन, तीनों का शानदार कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिलता है।
1: तो हॉरोलॉजी सिर्फ घड़ियों की दुनिया नहीं, ये इनोवेशन, इंजीनियरिंग, क्राफ्टमैनशिप और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया भी है।
0: और शायद यही वजह है कि आज जब हम अपनी कलाई पर घड़ी देखते हैं तो उसके पीछे सिर्फ समय नहीं, सदियों का विकास, तकनीक और इंसानी कौशल भी दिखाई देता है। और यही है हॉरोलॉजी की दिलचस्प दुनिया, जहां हर सेकंड के पीछे होती है एक कहानी।

मुझसे ना हो पाएगा। कौन बोला

0: रिपेयर करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और उनके अंदर के सैकड़ों छोटे छोटे पार्ट्स को समझते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है?
1: सवाल तो बहुत अच्छा है वैदेही, और मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को, विशेषज्ञों को हॉरोलॉजिस्ट कहा जाता है। और ऑनेस्टली ये उन प्रोफेशंस में से एक है जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन इनका स्किल लेवल इतना हाई होता है कि कई लग्जरी वॉच कंपनीज इन्हें बहुत ही सम्मान के साथ देखती है।
0: मतलब जिस घड़ी को हम कुछ सेकंड देखकर आगे बढ़ जाते हैं, उसके पीछे किसी हॉरोलॉजिस्ट के कई घंटे, कई दिन और कई बार कई सालों की ट्रेनिंग भी हो सकती है। हॉरोलॉजिस्ट आखिर करते क्या हैं चिन्मय?
1: अगर आसान भाषा में समझे तो हॉरोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो वॉचेस, क्लॉक्स और टाइम कीपिंग इंस्ट्रूमेंट्स के डिज़ाइन, असेंबली, सर्विसिंग, रिस्टोरेशन और मेंटेनेंस का काम करता है। लेकिन इसे सिर्फ रिपेयर वर्क समझना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मॉडर्न हॉरोलॉजिस्ट इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्राफ्टमैनशिप का कॉम्बिनेशन होता है।
0: और शायद इसी वजह से इस प्रोफेशन को प्रिसीजन बेस्ड करियर्स में गिना जाता है, क्योंकि इमेजिन कीजिए किसी लग्जरी मैकेनिकल वॉच के अंदर 100, 200 या कई बार 500 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं और उन सबको परफेक्टली काम करना होता है।
1: एक टाइनी स्प्रिंग, एक गियर और एक बैलेंस व्हील में छोटी सी गड़बड़ी और पूरे वॉच को वो प्रभावित कर सकती है, यानी यहाँ पेशेंस और एक्यूरेसी दोनों ही बहुत ज़रूरी है।
0: जी हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि स्विट्जरलैंड जैसे देशों में हॉरोलॉजी सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि इसे एक आर्ट का फॉर्म माना जाता है।
1: दुनिया की कई प्रेस्टिजियस लग्जरी वॉच ब्रांड जैसे रोलेक्स, पटेक, ओमेगा, एड्यूमार्स और जैगर जैसी कंपनीज हाईली ट्रेंड हॉरोलॉजिस्ट पर निर्भर करती है। इन ब्रांड्स की रेपुटेशन ही प्रेसिजन पर टिकी होती है।
0: और शायद यही वजह है कि एक्सपीरियंस्ड हॉरोलॉजिस्ट की डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर भी बनी रहती है, क्योंकि हर कोई लग्जरी वॉच तो खरीद सकता है, लेकिन हर कोई लग्जरी वॉच को समझ और मेंटेन नहीं कर सकता है।
1: और अब सवाल आता है कि यूथ एम्पावरमेंट में हॉरोलॉजिस्ट को क्यों शामिल किया गया है?
0: क्योंकि आज के समय में करियर सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या गवर्नमेंट सर्विस तक सीमित नहीं है। नई जनरेशन नीश करियर्स की तरफ भी बढ़ रही है और हॉरोलॉजी उन्हीं यूनिक करियर्स ऑप्शंस में से एक है।
1: बिल्कुल वैसे ही, अगर आज किसी को मैकेनिक्स पसंद है, माइक्रो इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, प्रिसाइजन वर्क अच्छा लगता है और पेशेंस भी है, तो हॉरोलॉजी एक शानदार फील्ड उनके लिए हो सकती है।
0: और आज टेक्नोलॉजी के कारण अपॉर्चुनिटीज और भी बढ़ गई हैं। अब सिर्फ ट्रेडिशनल वॉचेस ही नहीं, स्मार्ट वॉचेस, वेयरेबल डिवाइसेस, फिटनेस ट्रैकर्स और हाइब्रिड वॉचेस का मार्केट भी तेजी से बढ़ रहा है।
1: एक अच्छा हॉरोलॉजिस्ट बनने के लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं, फोकस और डिसिप्लिन भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार कई घंटों तक छोटे छोटे कंपोनेंट्स पर हमें काम करना पड़ता है।
0: जी हाँ, और शायद यही इस प्रोफेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। यहाँ स्पीड से ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रिसीजन की होती है। काम जल्दी नहीं, सही होना चाहिए।
1: और यही सीख जीवन में भी काम आती है, क्योंकि सफलता हमेशा तेजी से नहीं मिलती। कई बार बारीकी से किया गया काम ही हमें सबसे बड़ा परिणाम देता है।
0: आज दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, लेकिन इसके बावजूद लग्जरी वॉचेस और प्रिसीजन टाइम पीसेस की डिमांड बनी हुई है। यानी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन क्राफ्ट्समैनशिप की वैल्यू भी खत्म नहीं हो रही है।
1: और शायद यही हॉरोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत है। यह प्रोफेशन ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी दोनों को साथ लेकर चलता है। एक तरफ सेंचुरीज की पुरानी वॉच मेकिंग टेक्निक्स है, तो दूसरी तरफ मॉडर्न वेयरेबल टेक्नोलॉजी भी।
0: तो हॉरोलॉजिस्ट सिर्फ घड़ियों का विशेषज्ञ नहीं होता, वह प्रिसीजन, पेशेंस और परफेक्शन का विशेषज्ञ भी होता है।
1: और यूथ एम्पावरमेंट की दृष्टि से देखें तो ये हमें ये याद दिलाता है कि हर सफल कैरियर भीड़ वाले रास्तों से नहीं बनता। कई बार अलग रास्ते ही सबसे खास मंजिल तक पहुंचाते हैं। और शायद यही नई पीढ़ी की सबसे बड़ी ताकत भी है कि नई संभावनाओं को पहचानना और उन्हें अवसर में बदल देना।

चिन्मय, अभी हमने हॉरोलॉजी यानी घड़ियों की दुनिया की बात की, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। घड़ियां तो हम सब देखते हैं, लेकिन जो लोग इन्हें बनाते हैं

0: पत्थरों में बसती कहानियाँ, खामोश दीवारों में छिपे इतिहास के राज और बादलों से बातें करती एक प्राचीन नगरी। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के मांडू में, जहां हर स्मारक बीते युग की एक अनोखी दास्तां सुनाता है।
1: आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगरी मांडू की ओर। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट मांडू भारत के समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत का एक अद्भुत उदाहरण है।
0: विंध्याचल की पहाड़ियों पर बसा मांडू कभी मालवा की राजधानी हुआ करता था। यहाँ लगभग 61 ऐतिहासिक स्मारक मौजूद हैं, जिनमें महल, मस्जिदें, मकबरे, बावड़ियां और किले शामिल हैं। मांडू अपने शानदार वास्तुकला, प्रेम कथाओं और जल संरक्षण प्रणालियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है।
1: मांडू के प्रमुख आकर्षणों में जहाज महल, हिंडोला महल, जामा मस्जिद, होशांग शाह का मकबरा, बाज बहादुर का महल, रानी रूपमती का मंडप भी शामिल है। जहाज महल दो जलाशयों के बीच स्थित होने के कारण पानी में तैरते जहाज जैसा दिखाई देता है, जबकि रानी रूपमती का मंडप नर्मदा घाटी के किनारे मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करता है।
0: इतिहासकारों के अनुसार मांडू में हिंदू, अफगान और इस्लामिक स्थापत्य शैलियों का सुंदर संगम देखने को मिलता है। यहाँ की उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, विशाल तालाब और बावड़ियाँ मध्यकालीन इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट मिसाल है।
1: ईयर 1998 से मांडू के स्मारक का समूह यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है, जो इसकी वैश्विक संस्कृति को महत्वता को दर्शाता है। मानसून के मौसम में मांडू का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। बादलों से गिरे महल, हरियाली से ढकी पहाड़ियाँ और प्राचीन स्मारक का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत होता है, जो पर्यटकों के लिए बेहद ही मन को भाने वाला माना जाता है।
0: मांडू केवल स्मारकों का समूह नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। यह हमें इतिहास से जुड़ने, अतीत को समझने और अपनी धरोहर को संजोने की प्रेरणा भी देता है। तो अगर आप इतिहास, वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य के शौकीन हैं, तो मांडू आपके लिए एक यादगार अनुभव साबित हो सकता है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वैसे ही कभी कभी मुझे लगता है कि

0: किसी इंसान की असली पहचान उसके नाम से नहीं, उसके प्रभाव से होती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी सिर्फ उनके जीवन काल तक महसूस नहीं होती, उनके जाने के बाद भी उनका काम लोगों के बीच में जीवित रहता है।
1: बिल्कुल चिन्मय, और खास बात यह है कि ऐसे लोग सिर्फ एक फील्ड तक सीमित नहीं रहते, वो अपने समय को प्रभावित करते हैं, समाज को प्रभावित करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। आज हम बात करेंगे दो ऐसी शख्सियतों की जिनकी जनरेशन अलग है, काम करने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी कला और अपनी आवाज से लाखों लोगों तक अपनी पहचान बनाई।
0: अगर आसाम के सांस्कृतिक इतिहास की बात करें तो एक नाम बार बार सामने आता है, वो है ज्योति प्रसाद अग्रवाल। उनका जन्म 17 जून 1903 को आसाम के दिलब्रुगढ़ जिले के तालुम्बरी टी स्टेट में हुआ था, और शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आज यानी कि 17 जून को ही उनकी जयंती भी मनाई जाती है।
1: और चिन्मय, उन्हें सिर्फ एक लेखक या कवि कहना बिल्कुल पर्याप्त नहीं होगा, वे कवि थे, गीतकार थे, नाटककार थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और फिल्म निर्माता थे, और सबसे बड़ी बात, असमी संस्कृति को नई पहचान देने वाले विजनरीज में से एक थे। इसी वजह से उन्हें असम में प्यार से रूप कुंवर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सौंदर्य का राजकुमार।
0: और उनकी सबसे ऐतिहासिक उपलब्धि थी झूठ मोटी फिल्म। 1935 में बनी इस फिल्म को आसामी सिनेमा की पहली फिल्म माना जाता है। आज जब मोबाइल फोन से भी फिल्म शूट हो जाती है, उस दौर में फिल्म बनाना किसी साहसिक अभियान से कम नहीं था, लेकिन ज्योति प्रसाद अग्रवाल ने सिर्फ सपना नहीं देखा, उसे पूरा भी किया।
1: और सिर्फ सिनेमा ही नहीं, उन्होंने असमीज म्यूजिक को भी नई दिशा दी। उनके लिखे हुए गीत आज ज्योति संगीत के नाम से जाने जाते हैं और असम की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। आज भी उनके गीत संगीत कार्यक्रमों और सांस्कृतिक आयोजनों में सुनाई देते हैं।
0: इतना ही नहीं, वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई और जेल भी गए, यानी कला, साहित्य और देशभक्ति तीनों में उनका योगदान साथ साथ चलता रहा।
1: और शायद यही वजह है कि आज भी असम में ज्योति प्रसाद को सिर्फ कलाकार नहीं, एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में भी याद किया जाता है। दुर्भाग्य से उनका निधन काफी कम उम्र में 17 जनवरी 1951 को हो गया था, लेकिन लगभग 48 ईयर्स की एज में भी उन्होंने जो विरासत छोड़ी, वो आज 70 ईयर्स बाद भी जीवित है।
0: अब बात करते हैं एक ऐसी ही कलाकार जिनकी आवाज़ सुनते ही लोग पहचान जाते हैं, सोना मोहपात्रा की। उनका जन्म 17 जून 1976 को ओडिशा के कटक में हुआ, यानी आज का दिन उनके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है।
1: और उनकी जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत संगीत से नहीं की थी। उन्होंने बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर एमबीए भी किया और कॉरपोरेट सेक्टर में भी काम किया, लेकिन दिल कहीं और था और वो जगह थी संगीत।
0: और यही बात यूथ को सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है, क्योंकि आज बार जब जिंदगी हमें एक रास्ते पर ले जाती है, लेकिन पैशन किसी दूसरे रास्ते पर बुला रहा होता है। सोना मोहपात्रा ने वही किया जो उनका दिल कह रहा था।
1: इसके बाद उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। उनके गाए हुए गाने अंबर सरिया, नैना, बहारा और कई इंडिपेंडेंट ट्रैक्स काफी लोकप्रिय हुए। उनकी आवाज में एक अलग इंडिविजुअलिटी महसूस होती है।
0: और शायद इसी वजह से वे सिर्फ प्लेबैक सिंगर नहीं बनी रही, उन्होंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक को काफी बढ़ावा दिया। जब अधिकांश लोग सिर्फ फिल्मों पर फोकस कर रहे थे, तब सोना ने अपनी अलग म्यूजिकल आइडेंटिटी बनाई।
1: और चिन्मय, एक और बात जो उन्हें अलग बनाती है, वो है उनकी बेबाकी। वे सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखने के लिए जानी जाती है। कई बार उनकी बातें चर्चा का विषय भी बनती है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी बात खुलकर रखने की कोशिश की है।
0: उनकी इसी स्वतंत्र सोच और योगदान के लिए उन्हें कई मंचों पर सम्मानित किया गया, लेकिन शायद उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वही है कि उन्होंने अपनी पहचान किसी के जैसी नहीं बनाई, बल्कि खुद की एक अलग पहचान बनाई।
1: अगर गौर करें तो ज्योति प्रसाद अग्रवाल और सोना के बीच लगभग 7 दशकों का अंतर है। एक ने शुरुआती भारतीय सिनेमा और साहित्य को दिशा दी, दूसरी ने आधुनिक भारतीय संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बनाई।
0: लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन दिखाई देती है, और वो है अपनी कला का उपयोग सिर्फ प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने के लिए करना। एक ने गीतों, फिल्मों और साहित्य से लोगों को जोड़ा, तो दूसरी ने संगीत और अपने विचारों से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई।
1: तो चाहे असम के सांस्कृतिक इतिहास की बात हो या आधुनिक भारतीय संगीत की, इन दोनों नामों ने अपने अपने क्षेत्र में एक अलग छाप छोड़ी है।
0: और शायद यही वजह है कि कुछ लोग सिर्फ अपने काम से नहीं जाने जाते, बल्कि उस प्रेरणा के लिए याद रखे जाते हैं जो वो दूसरों को देकर

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: वैसे ही खेल की दुनिया में चैंपियंस तो बहुत आते हैं, लेकिन लेजेंड्स बहुत ही कम बनते हैं। क्योंकि चैंपियन वो होता है जो कुछ मैच जीत ले, लेकिन लेजेंड वो होता है जिसका नाम उसके रिटायरमेंट के बाद भी नई जनरेशन को सुनाता रहे।
5: बिल्कुल चिन्मय, और शायद किसी खिलाड़ी की सबसे बड़ी उपलब्धि भी यही होती है कि लोग सिर्फ उसके रिकॉर्ड्स याद ना रखें बल्कि उसकी जर्नी को भी याद रखें। क्योंकि मेडल्स जीतना मुश्किल है, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है।
4: और आज हम बात करेंगे ऐसे ही खिलाड़ियों की जो 3 अलग अलग देशों से आते हैं, 3 अलग अलग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, लेकिन अपने खेलों में उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया है जो उन्हें आज भी लेजेंड की कैटेगरी में रखता है।
5: जी हाँ, चिन्मय, अगर विमेंस टेनिस की बात की हो और वीनस विलियम्स का नाम ना आए तो डिस्कशन अधूरा लगता है। वीनस विलियम्स का जन्म जो है वो आज के दिन यानी 17 जून को 1980 को लिनवुड कैलिफोर्निया USA में हुआ था। और दिलचस्प बात यह है कि आज उनका बर्थडे भी है।
4: और शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वीनस और सेरेना विलियम्स की सफलता के पीछे उनके पिता रिचर्ड विलियम्स की प्लानिंग और मेहनत का भी बड़ा योगदान था। उन्होंने बचपन से ही दोनों को बहनों को जो है टेनिस और की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था।
5: लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर पहुंचने के बाद वीनस ने जो किया वो अपने दम पर किया। 1990s के आखिर और 2000s के शुरुआती वर्षों में वीनस विमेंस टेनिस की सबसे डोमिनेंट खिलाड़ियों में गिनी जाती थी। उनकी हाइट, स्पीड और पावरफुल सर्विस ने जो है विमेंस टेनिस का खेल ही बदल दिया।
4: अगर उनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्होंने 7 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स जीते। इसके अलावा सेरेना विलियम्स के साथ मिलकर 14 ग्रैंड स्लैम वुमेन्स डबल टाइटल्स भी अपने नाम किए। और सबसे बड़ी बात, दोनों

0: बहनों ने ग्रैंड स्लैम डबल्स फाइनल्स में कभी हार का सामना नहीं किया।
1: और ओलंपिक्स में भी वीनस का रिकॉर्ड शानदार रहा। उन्होंने कुल 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीता। उन्हें ओलंपिक हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर में गिना जाता है।
0: लेकिन उनकी कहानी सिर्फ ट्रॉफीज की नहीं रही। 2011 में उन्हें एक ऑटोइम्यून डिसीज का पता चला। इस बीमारी में शरीर जल्दी थक जाता है और परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। लेकिन वीनस ने हार नहीं मानी। उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, लाइफस्टाइल को बदला और फिर कोर्ट में वापसी की।
1: और शायद यही वजह है कि वीनस विलियम्स सिर्फ चैंपियन नहीं, रेसिलेंस और डिटर्मिनेशन की भी एक मिसाल मानी जाती है।
0: और अब बात करते हैं एक ऐसी खिलाड़ी की जिनका नाम सुनते ही इंडियन टेनिस की पूरी कहानी याद आ जाती है, जिनका नाम है लैंडर पीस। उनका जन्म 17 जून 1973 को कोलकाता में हुआ था। स्पोर्ट्स उनके परिवार में पहले से था। उनके पिता यानी कि डॉक्टर वेस पीस इंडियन हॉकी टीम के सदस्य रहे और ओलंपिक ब्रॉन्ज भी जीत चुके थे। और उनकी माता जेनिफर पीस इंडियन बास्केटबॉल की टीम में कैप्टन रह चुकी थी।
1: मतलब स्पोर्ट्स लिटरेटी उनके डीएनए में था। और शायद यही वजह थी कि लैंडर ने बहुत ही जल्दी स्पोर्ट्स की दुनिया में अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया।
0: 1996 अटलांटा ओलंपिक्स भारतीय खेल इतिहास के लिए बेहद खास रहे, क्योंकि लैंडर पीस ने टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उस समय भारत के लिए ओलंपिक मेडल बहुत ही कम आते थे, इसलिए उनकी उपलब्धि पूरे देश में गर्व का विषय बनी।
1: लेकिन अगर उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की बात करें तो वो थी डबल टेनिस। लैंडर पीस ने अपने करियर में 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते। इनमें 8 मेंस डबल ग्रैंड स्लैम्स और 10 मिक्स डबल्स एंड ग्रैंड स्लैम्स शामिल थे।
0: और ये उपलब्धि उन्हें भारत के सबसे सफल टेनिस खिलाड़ियों में शामिल करती है। उन्होंने महेश भूपति, मार्टिना और मार्टिना हिंग्लिस जैसे कई बड़े खिलाड़ियों के साथ पार्टनरशिप्स की।
1: अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मानित और प्रतिष्ठित अवार्ड से उन्हें सम्मान दिया गया है। और ऑनेस्टली लैंडर पीस की सबसे बड़ी पहचान उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड रहा। इंजरीज आई, पार्टनरशिप्स बदली, लेकिन उन्होंने कभी संघर्ष करना नहीं छोड़ा।
0: अब चलते हैं बेल्जियम, जहाँ 17 जून 1945 को जन्म हुआ एक ऐसे खिलाड़ी का जिसने आज भी साइकिल हिस्ट्री का सबसे महान साइकिलिस्ट माना जाता है, जिनका नाम है एडी मेरिक।
1: और उनका निकनेम सुनोगे तो थोड़ा फनी लगेगा, उन्हें कहा जाता है द कैनिबल। लेकिन इनकी वजह बहुत डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। वो सिर्फ रेस जीतना नहीं चाहते थे बल्कि और भी बहुत कुछ करना चाहते थे। वो हर रेस जीतना भी चाहते थे।
0: उनकी विनिंग मेंटेलिटी इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी कि उनके कॉम्पिटिटर्स खुद कहते थे कि अगर कोई रेस है तो एडी उसे जीतने की कोशिश जरूर करेंगे और जीत के भी बताएंगे।
1: अचीवमेंट सुनोगे तो समझ आ जाएगा कि लोग उन्हें ग्रेटेस्ट साइक्लिस्ट क्यों कहते हैं। उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर में 525 से ज़्यादा विक्ट्रीज हासिल की। उन्होंने 5 टूर दे फ्रांस टाइटल्स, 5 गिरो दे टाइटल्स और 1 वेटला एस्पाना टाइटल भी जीता।
0: और सिर्फ चैंपियनशिप्स ही नहीं, उन्होंने साइकिलिंग में लगभग हर मेजर रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज कराया है। उनकी एंड्योरेंस, स्टेमिना और कंसिस्टेंसी आज भी साइकिलिंग वर्ल्ड में बेंचमार्क मानी जाती है।
1: 1970s में एडी मार्क्स का नाम साइकिलिंग का पर्याय बन चुका था। और रिटायरमेंट के कई दशकों के बाद भी जब साइकिलिंग लेजेंड्स की बात होती है तो उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है।
0: बिल्कुल, अगर गौर करें तो वीनस विलियम्स, लैंडर पीस और एडी मेरिक तीनों अलग अलग देशों से हैं, अलग अलग खेल खेलते हैं और अलग अलग दौर में खेलते हैं, लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है और वो है उनकी एक्सीलेंस।
1: जी हाँ, तो चलिए अब इसी के साथ अब घड़ी की ओर देख रहे हैं तो हमें इजाजत नहीं दे रहा है हमारा समय, तो चलिए इस कार्यक्रम से लेते हैं विदा। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त वैदेही और मेरे साथ हैं चिन्मय। नमस्कार।

101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये विविध भारती का उदयपुर केंद्र है, FM रेडियो लेक सिटी। अभी आपने सुना युवा साथियों का उनका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जिसे हम हमारे आकाशवाणी के उदयपुर चैनल पर भी प्रसारित कर रहे थे। अब समय है कार्यक्रम फिट उदयपुर का। जी हाँ, इस कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे योग प्रशिक्षक तुषिता दशोरा से गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत।

0: को सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले कह के मैं स्वागत, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो तोषिता, अगर बात की जाए योग की, अगर बात करें, जल्द ही योग दिवस भी आने वाला है, और जब योग से हम शरीर के स्वास्थ्य, अपने दिनचर्या, अपनी मानसिक शांति, इन सब चीज़ों को बैलेंस करने की बात करते हैं, और आप यंग हैं और इस एज में आपने इस योग के रूप में इस फील्ड को चुना, तो इस पर आपका क्या कहना है? मतलब ऐसा कौन सी बात है कि जो आपको योग के अंदर काफ़ी अच्छी लगी कि आपने अपने करियर को इस तरफ फोकस किया और लोगों के हीलिंग पर काम करना शुरू किया?
1: योग जो है वो सबसे पहले हम बात करते हैं कि योग क्या है। योग का मीनिंग है युज, जो संस्कृत वर्ड से लिया गया है, और इसका जो मीनिंग है हिंदी मतलब है वो है मिलाना, यानी कि आपके शरीर मन और आत्मा का मेल कैसे किया जा सके। जैसे हम फिजिकली तो हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कहीं थॉट्स चल रहे हैं, हम मेंटली हम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हैं। तो योग आपका योग एक ऐसी मतलब पद्धति है जो आपकी हेल्प करेगा आपके शरीर मन और आत्मा को एकाग्र करने की, एक साथ करके वर्तमान जो हमारा टाइम चल रहा है उस पे काम करने के लिए।
0: अगर बात की जाए तोषिता की, जो व्यस्त जीवन शैली है अभी के समय में, और उस व्यस्त जीवन शैली में योग को अगर हम दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं या हिस्सा बनाने की कोशिश करने की सोचते हैं, लेकिन फिर भी ये कार्य हो नहीं सकता, लेकिन कितना आवश्यक है इस योग को हमारे रूटीन में लाने के लिए, अपनी बेहतर स्वास्थ्य के लिए?
1: व्यस्त जीवन अभी सबका चल रहा है, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, चाहे मिडिल एज हो या अपर एज वाले हों। तो इसमें आप ऐसा नहीं है कि आपको योग के लिए पूरा दिन देना है या कहीं घंटों तक अभ्यास करना है। कम से कम भी आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा हम योग प्राणायाम को देंगे, तो धीरे धीरे करके आप बहुत अच्छे परिणाम मतलब प्राप्त कर सकते हैं।
0: और अगर बात की जाए, सीधे हम अगर आते हैं योग क्रियाओं पे, यानी कि योगासन होशा जो कि शारीरिक स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है, अगर ऐसे कौन कौन से सरल वो योगासन है या योग क्रियाएं हैं जिन्हें हर उम्र का व्यक्ति, हर घर पर बैठे सुबह या शाम, जब भी वो कंफर्टेबल हो, नियमित रूप से कर सकता है?
1: सरल आसनों की बात करें तो सबसे पहले जो नए अभ्यासी हैं, मतलब जो शुरुआत ही कर रहे हैं योगा करने की, तो सूक्ष्म व्यायाम से वो स्टार्ट कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में क्या होगा कि आप बॉडी के एक एक पार्ट को सिंपल स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे नेक अप डाउन, शोल्डर सर्कल्स, इस टाइप से। और हम आसनों की बात करें तो आसनों में ताड़ासन ले सकते हो, बालासन ले सकते हो, और साथ ही साथ आप वृक्षासन हो गया जो बैलेंसिंग करेगा, और मार्जरी आसन है। ये सारे ऐसे आसन हैं जो किसी भी आयु के, किसी भी वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं अभ्यास।
0: या वर्तमान समय में, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है, क्योंकि तकनीक का ज़माना है, सबके हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मोबाइल के नाम से जानते हैं, कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने है, किसी की ऑफिस सेटिंग है, तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो पोस्चर को लेकर है, और साथ ही साथ इन पोस्चर की प्रॉब्लम जो हमें दिखाई देती है वो पीठ दर्द, गर्दन दर्द, जोड़ों की समस्याएं, इस तरह की आम समस्याओं से मतलब लगभग लगभग सभी ग्रसित हैं। तो क्या योग इन सब बीमारी या यूं कहें सामान्य जो तकलीफें, इनमें कितना लाभकारी साबित हो सकता है?
1: बिल्कुल, इन सब में योग बहुत कारगरी है, क्योंकि आजकल हो गया है कंप्यूटर, मोबाइल और सारा काम भी सारे लोगों का इसी पर चल रहा है, और लंबे 8 से 10 घंटों तक सिटिंग उनका रहता ही है। तो कंटिन्यू सिटिंग करने के बजाय हम ये कर सकते हैं कि 1 घंटा हमने सिटिंग किया और बीच में हमने 5-7 मिनट थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लिया, थोड़ा कुछ सिंपल ताड़ासन कर लिया, थोड़े नेक के मूवमेंट्स कर लिए। इस टाइप से हम चेयर पे बैठे बैठे भी बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो हम सिर्फ चेयर पे बैठे बैठे ही अपने ऑफिस आवर्स में कर सकते हैं। तो उससे ये अब शरीर की अकड़न है, ये सब मतलब बैक पेन हो गया, नेक पेन हो गया, इन सबको हम इन आसनों के द्वारा ठीक कर सकते हैं।
0: आम समस्या जो अभी के समय में है, अगर वो बैक या थोड़ा गर्दन के नीचे स्टिफनेस की समस्या आजकल आम देखी गई है, क्योंकि आपका शरीर का पोस्चर एक, जब हम मोबाइल स्क्रीन पर होते हैं या उस पर अधिकतर समय हम उस बिताते हैं, तो हम एक पोस्चर में एक इंक्लाइन होते हैं गर्दन से मोबाइल की तरफ, तो वो जो एक बैंड या स्टिफनेस जो आ जाती है, क्या उसे भी किसी साधारण आसन से, चेयर पर बैठे बैठे आसानी से ठीक किया जा सकता है?
1: बिल्कुल किया जा सकता है। बैठे बैठे चेयर पे बैठ के भी अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, यानी कि दोनों हाथ ऊपर करके नीचे की तरफ झुक झुक के अपने टोस को टच करना है, उस आसन से आप अपनी पूरी बैक बेंडिंग, बैक को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो उस आसन से और चेयर के हैंडल को पकड़ के बैक साइड स्ट्रेच करने से, ये दोनों साइड आसन है, इससे आप आपकी बैक को बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं और इससे आपका सारा दर्द चला जाएगा।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। यह कार्यक्रम फिट उदयपुर और फिट उदयपुर में आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा योग ट्रेनर तोशिता दशोरा, और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से योग से हम हमारे जीवन, हमारे दिनचर्या और हमारे स्वास्थ्य की स्थिति

0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम फिट उदयपुर, और फिट उदयपुर में आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं तोशिता दशोरा। आप योगा ट्रेनर हैं, और ब्रेक में जाने से पहले हमने योग और सामान्य आसनों की बात की थी। तोशिता, अगर हम बात की जाए, जब हम कहते हैं कि जब एक प्रैक्टिकली जब कोई व्यक्ति योग शुरू करता है, तो प्राणायाम, सूर्य नमस्कार या ब्रीदिंग टेक्निक, सब योग ट्रेनर की लगभग लगभग इसी पर फोकस होता है। कि कहा जाता है कि ये पहला वो सीढ़ी है किसी मंजिल पर पहुंचने की, कि इसके बिना, क्योंकि आपका सांसों पर अगर आपका नियंत्रण है तो योग आपका बड़े अच्छे से आप कर पाओगे, सारी योग क्रियाएं हो पाएगी। इसके बारे में आप थोड़ा बताएं।
1: जहाँ तक बात की जाए प्राणायाम की, तो प्राणायाम में बहुत सारे प्राणायाम ऐसे हैं, जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, और डीप ब्रीदिंग हो गया। तो प्राणायाम जो है वो आपकी इंटरनल बॉडी पे काम करता है, मानसिक शांति देता है, फोकस आपका, एकाग्रता को बढ़ाएगा, और प्राणायाम से आपका मन भी शांत होगा। जैसे काफ़ी आजकल जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, डिप्रेशन में जो है लोग, उनके लिए प्राणायाम एक बहुत अच्छा वो है कि आप प्राणायाम के द्वारा आप इसको कम कर सकते हैं, स्ट्रेस कम कर सकते हैं, डिप्रेशन को कम कर सकते हैं।
0: ऐसे कौन कौन से तनाव, चिंता, मानसिक तनाव जो जिनको हम बात करें, या कई लोग जो अनिद्रा के शिकार भी हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को कौन से आसन, योग या प्राणायाम करने चाहिए जो उनके लिए सच में राहत देने वाले हों?
1: मानसिक तनाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम आपकी पूरी तीन नाड़ी होती है बॉडी में, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अनुलोम विलोम के द्वारा आप तीनों नाड़ी को बैलेंस कर सकते हो, और तीनों नाड़ी को जैसे ही बैलेंस करेंगे तो आपको ऑलरेडी आपके थॉट्स बिल्कुल धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। और भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हो। भ्रामरी प्राणायाम के साथ साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम है। और आसनों की अगर बात करें तो आसनों में सबसे अच्छा आसन है मार्जरी आसन, भुजंग आसन और बालासन। इन आसनों के अभ्यास से भी हम मानसिक शांति को ग्रहण कर सकते हैं।
0: तो इसी तरह कार्यक्रम में हमने बात की थी कि सांसों पर, यानी कि ब्रीदिंग कंट्रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी योग क्रिया में। और आजकल हम देख रहे हैं कि कई सारे वीडियो ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं। कई बार हमने देखा है कि कोई ऑनलाइन योग क्लासेस को अटेंड कर रहा है, और कई बार ये भी है कि देख कर जो हम पोस्चर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हद तक वो सही होते हैं, कुछ हद तक वो सही नहीं हो पाते। तो आप ये बताएं कि जो हमारे योग के जो आसनों के जो पोस्चर्स हैं, और उनके साथ साथ किस समय सांसों पर नियंत्रण कितना ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि किस समय हमें इनहेल करना है, किस समय हमें एक्सहेल।

0: करना है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि वीडियो देखकर तो शुरू तो हर कोई कर लेता है, लेकिन वास्तविकता क्या है?
1: वास्तविकता ये है कि आसनों का बेनिफिट हमको बॉडी पे तभी मिलेगा जब हम ब्रीदिंग का कॉम्बिनेशन उसके साथ बनाएंगे, बॉडी के साथ साथ माइंड पे, हमारे मन पे और मस्तिष्क पे। वो तभी होगा जब हम अपने शरीर का, मन का और आत्मा का, तीनों का संतुलन करेंगे। तीनों का संतुलन कब होगा? जब हम किसी भी आसन में जा रहे हैं, जैसे कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इनहेल करना है, और वापस आसन से बाहर आ रहे हैं तो एक्सहेल करना है। और जब हम उस आसन को होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करते टाइम आपका इनहेल एक्सहेल एक्सहेल स्लोली दोनों चलेगा, इनहेल भी चलेगा एक्सहेल भी चलेगा। तो इस तरीके से हमको हर एक आसन को फोकस के साथ करना चाहिए। उससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे भी आपको फर्क दिखेगा, आपका शरीर, मन और मस्तिष्क, आत्मा तीनों शांत होगा।
0: कि जब हम कोई भी व्यक्ति जो शुरुआत में अभ्यास कर रहा है या फिर योग प्राणायाम की शुरुआत कर रहा है, ये भी देखा गया है कि किसी भी समय योग शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति घर पर है या फ्री या रिलैक्स है, वो किसी भी समय योग शुरू कर देते हैं। तो क्या सभी योग, सभी प्राणायाम या योगासन दिन में कभी भी किए जा सकते हैं, या उसकी कोई एक निश्चित समय अवधि है? क्योंकि सबके शेड्यूल अलग है, हो सकता है कोई लेट नाइट तक काम करता है, हो सकता है कोई अर्ली मॉर्निंग से ही काम पे चला जाता है। तो उपयुक्त समय क्या है और किस समय हमें योग और योग क्रियाएं करनी चाहिए?
1: योग करने का सबसे जो अच्छा समय है वो सुबह का ही माना जाता है, क्योंकि हम रात रात भर हमने अच्छी नींद ली है और हम मेंटली बिल्कुल फ्री हैं, कोई भी थॉट नहीं है, और बॉडी भी रिलैक्स है, माइंड भी रिलैक्स है, सारी थकान से हम फ्री होके सुबह उठे हैं। और सुबह उठते ही जो हम एनर्जी इस तरफ लगाएं योग प्राणायाम में, तो वो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट्स हैं। चाहे वो प्राणायाम की बात करें, क्योंकि फ्रेश एयर में अगर प्राणायाम करेंगे तो उसके बेनिफिट्स अलग ही हैं। तो मॉर्निंग का समय तो सबसे अच्छा है, मॉर्निंग में ही प्रैक्टिस होना चाहिए। कहीं जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में भी, जो 4 से 6 का टाइम होता है, उसमें भी प्रैक्टिस की जा सकती है। उसके अलावा जो व्यस्त लोग हैं, जो बिल्कुल भी टाइम मॉर्निंग में नहीं दे सकते हैं, या उनका शेड्यूल ही ऐसा है जो पूरे दिन में टाइम नहीं निकाल सकते हैं, तो उनके लिए योग हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। बस हमको ये है कि हमने फूड लास्ट कब लिया है, खाना कब लिया है, या हैवी मील्स कब ली है, तो वो टाइम हमको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। उसमें 3 से 3.5 घंटे का, अगर आपने हैवी पूरा प्रॉपर मील खाया है, तो उसमें 2.5 से 3 घंटे का गैप आपको देना है, उसके बाद आप योग अभ्यास कर सकते हैं।
0: अगर कोई सामान्य बीमारियों से कोई व्यक्ति अगर ग्रसित है, जैसे कि आज के समय में ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़ होना या फिर थायराइड होना, इस तरह की सामान्य जो लाइफस्टाइल डिजीज़ कहा जाता है जिसको, तो क्या अगर कोई इस तरह के व्यक्ति हैं और वो योग कर रहे हैं, तो क्या उन्हें कोई विशेष सावधानी इस संदर्भ में रखनी चाहिए, या उनके लिए कोई आसन छोड़े जाते हैं या फिर कुछ पोस्चर्स उनके लिए प्रभावी नहीं है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं?
1: अगर कोई बीमारी से ग्रसित है या उनकी लाइफ में कोई बीमारी रेगुलर चल रही है, तो सबसे पहले तो उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर से सलाह लेने के साथ साथ आप योग प्राणायाम अगर स्टार्ट करेंगे तो उसके बेनिफिट्स आपको अलग ही दिखेंगे। मतलब आप मेडिकेशन को हटा के योग की तरफ तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन मेडिकेशन के साथ साथ आप योग को ऐड करके चलेंगे तो वो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देगा।
0: योग और योग से जुड़ी विभिन्न बातें और भी जारी रहेगी, लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: श्रोताओं, यह कार्यक्रम फिट उदयपुर, और फिट उदयपुर में आज हमारे साथ हैं युवा योग ट्रेनर तोषिता दशोरा। और इनसे हम ब्रेक में जाने से पहले योग से जुड़ी विभिन्न जानकारी ले रहे थे। मैम, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो लाइफस्टाइल डिजीज़ की, हमने बात की कि अगर किसी को ये लाइफस्टाइल डिजीज़ जो डायबिटीज़ है, बीपी है या थायराइड है, ऐसी बीमारियाँ हैं, तो क्या उन्हें योग किस तरह से करना चाहिए। लेकिन एक दूसरा पहलू यहाँ पर यह भी है कि अगर कोई इन बीमारियों से ग्रसित है, और ये क्योंकि कहा जाता है एक दीर्घकालीन बीमारी है, या यूँ कहा जाता है एक बार ब्लड प्रेशर या फिर एक बार आपका डायबिटीज़ की मेडिसिन चालू हो गई तो वो कभी मिट नहीं सकती, वो चलती है, तो क्या ये इस तरह की बीमारियों में योग कितना प्रभावी रहता है? क्योंकि मेडिकेशन पर तो इंसान है, लेकिन फिर भी कितना प्रभाव योग का पड़ता है जिससे इनके जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाते हैं?
1: कुछ आसनास ऐसे हैं जो थायराइड और शुगर, और कहीं लोगों का हमने रिवर्स भी किया है जिनका धीरे धीरे करके मेडिसिन ख़त्म हो गया, लेकिन उन्होंने जो स्टार्टिंग की थी वो मेडिसिन के साथ ही की थी। मेडिसिन के साथ साथ नियमित उन्होंने अभ्यास किया प्राणायाम का और आसनों का। उसके बाद हम बात करते हैं कि योग कैसे मतलब इन बीमारियों में हेल्प करता है। तो जब जैसे शुगर पेशेंट हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल भी बहुत हाई है, तो योग प्राणायाम स्ट्रेस लेवल को कम करने में मदद करेगा, ब्लड सर्कुलेशन जो बॉडी में है वो इम्प्रूव करेगा, और आपके जो हार्मोन

0: बैलेंस है, उस पे भी योग बहुत अच्छे से काम करेगा। तो हम मेडिकेशन के साथ साथ इसको, योग प्राणायाम को अगर नियमित अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी मेडिसिन को कम करके हम रिवर्स भी कर सकते हैं।
1: कई लोग इसमें एक इस चीज़ को गलत संदर्भ में ले लेते हैं, जैसे अगर किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, उपचार चल रहा है, तो उनकी नज़र में योग सब बीमारियों का खात्मा कर देता है और वो योग करते हैं लेकिन उसके साथ साथ अपने मेडिकेशन को छोड़ देते हैं। तो ये कितना उचित है, और साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं है तो योग के साथ साथ इनके उपचार की प्रक्रिया को बेहतर करने का एक साधन हो माना जाए या फिर उसके निवारण का एक साधन माना जाए?
0: ये उपचार करने की प्रक्रिया ही है, जैसे कि मेडिकेशन तो आपका चल रहा है, गंभीर से गंभीर बीमारियों का मेडिकेशन हम एकदम से बंद तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बॉडी बहुत अलग अलग रिएक्शंस देगी। तो मेडिकेशन के साथ साथ ही आपको नियमित अभ्यास करना है, उससे आपको धीरे धीरे आपकी रिपोर्ट्स में भी चेंजेस दिखेंगे और धीरे धीरे करके आपकी मेडिटेशन अपने आप कम हो जाएगी और आपके अंदर एक मतलब आत्मविश्वास आएगा, एक आपके अंदर हिम्मत आएगी कि उस बीमारी से हम कैसे लड़ पाएं। मेंटल पीस जो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मेंटल पीस भी आपको योग प्राणायाम से ही मिलेगा।
1: तो शीता, एक इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि जब हमने देखा है कि विगत कुछ सालों में हमने देखा है कि जो योग और प्राणायाम लोग अपना रहे काफ़ी, और उनको अपनाने के पीछे एक कारण था कि मेंटल स्ट्रेस और जो उनका थकावट भरी ज़िंदगी, ये एक उनका कारण था। लेकिन हमने एक चीज़ और भी देखी है कि यंग लोगों में हार्ट डिजीज़ बढ़ी है, जिसका जिसका मुख्य कारण कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, या फिर आपकी जो धमनियाँ हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना, ब्लॉकेज हो जाना, ये सारी बातें देखने को आई है। तो क्या योग प्राणायाम से इस तरह के, क्योंकि फूड हैबिट्स अपनी जगह है, क्योंकि फूड हैबिट्स जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक ये चीज़ें शरीर पे दिखाई देगी, लेकिन क्या बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल या फिर इस तरह की जो बातें हैं, योग और प्राणायाम से उसका असर को कम किया जा सकता है या?
0: हाँ, योग प्राणायाम नियमित अभ्यास इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमने आज 2 दिन किया या फिर इंटरनेशनल योगा डे है तो हमने योग कर लिया, उससे हमको एकदम से एक दिन में इफ़ेक्ट दिखेगा। ये थोड़ा थोड़ा अभ्यास, बिल्कुल थोड़े थोड़े 15 मिनट 20 मिनट ऐसे करके हम टाइम को बढ़ा के धीरे धीरे करके इसको हम दिनचर्या के रूप में, जैसे हम डेली नहाते हैं, खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, सोते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, इसी तरीके से योग भी हमारे दिनचर्या का पार्ट होना चाहिए। रेगुलर अभ्यास करने से आपको अच्छे इफेक्ट्स दिखाई देंगे।
1: तो शायद आपने अभी कार्यक्रम में जिक्र किया कि रेगुलर अभ्यास किया जाना चाहिए, और आपने इंटरनेशनल योगा डे के बारे में भी कहा कि कुछ लोग क्या है कि वो एक दिवस मनाने के लिए एक दिन एक्टिव हो जाते हैं, और हो सकता है वो 5-7 दिन के लिए वो उसको कंटिन्यू करें, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन इसी योगा डे पे हम आते हैं जो आगामी कुछ दिवस में हम मनाने वाले भी हैं। आपको क्या लगता है कि जब से ये योग दिवस मनाने की प्रथा शुरू हुई है, उसके बाद कितने लोगों का योग से जुड़ा हुआ है और इसके कितने सकारात्मक परिणाम आपको दिखाई दिए हैं?
0: पहले से, जब जब से योग दिवस की शुरुआत हुई है तब से काफ़ी लोगों में अवेयरनेस भी आया है और सब लोग, जैसे कोई एक पर्सन अगर एक फैमिली से जा रहा है तो वो अदर फैमिली मेम्बर्स को भी मोटिवेट करते हैं कि ये बहुत अच्छा है, मैं अच्छा फील कर रही हूँ, या आपको इस स्टार्ट करना चाहिए। कोई फ्रेंड सर्कल है उसमें से कोई एक पर्सन जा, मतलब सब लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं और इतने सारे प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं मोटिवेशन के लिए, तो लोगों में काफ़ी अवेयरनेस तो आया है इसको लेके और उन्होंने बेनिफिट्स भी अपने अंदर देखे हैं। जैसे कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है लाइफ में तो योग प्राणायाम से आप डिसीजन की को भी क्लैरिफाई कर सकते हो कि डिसीजन बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, एक कॉन्फिडेंस आया है। और लेडीज़ के लिए तो बहुत अच्छा है, जो होममेड होम वर्कर्स लेडीज़ हैं और गृहिणियाँ हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है।
1: तो चिता, एक सबसे बड़ी जो आपने महिलाओं के संदर्भ में बात की, महिलाओं के बीच में जो सामान्य, जो जिसको हम कहते हैं सामान्य बीमारियां, या यूं कहें कि जो गायनिक इश्यूज हैं उनके, आजकल देखा गया है कम उम्र में ही किशोरियों को पीसीओडी पीसीओएस की समस्या होती है, और ये समस्या एक लंबे समय के बाद एक बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती है। तो जो महिलाएं हैं उनके लिए जो ये योग है, ऐसी कौन सी योग क्रियाएं या योगासन है जो इनकी इन सामान्य बीमारियों से निजात दिला सकती है?
0: पीसीओडी और पीसीओएस एक हार्मोनल इम्बैलेंस ही है जो कि आपके सेटिंग लाइफ स्टाइल और डाइट से आया है, क्योंकि आजकल बाहर का फूड खाने का बहुत ज़्यादा हो गया है, प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पैकेजिंग आइटम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। और लाइफ स्टाइल और सेटिंग, आजकल सबका काम कंप्यूटर मोबाइल इसी पे है, सेटिंग भी बहुत ज़्यादा होने लगी, मूवमेंट्स नहीं है, फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं रही है, तो इससे हार्मोनल आपका पूरा इम्बैलेंस

0: हो गया है, उस वजह से पीसीओडी और पीसीओएस की स्टार्ट होती है। तो योग और प्राणायाम ये है कि आपकी बॉडी के एक-एक पार्ट को मूवमेंट करवा के, बॉडी के एक-एक पार्ट को हम मूव करते हैं और आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे काम करता है, पर्टिकुलर एक-एक डिजीज पे काम करता है, एक-एक आपका पोस्चर के, मतलब हम उससे पोस्चर के द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसमें आपका डाइट भी रहेगा, लाइफस्टाइल भी रहेगा, मूवमेंट्स भी रहेंगे, और साथ ही साथ आपको योगा प्राणायाम का अभ्यास तो रेगुलर करना ही है।
1: एक आम समस्या जो आज के समय में दिखाई दे रही है, जिसको हम कहेंगे कि लगभग वो वृद्धावस्था के आसपास, हमने देखा है कि 50 के आसपास की महिलाएं या फिर पुरुष घुटने में दर्द या जोड़ों के जो दर्द की समस्या है, काफ़ी आम तौर पर लगभग लगभग हर घर में देखी जा रही है। और कहा जाता है कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, या फिर यूं कहा जाता है कि जो घुटने
0: गैप
1: के
0: आ
1: अंदर
0: गया।
1: गैप आ गया, या उनके अंदर के बीच की जो गादी होती है उसमें लुब्रिकेंट खत्म हो गया। तो क्या ऐसे व्यक्ति योग और प्राणायाम आसानी से कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या इस तरह के ये दर्द हैं इनको भी इस तरह से समाप्त किया जा सकता है?
0: नी पेन और जॉइंट्स पेन की हम बात करें तो इसमें बहुत, मतलब कहीं डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट को नीचे नहीं बैठना है, लेकिन मेरे पास कहीं ऐसे भी पेशेंट आए हैं जो नीचे इजीली बैठ पा रहे हैं और उनकी बॉडी, वो बिल्कुल आराम से बैठ पा रहे हैं, और मैंने उनको 1 घंटा बिठा के योगा प्राणायाम भी करवाया है, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया है कि आप ऊपर बैठ के कीजिए ऐसा। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि कुछ आपको ऐसा भी, नी पेन और बैक पेन और इनके लिए आपको धीरे धीरे करके, अगर आप नीचे नहीं भी बैठ पा रहे हैं तो एक बार आप चेयर पे बैठ के ही आप मूवमेंट्स को स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे करके आपके जो जॉइंट्स है वो, मतलब स्ट्रेंथ आपकी डेवलप हो जाएगी, जॉइंट्स आपके मजबूत हो जाएंगे, तो धीरे धीरे करके आप वो अच्छे से मतलब कर सकते हैं।
1: योग और योग से जुड़ी विभिन्न बातें और भी जारी रहेगी। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: श्रोताओं, यह कार्यक्रम फिट उदयपुर, और फिट उदयपुर में आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हैं यंग योग ट्रेनर तोषिता दशरा। और ब्रेक में जाने से पहले हमने विभिन्न योगासन, विभिन्न योग क्रियाएं और स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव के बारे में जानकारी दी। तो तोषिता, एक सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि आपके ही एज ग्रुप्स को हम रिलेट करते हैं, और अगर यूँ कहा जाए कि अगर लड़के या लड़कियों की बात की जाए, तो आज के समय में फिटनेस ट्रेनर, जिम वर्कआउट्स, जुम्बा ट्रेनिंग, पता नहीं कई रूप आ चुके हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। और वहाँ पर एक कोशिश ये होती है कि हम हमारे बॉडी को इतना प्रेजेंटेबल बनाएं, लड़के एब्स या मसल्स पर काम कर रहे हैं, उसी तरह महिलाएं या लड़कियां फिगर को अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके ठीक विपरीत हम योगा में एक सामान्य क्रियाएं या सामान्य योग प्राणायाम, इन क्रियाओं को अपनाते हैं। तो क्या फ़र्क है एक जिम वर्कआउट वाली बॉडी और एक योग से बनी बॉडी में, थोड़ा सा समझाएं।
1: ये तो वही बात हो गई कि खाना खाएं या पानी पिएं, या एप्पल खाएं या ऑरेंज खाएं वाली बात हो गई। क्योंकि जिम का जो है वो जिम आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप करेगा और मसल को बिल्ड करेगा, और एक अट्रैक्टिव बॉडी की जो आप बात कर रहे हैं वो जिम से डेफिनेटली बन सकती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आपको आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे काम करना है, अंदर से आपको मन की शांति चाहिए, आपको मानसिक शांति चाहिए, आपको थॉटलेस होना है, और आपको सारे बॉडी को इंटरनल पार्ट्स पे वर्क करना है, तो उसके लिए योग एक बहुत अच्छा साधन है। और साथ ही साथ जिम की बात करें तो जिम आपकी स्ट्रेंथ पे काम करेगा, मसल बिल्डिंग पे काम करेगा, और योगा आपके फोकस को इंक्रीज करेगा, डिसीजन मेकिंग को बढ़ाएगा। तो इस टाइप से हम जिम और योगा को साथ साथ लेकर चल सकते हैं। अभी आज के ट्रेंड में यही हो रहा है कि युवा जो है वो जिम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको एक बाहर से दिखाने वाला वी शेप और बाहर से दिखाने वाली बॉडी को बनाना है इसलिए। लेकिन हम दोनों को चीज़ों को साथ साथ लेकर चल सकते हैं। जैसे वीक में आपने कुछ डेज़ जिम कर लिया और कुछ डेज़ योगा कर लिया, इस कॉम्बिनेशन के साथ आप एक परफेक्ट बॉडी को बना सकते हो, जो आपको अंदर से भी अंदर से भी आपको हेल्दी रखेगी और बाहर से भी आपको अट्रैक्टिव बनाइए।
0: हमने लगभग बड़े बूढ़ों की बात की, युवाओं की बात की, लेकिन जो बच्चे हैं उनके बारे में हमने बात नहीं की। हालांकि बच्चे खेलते कूदते और अपने इस अवस्था में कि उन्हें कोई रोग या बीमारी नहीं होती, तो क्या सच में बच्चों के लिए भी कोई विशेष योगासन या योग क्रिया है जिनसे उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा कुछ है, या फिर सबके लिए समान योग क्रियाएँ हैं?
1: बच्चों के लिए बहुत अच्छा यह है कि आजकल बच्चों में बहुत चिड़चिड़ापन, ओवर एग्रेसिवनेस दिखाई दे रही है, तो योग प्राणायाम इसमें बहुत हेल्प करता है बच्चों के लिए। कि आप योग प्राणायाम करने से बच्चों को एक आत्मविश्वास, एक फोकस, जो अपना करियर का सिलेक्शन करना है या कोई भी डिसीजन लेना है, तो उसमें योग प्राणायाम बहुत हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग में फोकस को बढ़ाएगा, उनका अग्रेसिवनेस को कम करेगा, तो और उनके शरीर को भी लचीला बचपन से ही बना सकते हैं। और अगर बचपन से ही बच्चे कुछ टाइम के लिए आधा घंटा, एक घंटा योग अभ्यास डेली अपनी दिनचर्या में ऐड करते हैं, तो आगे जाके उनके कुछ भी उनको बड़ी बड़ी बीमारियों से नहीं लड़ना पड़ेगा।
0: जाते जाते कार्यक्रम में हमारे जितने भी श्रोता

0: आकाशवाणी के, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ताकि वो अपने जीवन में योग को अपनाएं, योग का हिस्सा बनाएं और साथ ही साथ स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिएं?
1: योग एक व्यायाम आसन ही नहीं है, योग एक ऐसी मतलब जीवन शैली है जो आपको दैनिक जीवन में, आपको अपने जीवन में इसको ऐड करना चाहिए। व्यस्त व्यक्ति हैं तो वो भी अपनी लाइफ में योग को ऐड कर सकते हैं, चाहे वो 15 से 20 मिनट करें, आधा घंटा करें, धीरे धीरे करके वो टाइम को बढ़ा सकते हैं। और योग प्राणायाम से आपके मतलब आपको एक अलग ही एनर्जी पूरे दिन में फील होगी। जिस दिन आप जब आप इससे जुड़ जाएंगे, जिस दिन आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे, उस दिन आपको लगेगा कि आज मैंने पूरे दिन अपने कुछ किया ही नहीं खुद के लिए। तो खुद के लिए आप थोड़ा सा टाइम निकाल के और इसको आप अपने जीवन में दिनचर्या में ऐड कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके आपको नियमित अभ्यास के बाद आपको धीरे धीरे आपको खुद परिणाम मतलब दिखेंगे इसमें।
0: आप थे तोषिता दशोरा और आज कार्यक्रम में आपने योग और योग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की और कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।
2: फिट उदयपुर इस कार्यक्रम में अभी आपने तोषिता दशोरा से गजन सिंह राठौड़ की बातचीत सुनी। ये समय है फिल्म संगीत का, लीजिए सुनते हैं पहला नगमा किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में।

0: अंतिम गीत के साथ ही फिल्म संगीत का सफर यहीं तक। अब आप हमारे आगे के कार्यक्रम सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: कि भारत और नीदरलैंड्स के बीच

0: अभी आपने मोहम्मद रफी और बलबीर के स्वर में देशभक्ति गीत सुना। साहिर लुधियानवी के लिखे गीत की धुन बनाई थी उपेन अय्यर ने। फिल्म का नाम था नया दौर। अब सुनिए सेना पर आधारित गीत स्वर गीत संगीत कैलाश खैर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण को फिल्म गुलाम में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत जतिन ललित का।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आँख

0: थे बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल का गाया सड़क फिल्म का गीत, तर्ज नदीम श्रवण की बोल सुरिंदर साथी के।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकित हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जयमाला कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

जयमाला कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनिए दीवाना फिल्म का गीत, बोल समीर के आवाजें कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े

0: मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये है विद भारती, देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम राग अनुराग। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राग भैरवी से। फिल्म का नाम है श्री 420।

अभी आपने राग भैरवी पर आधारित श्री 420 फिल्म का गीत सुना। अब हम आपको सुनवा रहे हैं राग पहाड़ी पर आधारित वक्त फिल्म का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। रवि के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

राग पहाड़ी के बाद अब बारी राग अहिल्या बिलावल की। परिचय फिल्म से ये गीत है, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीत गुलजार के, संगीत राहुल देव बर्मन का।

संजू, ए बिज्जू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

0: अभी आपने राग अलहैया बिलावल पर आधारित परिचय फिल्म का गीत सुना। इसी के साथ ही राग अनुराग कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, हवा महल में आइए आज सुनते हैं नाटिका मेनू कार्ड। ये नाटिका ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम एलाकार्ट का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। नाट्य रूपांतरकार हैं मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद।
1: शायद आपने सुना होगा कि एक सज्जन ने दावा किया था, दुनिया एक बंद सीप के समान है और वो एक दिन अपनी तलवार से उस बंद सीप का मुंह खोल देगा। उसके इस दावे से लोग स्तब्ध रह गए थे। लेकिन ये काम इतना मुश्किल नहीं है। तलवार की मदद से सीप का मुंह खोला जा सकता है। लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसी लड़की की कल्पना की है जो एक टाइपराइटर की मदद से इस सीप रूपी दुनिया का मुंह खोल दे? जी हाँ, टाइपराइटर की मदद से शायद नहीं सोचा। तो आज सोचिए, एक शहर के एक छोटे से ढाबे नुमा होटल में खाना खाने बैठी एक लड़की, नाम है सारा।
2: ओहो, ये मेनू कार्ड है या किसी डॉक्टर द्वारा लिखा गया दवा का पर्चा? ये भी पता नहीं चलता कि भाषा अंग्रेजी है या जर्मन।
3: आप पहली बार यहाँ खाने आई हैं, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। अजी मैडम, यहाँ तो अक्सर ये होता है कि खाना स्वीडिश से शुरू होकर सूप पर जाकर खत्म होता है। पता ही नहीं चलता कि किस जगह सूप लिखा है और कहाँ पुडिंग।
2: तो क्या सभी मेज के मेनू कार्ड इसी तरह के हैं?
3: जी हाँ, सभी इसी तरह के हैं। और तो और, मैनेजर के काउंटर पर जो मेनू रखा है वो भी इसी भाषा में लिखा गया है।
2: दूसरा कोई होटल इतने पास है नहीं और रोज कहीं दूर जाकर खाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसे क्या खाया जा सकता है?
3: देखिए, मेरी सलाह लीजिए, ये जिम्मेदारी आप बैरे पर डाल दीजिए और जो कुछ वह ले आए उसे आंख मीच कर चुपचाप खा लीजिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ।
2: यही करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता भी क्या है?
3: ओके मैडम, मैं चलती हूँ। उम्मीद है शाम को फिर खाने पर मुलाकात होगी। बाय बाय।
2: बाय बाय बैरा।
4: यस मैडम, कमिंग। क्या खाइएगा?
2: मैं क्या बताऊँ, अपनी मर्जी से ले आओ।
4: ओके मैडम।
2: बड़ा बुद्धू लगता है इस होटल का मालिक। अगर इसी मेनू कार्ड को साफ साफ लिख कर रख दे तो कम से कम खाने वाले को यह तो पता चल जाए कि वो आज क्या क्या खाने वाला है। यही ठीक रहेगा, शायद उसकी समझ में बात आ जाए। एक प्लेट चावल, दो स्लाइस सूप, सलाद।
5: हेलो सर।
6: यस मैडम।
2: शायद आप ही यहाँ के मालिक हैं।
6: कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
2: देखिए, ये आपके यहाँ का मेनू है। मैं इसे दोपहर अपने साथ ले गई थी और साफ साफ टाइप करके ले आई हूँ। अगर इस तरह आप अपने मेनू कार्ड मेज पर रखें तो ग्राहकों को ऑर्डर देने में आसानी रहेगी, साथ ही आपके होटल की साख भी बढ़ेगी।
6: ओह, थैंक यू मैडम, आप ठीक कहती हैं। मगर हमारे यहाँ रोज नई नई चीजें बनती हैं, इसलिए कम से कम आधा मेनू तो हमें रोज ही बदलना पड़ेगा।
2: तो इसमें मुश्किल क्या है? देखिए, मैं टाइपिंग का काम करती हूँ और रोज यही खाना खाने आती हूँ। अगर आप हर शाम मुझे दूसरे दिन बनने वाले खाने की लिस्ट दे दिया करें तो दूसरे दिन सुबह ही मैं उसे टाइप करके भिजवा दूंगी।
6: ओह, वंडरफुल वंडरफुल। ये तो बहुत अच्छी बात है। वेल मैडम, इस मेहनत के बदले हम आपसे खाने के पैसे नहीं लेंगे। ओके।
2: ये तो आपने बड़ी मेहरबानी की, लेकिन इसके साथ ही अगर एक और बात मान ले तो बड़ी आभारी रहूंगी।
6: यस।
2: खाना मेरे कमरे में ही भिजवा दिया करें। बस इसी होटल से लगा मेरा कमरा है, रूम नंबर 87।
6: मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, मैं जरूर आपका खाना पहुंचाने का इंतजाम करवा दूंगा।
2: थैंक यू वेरी मच। आपको तो ऐसा करिएगा कि जब आप शाम का खाना भिजवाएं तो दूसरे दिन का मेनू भिजवा दिया करिए, और जब सुबह चाय लेकर बैरा आएगा तो उसके हाथ में टाइप किया मेनू भिजवा दूंगी और शाम के मेनू के बारे में भी पूछताछ कर लूंगी।
6: ठीक है ठीक है।
2: अच्छा, कुल कितनी मेज है यहाँ?
6: मेज

0: बारह।
1: तो 12 यह, एक आपके लिए और दो फालतू, कुल 15 मेनू कार्ड, ठीक है ना?
0: हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
1: एक बहुत बड़ी समस्या कितनी आसानी से सुलझ गई। आज ही वॉल्टर को पत्र लिखूंगी तो वो बहुत खुश होगा। मगर मगर जब से मैं इस कमरे में आई हूँ उसके पत्र ही आने बंद हो गए। पता नहीं वह किस तरह से है, इतनी मेहनत कर रहा है। कभी कभी कितनी अजीब घटना घट जाती है। क्या पता था मुझे कि वॉल्टर से प्रेम हो जाएगा, लेकिन वॉल्टर कितनी मेहनत करता है उस फॉर्म में, रात दिन उसी में जुटा रहता है। काश काश उसके अनाज के गोदाम में उस दिन आग नहीं लगती, तो फिर मुझे इस तरह शहर थोड़े ही आना पड़ता। क्या भयंकर आग थी उस दिन। वॉल्टर,
2: सारा अब क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया मैं तो सारा, सब कुछ चलकर खाक हो गया।
1: अब इस तरह रोने से क्या होगा वॉल्टर, हिम्मत न थारो, मेहनत करो और फिर से इस फॉर्म को अनाज से भर दो।
2: क्या सोचा था, क्या हो गया सारा, भविष्य के सारे सपने मिट्टी में मिल गए।
1: सपने तो बनते बिगड़ते रहते हैं वॉल्टर, उनसे क्या घबराना, हम नए सपने दोबारा बुन लेंगे, तुम मेहनत करो।
2: मगर अब हम कैसे सब कर पाएंगे, सारी पूंजी सारा अनाज आग ने जलाकर खाक कर दिया है, और सारा एक महीने से तुम्हारी नौकरी भी तो नहीं।
1: देखो वॉल्टर, वक्त का हाथ कौन पकड़ सका है, गोडाउन जल गया है तो इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। उठो, पहले हाथ मुंह धो लो, उसके बाद कुछ सोचेंगे। मुझे एक बात सूझिए, सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए।
2: कहो।
1: देखो वॉल्टर, अगर हम इसी तरह गांव में बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा करते हैं कि तुम तो यहीं रहो, वापस उस फॉर्म को खड़ा करो और मैं शहर चली जाती हूँ, वहाँ कुछ काम करके पैसा इकट्ठा करूँगी, बस जनवरी तक हमारे दिन फिर जाएंगे और बसंत की बहारों के दिन हम एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे।
2: लेकिन बसंत का मौसम आने में तो अभी 10 माह बाकी हैं, और 10 महीने तक तुम से अलग नहीं सारा, ये नहीं हो सकता।
1: वॉल्टर, मैं लड़की होकर हर मुसीबत से जूझने को तैयार हूँ, और तुम मर्द होकर इतने परेशान हो रहे हो, सिर्फ 10 महीने की तो बात है।
2: हा?
1: और मैं टाइपराइटर ले जाऊंगी, जिसे और कुछ काम न मिले तो कम से कम टाइपिंग करके ही कुछ न कुछ कमा लूंगी।
2: 10 महीने सारा, सोचकर ही मन कांपने लगता है।
1: लेकिन 10 महीने बाद की तो कल्पना करो वॉल्टर। और एक बात और भी है वॉल्टर, कुछ दिन अलग रहकर हम अपने प्यार की सही कीमत आंक सकेंगे।
2: सारा।
1: वॉल्टर। आठ महीने बीत चुके हैं, सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, और वॉल्टर ने लिखा था कि वह उस दिन स्वयं मुझे लेने आएगा। ओह, कितना सुहाना दिन होगा वो, पता नहीं कितना बदल गया होगा वॉल्टर।

0: बुलवाया था मुझे?
1: यस मैडम, प्लीज हैव योर सीट।
0: थैंक यू।
1: देखिए अब बसंत का मौसम शुरू हो रहा है, इसलिए हमारे मेनू कार्ड भी पूरी तरह बदल जाएंगे, क्योंकि इस मौसम में कुछ नई चीजें ग्राहकों को दी जाएगी।
0: जी हाँ।

0: शुरू हो रहा है, इसलिए हमारे मेनू कार्ड भी पूरी तरह बदल जाएंगे, क्योंकि इस मौसम में कुछ नई चीज़ें ग्राहकों को दी जाएगी।
1: जी हाँ, कल मौसम का पहला दिन है। ओह वाल्टर
0: जी, क्या कहा आपने?
1: कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। आप क्या नई डिशेस बनाते हैं?
0: बस जरा हरी सब्जियों पर ज्यादा जोर रहता है। हमारी खास डिश है हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी।
1: उसे भी यह सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है।
0: जी किसे?
1: ओह माफ कीजिएगा, मैं कुछ और ही सोचने लगी थी। हाँ तो ये सब्जी आप रोज बनाएंगे?
0: जी हाँ, करीब करीब रोज ही, कल से ही हम इसे बनवाना शुरू कर देंगे। आप भी देखिएगा, ये सब्जी हमारे यहाँ एक खास ढंग से बनती है।
1: तो ऐसा करते हैं कि इसे बड़े टाइप में काफी स्पेस देकर टाइप कर देती हूँ।
0: वंडरफुल वंडरफुल।

0: गाजर की सब्जी सूखी, मूली का रायता, आलू, पनीर।
1: ओह वॉल्टर, तुम कहाँ हो? कल से बसंत का मौसम शुरू हो रहा है। ये देखो, तुम्हारी मनपसंद सब्जी में उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी।
0: वॉल्टर, कल ज़रूर आ जाना।
1: वॉल्टर, तुम्हारे पत्र भी बहुत दिनों से नहीं मिल रहे हैं।
0: वॉल्टर, कल ज़रूर आना, ज़रूर आना, ज़रूर आना।
2: मेम साहब, आपका खाना
1: रख दो यहाँ। हाँ, आज तो नई सब्जी लाए होगे।
2: जी हाँ, और हमारे यहाँ की सबसे मशहूर सब्जी भी है। ये देखिए, उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी।
1: तुम ये सब्जी ले जाओ, वापस ले जाओ।
2: बट मैडम, ये तो हमारे यहाँ की खास डिश है, आप चक्कर तो देखिए।
1: नहीं, तुम नहीं जानते, मैं अभी इसे नहीं खा सकूंगी, नहीं खा सकूंगी।
2: ओके, जैसा आपका हुक्म।
1: ओह वॉल्टर, बसंत का पहला दिन तुम्हें मुबारक हो। लेकिन तुम कहाँ हो वॉल्टर? तुमने वादा किया था कि तुम इस दिन मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। काश तुम आज यहाँ होते तो हम दोनों साथ साथ तुम्हारी मनपसंद सब्जी खाते। वॉल्टर, कौन है?
3: सारा।
1: वॉल्टर, ओह वॉल्टर, तुम सच ही वॉल्टर हो ना? बेरा, बेरा।
4: यस मैडम।
1: उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी वापस लाओ।
4: ओके मैडम।
5: सारा।
1: वॉल्टर, तुमने मुझे पत्र क्यों नहीं डाला कि तुम आ रहे हो?
5: वाह, ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। पिछले हफ्ते ही मैं यहाँ आ गया था, लेकिन जब तुम्हारे कमरे में गया तो पता चला कि तुमने बहुत पहले ही वो जगह छोड़ दी है। बस तभी से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ।
1: लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले ही खत डाल दिया था और उसमें नया पता भी लिख दिया था।
5: नहीं, ऐसा कोई खत मुझे तो नहीं मिला।
1: अच्छा, लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे?
5: असल में मैं अभी तुम्हारे वाले होटल में खाना खाने गया। वहाँ जब मैं मेनू देख रहा था तो आलू पनीर के बाद वाली सब्जी देखकर चौंक उठा। बस फौरन मैनेजर से तुम्हारे बारे में पूछताछ की, उसने तुम्हारा पता दिया और मैं यहाँ।
1: हाँ, मुझे याद है कि उसके बाद तुम्हारी मनपसंद सब्जी का नाम था।
5: साथ ही मुझे ये भी मालूम था कि तुम्हारे टाइपराइटर का वह अक्षर कुछ आड़ा टाइप होता है।
1: लेकिन उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी में वह अक्षर कहाँ से आया?
5: लेकिन सारा डियर, तुमने जो सब्जी टाइप की है उसे जरा पढ़ो तो।
1: क्यों, क्या टाइप किया है? देखूं, उबले हुए अंडों के साथ प्रिय वॉल्टर। असल में मैं उस वक्त तुम्हारे बारे में सोच रही थी।
6: मेनू कार्ड हवा महल में आज आप सुन रहे थे ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम एलाकार्ट का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण। नाट्य रूपांतरकार थे मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं श्रेया घोषाल और टोची रैना की आवाजों से। फिल्म का नाम है शॉर्ट इन द सिटी, संगीत सचिन जिगर का, बोल समीर के।

अब सुनिए रूप कुमार राठौर के आवाज में अग्निपथ फिल्म का गीत। अजय अतुल का संगीत है, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के।

रंग दे बसंती। अब सुनिए इस फिल्म का गीत मधुश्री और नरेश अय्यर की आवाज में। धुन बनाई है ए आर रहमान ने, बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाश

0: और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सिंग इज किंग, अब सुनिए इस फिल्म का गीत। राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाजों में, गीतकार मयूर पुरी, संगीतकार प्रीतम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश डेली सिक्स फिल्म से, जिसे आवाज दे रहे हैं मोहित चौहान। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है AR रहमान ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियो में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी।

0: समाचार एवियो फ्रांस।
1: पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बैंकिंग के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के

0: अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिक।
4: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
5: ब्रो, ये फटा है।
6: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
7: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
5: वाओ, नया नोट मिलेगा?
6: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
7: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
8: कूल रहो।
2: मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
9: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 रुपए पर बंद हुआ।
2: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन

0: चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सबसे पहले सुनिए येसु दास की आवाज में सुनैना फिल्म का गीत, गीत संगीत रविन्द्र जैन का।

अभी आपने सुनैना फिल्म में यशोदास को सुना। अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में प्यासा सावन फिल्म से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है संतोष आनंद ने।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगली पेशकश अनुरोध फिल्म से आवाज किशोर कुमार की, बोल आनंद बख्शी के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मुकद्दर का सिकंदर। अब सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों को। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन और हवन सामग्री।

0: ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ.
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों की बात.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है।

0: हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार।
1: पापा
2: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से।
3: ये कौन है?
4: कबाब में हड्डी।
2: आज के फनकार कार्यक्रम में आज जिक्र उस अभिनेता का जिसने सन 1955 में बनी बिमल रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी।
5: हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया।
3: ए देवदास, तुम कहां चले?
5: घबराने की क्या बात है?
3: बैठो बैठो बैठो। हाँ तो शुरू हो जाओ उसका।

0: नाता।
1: जी हाँ, आज जिक्र है अभिनेता मोतीलाल का।
2: दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, दिल ने हमसे

0: क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है।
1: मोतीलाल को हिंदी फिल्मों के बेहद सौम्य और शिष्ट अभिनेताओं में गिना जाता है। सन 1910 में शिमला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था मोतीलाल राजवंश। सन 1934 में आई फिल्म शहर का जादू से मोतीलाल की अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई थी। सागर मूवी टोन के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे केपी घोष। 30 के दशक में नायिका सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थीं डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। रंजीत मूवी टोन की फिल्म अछूत, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता देवी नायक नायिका थी। बाद में चतुर्भुज जोशी की सन 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दिए। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में पारसी रंगमंच और नौटंकियों के बेहद कलाबाजी भरे अभिनय की गहरी छाप पड़ी थी। अभिनय में अति नाटकीयता का समावेश होता था, लेकिन कहा जाता है कि मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा में स्वाभाविक और सहज अभिनय की शुरुआत की, जिसमें संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर बिल्कुल आम जिंदगी की बोलचाल जैसी होती थी।
2: देखते हुए रंगीन जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं।
3: इसे मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दीजिए।
2: क्या काम करते हो?
3: बेकार।

0: नौकरी चाहते हो?
1: मुझे नौकरी मिलेगी।
0: इस पते पे कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना।
2: जाने माने फिल्मकार महबूब खान की शुरुआती फिल्मों में मोतीलाल नायक रहे थे, जैसे सन 1943 में आई तकदीर, सन 1937 में आई जागीरदार और सन 1938 में आई फिल्म हम तुम और वो। केदार शर्मा की फिल्म अरमान और कलिया में भी मोतीलाल ने काम किया था। सन 1945 में आई थी फिल्म पहली नजर, जिसमें वीणा मोतीलाल की नायिका थी। हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी। मोतीलाल मुकेश के चचेरे भाई थे और वे ही मुकेश को फिल्म संसार में लाए थे। फिल्म पहली नजर में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में मुकेश ने गाया था अपना पहला नगमा।

सन 1948 में आई फिल्म गजरे, जिसमें सुरैया मोतीलाल की नायिका थीं। इस फिल्म के संगीतकार थे अनिल विश्वास और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली। ये है सुरैया का गाया नगमा।

सन 1949 में आई रूप शौरी की फिल्म एक थी लड़की। इसमें मोतीलाल की नायिका थी मीना शौरी। आपका ये दोस्त इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत ढूंढ कर लाया है खास तौर पर आपके लिए।

मोतीलाल की सबसे उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है सन 1952 में आई जेमिनी प्रोडक्शंस की मिस्टर संपत। आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया था।

0: इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूं कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए, चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं, और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। ना जाने क्या होने वाला है दुनिया का, 8 आने के 12 केले, लूट मची हुई है चारों तरफ, जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको।
1: अच्छा
0: जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं 3rd क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो 1st क्लास में सफर कर सकता हूँ, सैलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 3rd क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ। बाय द वे, जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था।
1: आपका आइडिया?
0: ऑफ कोर्स।
1: टिकट प्लीज, टिकट, टिकट प्लीज।
0: पास।
1: क्या मैं देख सकता हूँ?
0: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शर्मा जी के घर।
1: कौन शर्मा?
0: अरे भाई वो तुम्हारे DTS।
1: आपका मतलब वर्मा जी से है?
0: वर्मा जी, वर्मा शर्मा में क्या फर्क है, दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं। क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें?
1: 125 रुपए।
0: 125 रुपए और डियरनेस अलाउंस और भत्ता?
1: 50 रुपए।
0: 50 और 125, 175 रुपए मिलते हैं, और दिन रात बैल की तरह से काम करते हैं। जुल्म है ये, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा?
1: रामप्रसाद।
0: रामप्रसाद, मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूंगा और तरक्की कराने का इंतजाम करूंगा। अब तुम जा सकते हो।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
2: सन 1954 में HS रवेल की फिल्म मस्ताना में मोतीलाल ने एक यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी नायिका थी निगार सुल्ताना।

0: सन 1955 में आई मोतीलाल के फिल्म जीवन की सबसे यादगार फिल्म देवदास।
1: अरे देवदास,
2: अरे चुनी हुआ हो तुम,
1: ये क्या सूरत बना रखी है, पहचाने भी नहीं जाते, क्या खबरें हैं?
2: खबर बस यही है कि जिंदा हैं। तुम यहाँ कैसे?
1: भाई कलकत्ता हमें रास नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पे जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हैं?
2: ये भी कुछ तय नहीं किया।
1: मकसद?
2: जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू।
1: तुम रहे वही देवदास। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पे पैसे जाया किए जाए, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला दो।
2: मैंने पीना छोड़ दिया है चुनी बाबू।
1: किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी?
2: ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा।
1: अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा, ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं?
2: क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे।
1: तुम्हें क्या दुख है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बुझाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं।
0: सन 1956 में फिल्म जागते रहो, जिसमें मोतीलाल के अभिनय की मिसाल

0: आज भी दी जाती है।
1: जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। तब सच है।

0: कहा क्या जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है।
1: सन 1957 में आई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं।

0: सन 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में मोतीलाल एक कड़क बिजनेसमैन के किरदार में नजर आए थे।
1: आज ही इस घर में हो क्या रहा? तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ।
2: ये क्या गानाफूसी हो रही तुम लोग?
3: कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे। वो राजकुमार नीचे आए हैं ना।
1: तुम्हें कैसे मालूमगा कि उसका नाम राजकुमार है?
3: जी मुझे आशा ने बताया।
1: आशा को कैसे मालूमगा कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है?
3: जी मैं जी आरती। घबराओ नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी ही खाएंगे, बताओ ना।
1: हाँ, डरने की क्या बात है, राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो। क्या हुआ?
3: सॉरी।
1: हाँ मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है।
3: हाँ, और
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें एफकैट

0: सन 1960, बिमल रॉय की फिल्म परख, मोतीलाल का यादगार अभिनय।
1: ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था डेढ़ महीने से?
2: तुम्हारे काम के लिए गया था मैं।
1: मेरा काम?
2: हाँ, तुम्हें याद नहीं, पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधा नगर मैंने भेजा था, उस वक्त तुम्ही ने कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में न पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिया की नौकरी कर ली और वहाँ से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ।
1: लेकिन तुझे इस पोशाक में देख कर मुझे बड़ा डर लगने लगता है।
2: डर लगने लगता है क्यों माँ?
1: कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गांव छोड़ना पड़ा था, इसलिए अब तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाके देख मेरा रोम रोम कांपता है।
2: माँ तुम बहुत ही भोली हो, मैं को असली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ, ये तो एक स्वांग है, देखो तुझे तमाशा क्या क्या होता है।
0: सन 1965 में मोतीलाल ने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। ये फिल्म थी छोटी छोटी बातें, जिसमें नादिरा उनकी नायिका थी।

0: कहता है।
1: ये फिल्म नाकाम रही थी और मोतीलाल को इससे गहरा सदमा पहुंचा था। इसी साल यानी सन 1965 में मोतीलाल का देहावसान हो गया था।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: श्रोताओं, अब समय है छाया गीत के कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: देखो टर्मरे

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, प्यार की पहली मुलाकात और उसका पहला एहसास जिंदगी के सबसे खूबसूरत और जादुई अनुभवों में से एक होता है। वो पहली नजर, किसी को चुपके से देखने की वो आदत, नजरें चुराकर बार बार देखने का वो मीठा सा एहसास, न जाने कैसा जादू होता है उस पहली नजर में, है ना?

पहले प्यार की यादें और इसका खुमार जिंदगी भर जहन में ताजा रहता है। पहला प्यार सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि महबूब की मौजूदगी में सुकून और गैर मौजूदगी में एक मीठा सा खालीपन महसूस करने जैसा होता है। पहला प्यार प्रेम की गहराई और मासूमियत का वो जादुई दौर है जो हमें भीतर तक बदल देता है।

उफ, ये प्यार, पहली नजर में प्यार का वो जादुई एहसास, क्या कहने। प्यार में एक अलग ही दुनिया जीने लगता है मन। खुद से बातें करना, बार बार खुद को आईने में देखना, सजना संवरना, हर बात पे दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सुर्ख

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक भावनात्मक सफर है प्यार, खुमारी, बेचैनी, उम्मीद और रोमांस का अद्भुत मिश्रण। मन बेताबी से अपने प्यार को थामे रखना चाहता है, प्रेम को पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है, और यही प्यार धीरे धीरे मन के भीतर एक पूरा

भीगा हुआ मन का कोना जीवन में कभी नहीं सूखता। किसी के होने से भीतर एक ऐसा स्पंदन होता है जो खामोशियों में भी शब्द ढूंढ लेता है। कितना तेज, कितना सुंदर, कितना गहरा होता है ये प्यार। और जब दो टूटे बिखरे उजड़े हुए लोग आ मिलते हों अपने खोए हुए टुकड़ों को, बिखरे हुए वजूद को और उजड़े हुए चमन को खोजते खोजते, तो यही प्यार और तीव्र हो जाता है।

बन चुका होता है। इस शोर और भाग दौड़ भरी दुनिया में अब कोई तुम्हें बाहों का सहारा दे रहा है, अपने दिल में जगह दे रहा है, तो तुम बिना किसी डर के समा जाओ उसकी बाहों में, बैठ जाओ उसके दिल के आंगन में, दुनिया का सारा बोझ उतार दो, खिलखिलाकर हंस पड़ो, निश्चिंत हो जाओ उसके आगोश में। कभी कभी एक गहरा आलिंगन वो कह जाता है जो शायद हजार शब्द नहीं कह पाती।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी

0: ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाली उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आए रात।
1: कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार और 11:05 का समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का। थोड़ी सी प्रतीक्षा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमईओ में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
3: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
2: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में

0: भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
1: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।